0: Let's start with our top story, and that is really what was served at the BRICS gala dinner. That's become a political talking point. The opposition is using the opportunity to hit out because there was only vegetarian food that was on the menu. Meanwhile, the BJP is hitting back at the opposition, saying that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. Then why was it that foreign guests were denied non-vegetarian food at the BRICS summit? We also have Varis Pathan also taking a jibe, saying that Fufa Mamu will be upset. The BJP is hitting back, saying the opposition had nothing but to criticize the menu and that the success of the summit was being overlooked. NDTV sources also saying that all chief ministers had been invited to that dinner, but no opposition chief minister had come for the dinner. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Icelander president said that he also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president for, this was in fact more than two decades back when this happened.
1: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
2: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज़ में राजनीति करते हैं। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
3: आपने प्रतिपक्ष के लोगों से बातचीत नहीं की और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए था। कम से कम डिनर में तो जो है एक सादी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी। तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सबसे पहले।
4: राहुल गांधी जी को भारत के सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप को ननियाल के चश्मे से भारत को देखते हैं। भारत के लोग हमेशा सनातन और संस्कृति से पले और बढ़े हैं, और भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवा, और हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है। जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वही इस तरह के बात और इस तरह के व्यंजन का बात करते हैं।
0: And then we have the Home Minister Amit Shah saying that the Seva Sankalp Abhiyan will start on the 17th to mark the birthday of Prime Minister Modi and his 25 years in public life. He said that the campaign built around the slogan Jan Seva Hi Prabhu Ki Seva will focus on public participation, and that is the goal of making India a developed nation by 2047. Viksit Bharat. The Home Minister also made a major announcement on the Uniform Civil Code, saying that he was confident that UCC would be implemented in all 21 BJP NDA rule states, and that's going to be taking place before 2029. He accused the Congress-led era of policy paralysis, coalition compulsions, corruption, casteism, and dynastic politics, saying that the country has since then been freed.
5: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। 2014 से पहले हमारे देश की राजनीति का दिशा तीन नासूरों से पीड़ित था, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद। 2024 से 26 के इस राजनीतिक एरा में भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद वो समाप्त होकर पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस की दिशा में देश की जनता आगे बढ़ी है। हम सभी एनडीए के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम ये एक माह सेवा संकल्प अभियान के रूप में चलाएंगे। ये सेवा संकल्प अभियान पूरे राष्ट्र में चलेगा। राष्ट्र और प्रशासनिक इकाई मतलब राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश में चलेगा। हर जिले में, हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में और बूथ तक सेवा संकल्प अभियान को लेकर हम देश की जनता तक पहुंचने वाले हैं।
0: So in tracks now to Tamil Nadu as the leader of opposition Udayanidhi Stalin, who is attacking the Chief Minister Vijay and his government, saying that the bipole will teach lessons to TVK and that's only going to be the beginning of the downfall of TVK. They have to teach a lesson to the dummy Chief Minister. Yes, calling C. Joseph Vijay a dummy and uncouth Chief Minister and accusing the ruling government for its failures, including widespread power cuts and the law and order situation in the state of Tamil Nadu.
6: விலக்கி வாங்கி ஆட்சி அமைச்ச காரணத்தால் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு தொகுதியில் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் வர இருக்குது. இந்த ஆட்சியாளருடைய வீழ்ச்சிக்கு இந்த இடைத்தேர்தல் வெற்றி ஒரு தொடக்கமாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு நாம் அந்த உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த இடைத்தேர்தலில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கு, இந்த டம்மி முதலமைச்சருக்கு நாம் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு சரியான பாடத்தை புகட்ட வேண்டும்.
0: Switching tracks from Tamil Nadu to Karnataka now, and the ED showdown is escalating after the Enforcement Directorate raided Satish Jarkiholi. Is the Chief Minister of the state, D.K. Shivkumar, saying that three more ministers could actually be targeted, while the BJP MLA Arvind Belard has claimed that the Chief Minister already knows who's next. That is what has been said by the BJP MLA. And of course, hitting out at D.K. Shivkumar, claiming that the Chief Minister knows which ministers have illegal wealth and asking why is he waiting for the ED to act. D.K. Shivkumar calls the ED action politically motivated, says Jarkiholi's transactions are legal, alleging that the agency plans to target more ministers and the wider Congress opposition. The ED has searched 21 premises linked to Karnataka Minister Satish Jarkiholi across Bengaluru, Belagavi and others. Now, the agency says it seized 3.3 crore rupees in cash and foreign currency while probing alleged overseas investments and PWD contract linked bribes. Jarkiholi denies those wrongdoings and saying that these actions are only politically motivated. I just switch tracks now and get you more, and this is in regard to Kargil veteran who has been attacked in Gurugram. Breaking news coming in of a Kargil veteran who has been attacked with iron rods. He was attacked by a parking attendant. Serious injuries have been sustained on his head as well as his elbow. The victim claims no action by the police in Gurugram. Now, this is a Kargil war veteran saying that I want an FIR for attempt to murder, but the police in Gurugram is not complying. No action has been taken against the parking attendant who attacked him with iron rods. He got injuries on his head as well as his elbow, and he's demanding an FIR be registered.
7: Kargil war mein पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन सफेद सागर जो है वो चलाया गया था, और उसमें ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी को लेकर नेटफ्लिक्स की तरफ से एक सीरीज भी आई है, लेकिन ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता के ऊपर गुरुग्राम में बीते रोज हमला होता है और जिसके बाद फिलहाल उनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता मौजूद है बात करने के लिए, और उनसे हम जानेंगे कि कैसे ये पूरी घटना जो है वो हुई, और जिस तरह से तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाएंगे कि उनके हाथ में काफी जो चोटें हैं वो लगी हुई हैं। सर, कैसे ये पूरी घटना हुई और आपके हाथ में जो चोट लगी है ये किस वजह से लगी?
8: तो ये 10 सितंबर की रात को हम लोग रेस्टोरेंट में खाने गए थे मॉल में। सो वहां पे जब फैमिली को छोड़ के मैं गाड़ी पार्क करने गया था, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो पार्क ही नहीं करने दे रहे हैं गाड़ी को, और 3-4 जगह गया ऑथराइज पार्किंग लॉट में, पार्क नहीं करने दे रहे हैं और बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो फिर मैं जब वापस कर रहा था गाड़ी, तो एक अटेंडेंट गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा, जोर जोर की मारने लगा, और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी मैं बाहर निकला कि भाई तुम गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ रहे हो, उसने सडनली गाड़ी के सामने आया, एक हैवी रॉड लेके आया और दो बार मेरे, एक बार पहली बार मारा मेरा पूरा हड्डी तोड़ दी और दूसरी बार मेरे सिर पे मारा, ये जो चोट है और ये हाथ पे राइट हैंड पे है
9: जी।
8: तो और फिर मैं जब पीछे भागा तो पूरा मैं ब्लीडिंग और काफी ज्यादा लहू लुहान था और वो आदमी फिर वहां पे वो डंडा फेंक, वो जो आयरन रॉड था उसको फेंक के भाग गया। और जो मॉल के जितने भी स्टाफ वाफ थे किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। मैंने कॉल करके पहले अपनी फैमिली को बुलाया, फिर 112 कॉल करके पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस आधे घंटे तक आई नहीं।
0: My colleague joining us to get us details on this. Anushka, a sudden attack which is unprovoked is what is being claimed by this Kargil war veteran, and also claiming that the police didn't come to his rescue. In fact, there was a chef in the area that finally had to help him with the situation. There were so many other people, other parking attendants and so on.

0: For the government, though, the criticism is evidence of an opposition looking for something to attack after a summit it believes went well for India. So the BJP is basically saying the success of the BRICS summit was being overlooked. This, as our sources also told us, that all chief ministers had been invited to the BRICS dinner, but opposition chief ministers did not attend. And meanwhile, there's also another point of view that's emerging as well, with the former Icelandic president Olafur Ragnar Grimsson saying that when he hosted the president of India in Iceland more than about two decades ago, he too served an entirely vegetarian menu. That's just another perspective. Here are the crucial reactions you cannot ignore this morning.
1: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले रूप हैं. हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते. हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते.
2: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं. जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे.
3: अपने प्रतिपक्ष के लोगों से बातचीत नहीं की और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए था. कम से कम डिनर में तो जो है एक साझी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी. तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सबसे पहले.
4: राहुल गांधी जी को भारत के सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है. वो अपने आप को ननियाल के चश्मे से भारत को देखते हैं. भारत के लोग हमेशा सनातन और संस्कृति से पले और बढ़े हैं, और भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवा. और हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है. जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वही इस तरह के बात और इस तरह के व्यंजन का बात करते हैं.
5: न्यू इंडिया इज राइजिंग एंड विनिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, बट द सिनिकल कांग्रेस एंड राहुल गांधी आर वाइनिंग एंड सल्किंग नॉनस्टॉप. The resounding success of the 18th BRICS summit was so comprehensive that even a perpetual pessimist like Rahul Gandhi had no room to criticize anything about the summit that he has now, in the most petulant manner, resorted to petty politics. P. Chidambaram and the other Naraz angry foofas of the Congress party had blatantly poo-pooed the 18th BRICS summit, and now it has very badly boomeranged and backfired on the Congress party.
0: Well, the BRICS summit may have concluded, but the political assessment of what India achieved is underway. Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav says the summit produced nothing significant, arguing that a grouping of this size and influence should have done more to push for an end to the Russia-Ukraine war and address the conflict in West Asia that involves the US, Israel and Iran. Of course, that is a high bar. BRICS cannot itself negotiate an end to either war. But it does raise a more relevant question this morning. What did the summit actually achieve on the conflicts that are having global economic and geopolitical consequences beyond the New Delhi Declaration? Let's go across to Rishabh Pratap for further clarity on this. Rishabh, the Samajwadi Party is asking, beyond the wars, what common ground did the BRICS countries find on the issues that India had put on the agenda?
6: Well, see, this is something that is a common question that is coming out, that what have we achieved, or what has the BRICS bloc achieved from the New Delhi Declaration? New Delhi Declaration is a comprehensive document, and that talks about a lot of things. You know, the main achievement of BRICS

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: सबका राजा आग प्योर मसाला।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the code.

0: केसरी त्यौहार विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आके और मसाला।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान
2: से, देश का टायर जेके टायर।

0: मांस मदिरा का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है। जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वही इस तरह के बात और इस तरह के व्यंजन का बात करते हैं।
1: न्यू इंडिया इज राइजिंग एंड विनिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज बट द सिनिकल कांग्रेस एंड राहुल गांधी आर वाइनिंग एंड सल्किंग नॉन स्टॉप। द रिजल्टिंग सक्सेस ऑफ द 18 ब्रिक्स समिट वाज सो कॉम्प्रिहेंसिव that even a perpetual pessimist like Rahul Gandhi had no room to criticize anything about the summit that he has now in the most petulant manner resorted to petty politics. P. Chidambaram and the other Nara's angry foofas of the Congress party had blatantly poo-pooed the 18th BRICS summit and now it has very badly boomeranged and backfired on the Congress party.
2: इसका सम्मेलन का एक हर एक निश्चित अवधि के बाद किसी न किसी देश में जो मेंबर है उसके सम्मेलन होता है। अब देखिए इसका रिजल्ट तो कुछ अभी खास आया नहीं। अगर ये ब्रिक्स वाले आपस में मिलके यूक्रेन और रूस के युद्ध को ही बंद कराने की कोशिश कर देते, ईरान और उस पर झमेला है उसको भी ईरान की राष्ट्रपति थे या किसी तरह से समझाते, क्योंकि सारी दुनिया में इस युद्ध का लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इतना असर पड़ रहा है सारी दुनिया में, कोई बिना प्रभावित हुए हो ही नहीं
3: रहा। एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद हैज डिमांडेड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग डिस्कशंस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट, अर्जिंग द सेंटर टू ब्रीफ द ऑपोजिशन ऑन द आउटकम ऑफ दैट हाई लेवल एंगेजमेंट।
4: देखिए ये हमको जानकारी इसमें मिलनी चाहिए और आप अभी अधिवेशन समाप्त भी नहीं हुआ और आप ये मान लें कि इसकी जानकारी फौरन दे दीजिए। जो आपस की वार्ता हुई है, प्रधानमंत्री की जो वार्ता राष्ट्रपति जी से हुई है, चाइना के राष्ट्रपति से हुई है, वो क्या हुई है, उसमें कौन सा बिंदु उठाया गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया चाइना की रही और आगे क्या रास्ता या क्या मार्ग उस पर आगे देखा गया है, समझा गया है, अनुमान लगाया गया है, इस पर अगर खुलकर सरकार विपक्ष के साथ बैठकर साझा करे अपनी बात तो फिर इस पर कुछ कहा जा सकता है। ये तो वो बिंदु हैं जो हमने पहले से संकेत जिनके बारे में दे रखे हैं और जिन पर हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ जवाब हमको देगी, आज तक तो नहीं दिए हैं।
3: Now, after the controversy over the proposed documentary screening on Umar Khalid at Bengaluru's National Law School of India University, that has now been postponed. The program that was slated to, that a viewing would have taken place, the screening would have taken place at 7 o'clock this evening, but it has been postponed. The AVVP had earlier demanded that the proposed screening be stopped altogether. It has questioned the decision basically to showcase Umar Khalid's life to students and alleged that the event is part of an attempt to establish a particular narrative. We have Karnataka deputy leader of opposition also there targeting the Congress over the proposed screening. In fact, he has gone ahead and alleged that the move amounts to support for what he's called anti-national forces and accusing the Congress of pursuing vote bank politics.
5: देखिए असल में ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी वजह ये है कि जब तक के conviction ना हो उस वक्त तक के हमारी कोर्ट की धारणा यह है कि वो आदमी इनोसेंट है। ए पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूफ अदरवाइज। जब तक कि कोर्ट से कोई आदमी मुजरिम साबित ना हो जाए उस वक्त तक के वो बेगुनाह है, मासूम है। तो इस बुनियाद पे स्क्रीनिंग नहीं होने देना ये दादागिरी है, एबीवीपी की गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
6: बिल्कुल उस स्क्रीनिंग को रोक दिया जाना चाहिए। हम किस व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्री विद्यार्थी को दिखाना चाहते हैं ये सोचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उमर खालिद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाता है जेएनयू के अंदर, उसकी डॉक्यूमेंट्री क्या विद्यार्थियों को दिखाएंगे क्या? ये कर्नाटक सरकार जो है ना एक तरीके से ये षड्यंत्र पूर्वक कर्नाटका के विद्यार्थियों के बीच में ऐसा नरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद इसको रोकने की मांग करती है। हमने वहाँ बैंगलोर में जिला प्रशासन को, वहाँ के संबंधित अधिकारियों को आगाह किया है कि इसकी स्क्रीनिंग रोक दी जाए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा, स्क्रीनिंग हम चलने नहीं देंगे।
7: इट्स ए ट्रेजेडी दैट कांग्रेस is going to any extent to woo Muslims and do support anti-national activities. Umar Khalid who is under judicial custody, who is under investigation because of his anti-India stand what he has taken, and he is part of the Tukde Tukde gang also. Congress, in order to support this Tukde Tukde gang and to support these anti-national forces, and in just with the intention of getting Muslim votes during upcoming UP election, they want to come out with the documentary.
3: Right, let's just also move on that India has once again snubbed Mohsin Naqvi at the Asia Cup after India's record 8th Women's Asia Cup, the win in Dubai. The presentation ceremony was delayed and the team refused to receive the trophy from the chief of the ACC, Mohsin Naqvi, who is also Pakistan's PCB chief and interior minister. The move basically mirrors last year's Men's Asia Cup final when India also refused to accept the trophy from Naqvi. Now, BCCI secretary has said that the decision was taken in solidarity with the men's team, which had also refused to accept this last year. So this is 2 years in a row, citing that the ongoing military conflict with Pakistan, and said that India would continue to play multinational tournaments as per the government policy, but would not accept every condition laid out.
8: Trophy ek controversial cheez hai abhi Asian Games mein, Asia Cup mein. Jis desh ka saath hamara talukat aaj pehle se kharab hai, lekin April 2025 se kafi bigar gaya hai, aur jiska saath hamara aaj tak bhi operation chalu hai. सो उस देश का जो मेन वन ऑफ द मेन लीडर जो हमारा देश का अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनका हाथ से हम ट्रॉफी नहीं ले सकता हूं. सो वो हमारा 1.5 साल पहले जब एशिया कप मेंस में हम लोग ट्रॉफी नहीं लिया, उसी का साथ सॉलिडरिटी रखकर हमारा महिला दल भी आज डिसीजन लिया कि वो लोग भी वो जो सॉलिडरिटी है उसको बरकरार रखकर सेम सिचुएशंस पे हम लोग ट्रॉफी कबूल नहीं किया.
9: The stand has been taken by BCCI and we are united and you know, standing by it, absolutely. Yeah, for us, this tournament is officially over. You know, the fact that we are champions, we are really glad, and I'm really proud of every single person in this unit, including the support staff and the players, needless to say. So yeah, we are looking forward for the Asian Games now. This is officially over.
3: Moving on now, days after Anthropic chief talked about slowing down as far as the development of AI is concerned, we have Elon Musk and OpenAI's CEO Sam Altman backing the idea. And now adding on to that list is the Microsoft CEO Satya Nadella, who has also weighed in the same. Nadella's message comes with a slightly different emphasis. He is not calling for a halt to the AI race. Instead, he wants the industry to slow down enough to get the safety mechanisms right, while making sure that technology does not slip out of the human control. He says that if AI we build is not helping humanity and is not under the control of humans, it's not worth pursuing. Let's just also get you the latest, and this is in regard to more news coming about from the United States. It's President Donald Trump who's pushing back against calls for tougher checks on artificial intelligence. Trump says that the U.S. cannot afford to slow down, especially when China is racing to catch up. Trump has acknowledged that some regulations may be needed, but he has warned against measures that could weaken the lead as far as America has in that very line of artificial intelligence. His comments come amid growing concerns inside the AI industry itself. So do remember, Anthropic CEO just a few days back had called for the industry to slow down the development of increasingly powerful AI systems. The debate has intensified after the former Anthropic researcher publicly resigned, warning that there is a 10% chance that AI could kill all humans within a few years. For Trump, the answer appears clear. America just needs to, you know, protect its lead. And that is something America must protect its lead, because in his opinion, in the race for AI supremacy, China cannot be allowed to get ahead. Let's listen in to how contradictory Donald Trump's statements are to what others in the industry are saying.
10: Well, I say this, look, we're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins. and we could

0: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
1: Siri AI can find what you need and get more done than ever.
2: And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
3: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
4: We have breaking news coming out of Gurugram. Rash driving and then hitting a biker incident has taken place on the golf course road in Gurugram. That was captured on camera. Speeding car driver hitting a woman riding a racing bike and fled from the scene. The accused driver sped off and fled the scene, according to reporters. The woman riding the bike has been now admitted to a hospital where her condition is reportedly critical. Based on the video, the Gurugram Traffic Police has launched an investigation into the matter and they've registered a case of hit and run.
5: Watch this video till end. Please watch this video till end. Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. And आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से. सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा

0: taken so much cognizance of this matter. Let's listen in.
1: जी जी 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है।
2: सर, क्या कुछ पहचान हो पाई
1: है? अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पहचान है वह की जाएगी और उसके अंदर जो कंसर्न्ड सेक्शंस हैं उसके अंदर कार्रवाई भी की जाएगी। मैं इस संबंध में स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो रैश ड्राइविंग की और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की और घटनाएं हैं और जो इस प्रकार के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस और गुरुग्राम पुलिस जो है उनकी जो है पैनी नज़र रहती है और इस प्रकार की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमानुसार जो सख्त धाराएं हैं उनके अंदर FIR रजिस्टर करके लीगल एक्शन से प्रोसीड किया जाएगा।
2: सर, क्या महिला ने शिकायत में ये भी कहा है कि उसको गाड़ी में जबरन बिठाने की कोशिश की गई थी?
1: जी जी, देखिए इस प्रकार की कोई भी शिकायत अभी पुलिस के पास नहीं आई है और जो वीडियो है वीडियो के आधार पर ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस के द्वारा अभी FIR स्वयं पुलिस के द्वारा वीडियो के आधार पर रजिस्टर की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो महिला है उनको भी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करके और उनसे जो साक्ष्य हैं और जो और भी घटनाक्रम है उसके बारे में भी तफ्तीश की जाएगी।
0: All right, so the police saying there that they, in fact, have started investigation. They have seen the video and they will also speak to the woman to try and get the details in the sequence of event under relevant sections of the IPC. I just want to, you know, because since the time I've seen this, ladies and gentlemen, I can't get over this. I mean, it could be anybody. I have colleagues here at NDTV, those who are riders, and the safety of those, if incidents like these come into effect or are seen, that really puts a question mark over that. I want to play this out once again for you. Take a look.
3: Hey guys, see the other side and please watch this video till end. Hey guys, see the other side and please watch this video till end.
0: Right, moving on now, another disturbing story from Gurugram. A Kargil war veteran was brutally attacked with an iron rod by a parking attendant at a restaurant in Gurugram. Once again, the city known for its ill-tempered people. Once again, in fact, this is an example of that. A retired Indian Air Force group captain, Amit Kumar, Gupta, a veteran of the Operation Safed Sagar, the series which has now gone viral, had gone to a restaurant for dinner with his family when the incident took place. Gupta is also a real-life inspiration for the character in the Netflix Air Force drama, Operation Safed Sagar, with the actor, Arnab Basin portraying his character on screen. A parking dispute reportedly turned violent with the attendant striking the car's windshield with an iron rod before attacking Gupta. He suffered serious head injury to his elbow, and later underwent a surgery as well, with plates now being inserted in his elbow. Gupta has also alleged that the accused threatened to kill him. He claims the police failed to provide adequate assistance and the hospital submitted a false MLC report as well. These are very, very serious charges. MLC is the medical legal, in fact, claim which the hospital has to generate when they receive a victim for any kind of injury. The veteran has now sought an FIR and demanded that an attempt to murder charge be registered against the accused.
4: 1999 कारगिल वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन सफेद सागर जो है वो चलाया गया था और उसमें ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई थी। इसी को लेकर नेटफ्लिक्स की तरफ से एक सीरीज भी आई है, लेकिन ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता के ऊपर गुरुग्राम में बीते रोज हमला होता है और जिसके बाद फिलहाल उनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है।
5: 10 सितंबर की रात को हम लोग रेस्टोरेंट में खाने गए थे मॉल में, तो वहां पे जब फैमिली को छोड़ के मैं गाड़ी पार्क करने गया था तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो पार्क ही नहीं करने दे रहे हैं गाड़ी को, और 3-4 जगह गया ऑथराइज पार्किंग लॉट में, पार्क नहीं करने दे रहे हैं, और बदतमीज से बात कर रहे हैं।

0: ये कहा जाएगा कि देश की सफलता रास नहीं आ रही, कांग्रेस को बुरा लग रहा है कि सब कुछ इतना अच्छे से क्यों हो गया। अच्छा पहले ही आपको एक नाराज फूफा आप लोगों को एक टर्म के तौर पे बताया,
1: आपने बड़ा अच्छा बोला नाराज फूफा। आपने देखा शादियों में जो पुराना दामाद होता है जिसकी शादी पहले हो चुकी होती है, बेचारे से कैसे क्या रवैया होता है उसका, भाग भाग के बेचारा काम कर रहा होता है लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। तो रही बात कि साहब आयोजन सफल था,
0: ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो गया,
1: आयोजन सफल था। अब ताज मानसिंह में एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही हो और ताज मानसिंह वाला उछल उछल के बोले साहब देखो शादी करवा दी मैंने, शादी हो गई, तो उसमें किसको क्रेडिट जाएगा? ताज मानसिंह को जाएगा क्या? अंकित जी तो जानते हैं कि वेडिंग और मैरिज में बहुत अंतर होता है। वेडिंग अच्छी हो गई मतलब नहीं कि मैरिज बहुत अच्छी चलेगी।
0: तो कुल मिला के आपको लगता है कि ये जो आयोजन था, ये
1: सवाल पूछे अपने अभी आप ही से सवाल पूछे हमने कि भाई ये बताइए क्या चीन से जब हम बात कर रहे थे तो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल पूछे, क्या गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहां अब हम नहीं जा पाते उसके बारे में सवाल पूछे, क्या हमने अरुणाचल के बाहर के बाद जो बॉर्डर है उस पर जो गांव बसाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है उस पर सवाल पूछे, क्या हमने अमेरिका की खुलकर निंदा की, पूरे वर्ल्ड पूरे विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी को एक तरह से ध्वस्त कर दिया, खतरे में डाल दिया, उस पर हमने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, क्या इसराइल का नाम लेकर उसकी निंदा करने की हिम्मत दिखाई? तो और छाबर पोर्ट के बारे में तो हम बात ही नहीं करते जहां हम इतना पैसा लगा चुके हैं, उस पर अब हम बात करना ही बंद कर दिए, क्या दबाव है साहब?
2: ओके
1: ये सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ तालियां बजाएंगे साहब शादी अच्छी हो गई।
0: तो सुना
2: All right, Jainendra, thank you for joining us. Jainendra, in fact, getting us the reaction from the Congress Member of Parliament, Pawan Khera, who has not only slammed what Ravi Shastri's tweet was after he saw that picture and he tweeted Congress reminding him that, you know, this in 2012, this with Prime Minister Manmohan Singh was, in fact, the Prime Minister, a similar event took place in the national capital where all these leaders did come. The leaders at that point of time of these countries had also joined in. Now, Congress leaders are slamming the women Indian team trophy snub. Vijay Wadthiwar, Congress senior leader, has said on the Asia Cup trophy controversy, Pakistan policy have always been anti-India. They are consistently destabilizing the country by sending infiltrators as if it is natural to react like this. But on one hand, we all left the country aside for our recent BRICS summit, and all the countries showed up. We moved past it through discussions. These are the latest, in fact, details coming in at this moment. Let's listen in.
3: ये कुछ सांकेतिक चीज़ें भी होती हैं। आप ने देखा ना, जैसे यूएई और ईरान की बातचीत ब्रिक्स में हुई कि नहीं हुई, वहाँ युद्ध भी हो रहा है, आपस की दूरियां भी हैं, कश भी है एक दूसरे से, लेकिन बातचीत तो करी है और बातचीत में कुछ सकारात्मक जो संदेश मिले हैं, जो संकेत मिले हैं, उनका भी सबने स्वागत किया है। तो ऐसा होता है जब कहीं पर अनबन हो जाती है और हम लोगों को एक दूसरे से कुछ कारणवश हमको दूरी बनानी पड़ती है, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो सब्सटेंटिव होती हैं, कुछ सांकेतिक होती हैं। क्रिकेटिंग बॉडी ने ये माना है, ये स्वीकार किया है कि इसको संदेश देने की आवश्यकता है और हम ऐसे संदेश देंगे, तो उस पर और क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि उनका अपना निर्णय है और उचित निर्णय होगा, सोच समझ के किया होगा।
4: पाकिस्तान की नीतियां हमेशा भारत विरोधी रही है, वो देश की नीतियां हमेशा भारत को दुश्मन बनकर ही उनके नीति को वो आगे बढ़ाते हैं। इस स्थिति में जो जिस तरह से उन्होंने भारत देश के साथ में व्यवहार उनका चलता है और हमेशा घुसपैठियों को घुसाकर देश को अस्थिर करने का काम किया जाता है, तो उससे तो स्वाभाविक है कि इस तरह का रिएक्ट होना और नहीं लेना, मैं बोलता हूं कि देश के लिए अच्छा ही है। हम लोग चर्चा से आगे बढ़े, हम लोग चर्चा से सुलझाए, पर इस तरह अपन एकमेक के दुश्मन है करके हम कितने साल और निकालेंगे और कितने साल एकमेक का दुश्मन बनकर बाकी

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
5: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
6: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
7: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
8: We have breaking news coming out of Gurugram. Rash driving and then hitting a biker incident has taken place on the golf course road in Gurugram. That was captured on camera. Speeding car driver hitting a woman riding a racing bike and fled from the scene. The accused driver sped off and fled the scene, according to reporters. The woman riding the bike has been now admitted to a hospital where her condition is reportedly critical. Based on the video, the Gurugram Traffic Police has launched an investigation into the matter and they've registered a case of hit and run.
9: Watch this video till end. Please watch this video till end. Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से. सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा मेरा मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है.
8: Well, Tejshree, my colleague, are joining us in order to get us, you know, the entire details as far as the case is concerned. The Gurugram, you know, police has now registered a case. We've just heard the account of that biker who has been injured seriously in this particular clip. We can see how the car comes really close and, you know, on purpose has hit the bike.
10: Well, absolutely. You see in the picture, in the visuals, actually, it's very much clear that he was trying to overtake from a wrong side. And rather than apologizing for this entire incident, he was also in an argument. And then we also saw that how he fled the scene after hitting the, you know, after hitting the driver. But then later on, now needs to be seen that what happens, because the girl right now is admitted to the hospital is what we are given to understand. And now the Gurugram police has also launched an investigation into this matter so as to who the driver was and where was he heading towards and what was the entire situation given at that particular point of time, keeping in mind that how the car has hit the rider and then she fell down from the bike and now also in fact has released a video seeking help from the people that she needs justice now. And not just that, but also in fact we have been seeing that she could also have lost her life if this, you know, incident could, if the speed of the car was much higher than what it could be seen in the picture right now. But also, in fact, you know, we have been seeing such kind of incidents are very common, especially on the roads of Gurugram. Sometimes it's thar hitting a biker. And now, in fact, it's a car which is hitting a rider. And again, rather than being apologetic in behavior, he has just fled the scene. And this is also, in fact, we have been seeing in early cases as well, where the driver, rather than accepting the mistake, they flee away from the scene and leaving the injured on the road.
8: Right, Tejasri, you know, very shocking video has come to light. They even had, you know, an exchange of word there. In fact, she did ask the driver to, in fact, keep a distance from her bike. In order to know more on this, we have Pankaj Poptani, Royal Enfield Club Noida member, joining us as well. Thank you for, for speaking with us here on NDTV. Talk us through the challenges that bikers today face, particularly those who are, you know, riding for fun or for, you know, it's their hobby to basically be on a bike, take those long rides, you know, go on a long drive on these roads, particularly Gurugram, Noida roads are the ones that are preferred by bikers. Talk us through the challenges that one faces while one is trying to, you know, live out this hobby and enjoy this hobby that, you know, bikers who you know, we see on social media, because she also had a social media handle, sir.
11: Well, I do agree. Whenever a biker goes onto the road, we do face a lot of challenges. And the first challenge is, as a biker, we are not allowed on all the highways which are in India. We do have certain good expressways, but we are not allowed. And another challenge which we primarily face, that's a kind of a lane discipline, because whenever you go on, even onto the city roads or even onto the highways, there is like hardly any sort of a lane discipline. And these are, like, I would say, the primary challenges which a biker face. On top of that, just a kind of an humble request to all the car owners. I mean, I do own a car. I do go on to the off-road trips as well, over the car as well.
5: Welcome to the second hour of Breaking Ground here on NDTV. I am Ankit Tyagi, standing in for my colleague Vedika, who will be back tomorrow. Ladies and gentlemen, an action-packed lineup, you know, for you. Important stories from across the country. Let's take a look at the headlines at 1 p.m. Speeding car hits a woman biker on Gurugram's golf course road. Driver on the run. Woman biker critical. Gurgaon police registers a hit-and-run case. Kargil veteran attacked with an iron rod by a parking attendant in Gurugram. The veteran suffers serious injuries. Claims the police took no action. Former India cricketer and coach Ravi Shastri prays for the BRICS summit. Congress fumes, slams him for praising the event. Says we know who in the PMO is dictating these promotional posts. Tamil Nadu Chief Minister Vijay faces opposition heat over his United Kingdom visit. Udayanidhi Stalin says bipole is the beginning of the end of TVK government. BJP says Vijay used government money for personal trip. After Elon Musk and Sam Altman, Satya Nadella joins AI showdown, slowdown debate, says if AI we build is not helping humanity and under human control, then it's not worth pursuing. Asia Cup trophy impasse continues for the second year in a row. Indian women team refuses to take Asia Cup trophy from ACC President and Pakistan Cricket Chief Mohsin Naqvi. It was supposed to be a relaxing Sunday morning joyride, a Sunday morning ride that turned into a terrifying chase on Gurugram's posh golf course road after a car allegedly followed a group of bikers and specifically targeted a woman biker. Then he tried to block a woman rider. She's Sia, who has in fact put out this video, says the driver appeared drunk, continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly hit the rider, and Sia in this case, and threw her onto the road, dragging her several meters.
12: Her co-rider tried to chase this car and confronted the driver, but the car sped away once again. Now in a major NDTV impact, Gurugram police have taken Suo Motor cognizance of the case and registered the FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and had given it to a friend who has been identified as Kalyan. Now, we now play out this disturbing sequence of events that took place on Sunday morning that have raised important questions on the law and order situation in Gurugram.
9: आज एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था वो कुछ एक्शन करता है मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है जब उसने मुझे मारा मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ तुम्हारी गलती है उसने बोला मेरी गलती नहीं है वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम इन सपोर्ट एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें
12: Let me, in fact, at this moment, introduce my colleagues, Tejshree and Anushka, those who are, tracking this story. Let's first go across to Tejshree, who is with the top police officials in Gurgaon to try and get an update on what's the police doing at this moment. Tejshree, over to you.
13: Well, yes, absolutely. A very shocking incident has come to light, the manner in which we have been also seeing the video. But what actually is the update in the investigation? To speak more on this, I'm being joined exclusively by ACP Abhilaksh Joshi. Abhilaksh ji, thank you for speaking to NDTV. Sir, is pure mamle mein sabse pehle to kya update hai? Aap bata payenge ki kya kuch ghatna hui thi us din Golf Course Road par jab ladki ka peecha kiya ja raha tha car ke dwara?
14: Ji. गुरुग्राम पुलिस के जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा एक वायरल वीडियो को इंटरसेप्ट किया गया जिसके अंदर एक टू व्हीलर पे एक राइडर थी महिला राइडर जिसको फोर व्हीलर के पीछे से जो है हिट करने का जो मामला है वह वीडियो में सरफेस हुआ तो अकॉर्डिंगली हमारी जो टीम के द्वारा इसको इंटरसेप्ट करने के बाद सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर जो है अभियोग अंकित कर दिया गया है और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग और अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो भी है लीगल एक्शन वह लिया जाएगा
13: अभी अक्यूज्ड को लेकर क्या कुछ अपडेट है क्या अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है अभी तक या फिर उसकी जानकारी मिली है कि अक्यूज्ड कहां से है
14: जी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आएंगी अभी एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो विक्टिम है उन्हें भी संपर्क किया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो अन्य जो एविडेंस हैं वो रिकॉर्ड पे लेके एक्यूज को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है वह लिया जाएगा
13: गाड़ी जिसको बिलोंग करती है क्या गाड़ी वही व्यक्ति चला रहा था या फिर कोई और चला रहा था और गाड़ी में कितने लोग थे अभिलाक्ष जी
14: देखिए ये सभी जो चीज़ें हैं ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये वीडियो क्योंकि हमारे पास आज ही सरफेस हुई है और जैसे ही ये वीडियो हमारे पास आई है जो हमारा जो स्पेशल मॉनिटरिंग सेल है उसके द्वारा ये वीडियो को जैसे ही इंटरसेप्ट किया गया तो तुरंत हमने इसमें अभी कॉग्निजेंस लिया है और अकॉर्डिंगली ये जो डिटेल्स हैं ये सब डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी और तुरंत ही इसके ऊपर जो है आगे कार्रवाई अभी की जाएगी
13: विक्टिम जो है उसका क्या कुछ कहना है कि क्या कुछ घटना हुई थी क्योंकि उसका ये भी कहना है कि वो देख रही थी कि काफ़ी समय से उसे फॉलो किया गया था और उसने मना भी किया कि आप पास से गाड़ी मत लाइए फिर भी उसे फॉलो किया गया
14: जी गुरुग्राम पुलिस द्वारा जो विक्टिम है उनसे भी संपर्क भी जो है वह किया जा रहा है, और उनसे संपर्क होने के उपरांत जो उनका जो डिटेल स्टेटमेंट है वह रिकॉर्ड किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली वह जैसे ही अपने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएंगे उनको भी हम फाइल पर लेके और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन में आगे प्रोसीड करेंगे।
13: लेकिन सर दिन दहाड़े इसी तरह से घटनाएं हो रही हैं, रात को तो हमने रोड रेज के एक्सीडेंट्स देखे ही हैं जहां पर।
12: इफ यू कैन हियर मी, कैन यू आस्क अ क्विक क्वेश्चन, बिकॉज़ द ओनर ऑफ दिस व्हीकल हु वाज व्हेन वी इन फैक्ट स्पोक टू द ओनर ऑफ द व्हीकल,

0: that he is facing at this moment from the opposition party. Moving on now, for the first time in history, Vande Mataram, India's national song, was played at the venue before the national anthem at the Arun Jaitley Stadium ahead of the first T20 match against Afghanistan. This is the first time Vande Mataram has preceded the national anthem at an international sporting event involving India, but the move has drawn criticism from the opposition as they question the purpose of introducing a new tradition. Congress has asked whether such a move would create jobs, strengthen the Indian team, or help India make gains in science and technology.
1: नई परंपरा नहीं है भाई, ये मतलब बिना मतलब का, इससे कोई रोजगार मिल जाएगा कि भारत की टीम मजबूत हो जाएगी, या जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत पीछे हैं उसमें हमें बढ़त मिल जाएगी, एक्सपोर्ट हमारा डाउन है, कर्ज हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इस देश के ऊपर जनजी की क्या समस्याएं हैं, भयंकर समस्याएं हैं, क्या इससे हो जाएगा? ये केवल नरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदू मुस्लिम का.
0: Moving on now, Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping's bonhomie at the BRICS summit has now triggered questions from the Congress. Prime Minister Modi and the President of China held a bilateral meeting on the sidelines of the summit, with both sides discussing India-China relationship and the way forward. But Congress MP Pawan Khera has questioned whether India raised its core concerns during the talks, including situation along the line of actual control, Ladakh and Arunachal Pradesh. He said India has not forgotten the 20 soldiers who were killed in the Galwan clashes, and argued that bilateral talks and joint statements cannot be enough.
2: चीन के साथ bilateral बात हुई, क्या उसमें हमने लद्दाख और अरुणाचल की बात की? लाल कालीन बिछाना आसान है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे. क्या यथास्थिति लद्दाख में 2020 जून से मई से पहले की वो बहाल हुई? क्या चीन की भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की मदद करने की रही, उस पर हमने कोई सवाल पूछे? तो 20 हमारे शहीद हुए थे जवान गलवान में, हम उनको थोड़ी भूल जाएंगे. आप करते रहिए बायलैटरल, करते रहिए, आप निकालते रहिए जॉइंट स्टेटमेंट्स.
3: ये हमको जानकारी इसमें मिलनी चाहिए, और आप अभी अधिवेशन समाप्त भी नहीं हुआ और आप ये मांगें कि इसकी जानकारी फौरन दे दीजिए. जो आपस की वार्ता हुई है, प्रधानमंत्री की जो वार्ता राष्ट्रपति जी से हुई है, चाइना के राष्ट्रपति से हुई है, वो क्या हुई है, उसमें कौन सा बिंदु उठाया गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया चाइना की रही, और आगे क्या रास्ता या क्या मार्ग उस पर आगे देखा गया है, समझा गया है, अनुमान लगाया गया है, इस पर अगर खुलकर सरकार विपक्ष के साथ बैठकर साझा करे अपनी बात, तो फिर इस पर कुछ कहा जा सकता है. ये तो वो बिंदु हैं जो हमने पहले से संकेत जिनके बारे में दे रखे हैं, और जिन पर हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ जवाब हमको देगी. आज तक तो नहीं दिए हैं.
0: The menu that was served at the BRICS gala dinner has become a political talking point. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition and says that it is sulking. Rahul Gandhi said 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM leader Waris Pathan also took a jibe at the BJP, saying Fufa, Mamu, Kalu will be upset. BJP hit back, saying the opposition had nothing but a menu to criticize.
4: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले रूप हैं. हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते. हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे. तो ये काम हम नहीं कर सकते.
5: क्या इसको आगे और पॉलिटिकली उठाने की तैयारी है?
2: बात है इस मेन्यू के पीछे की मानसिकता को हम शुरू से चुनौती देते आए हैं, आज से नहीं, 100 साल से. अगर आरएसएस 100 साल पुराना है, हम भी 150 साल पुराने हैं. तो हम भी इस मेन्यू के पीछे की मानसिकता को चुनौती दे रहे हैं। ये मानसिकता वही है कि नागपुर तय करेगा कौन क्या कपड़े पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन किस भाषा में बात करेगा। तो नागपुर तो तय नहीं करेगा, क्योंकि चॉइस इज द फाउंड बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी।
5: लेकिन किसी डेलीगेट ने ये शिकायत नहीं कि कोई जो
2: मेहमान आपके घर आकर आपकी शिकायत थोड़ी करेगा, उनमें आपसे ज्यादा ग्रेस है, ये भी हो सकता है।
5: तो क्या इसको लेके कोई आगे आप लोग इस इशू को उठाएंगे?
2: इस मानसिकता को तो हम आज से थोड़े उठा रहे हैं, 100 साल से उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे।
1: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
6: आपने प्रतिपक्ष के लोगों से बातचीत नहीं की, और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए था। कम से कम डिनर में तो जो है एक शादी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी। तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सब सुबह।
7: राहुल गांधी जी को भारत के सभ्यता और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप को ननियाल के चश्मे से भारत को देखते हैं। भारत के लोग हमेशा सनातन और संस्कृति से पले और बढ़े हैं, और भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भवा। और हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है। जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वही इस तरह के बात और इस तरह के व्यंजन का बात करते हैं।
8: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते। छोटी सोच है ये, बहुत ही मैं ऐसा मानता हूँ गलत सोच है।
9: न्यू इंडिया इज राइजिंग एंड विनिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, बट द सिनिकल कांग्रेस एंड राहुल गांधी आर वाइनिंग एंड सल्किंग नॉन स्टॉप। द रिजल्टिंग सक्सेस ऑफ द 18 ब्रिक्स समिट वाज सो कॉम्प्रिहेंसिव that even a perpetual pessimist like Rahul Gandhi had no room to criticize anything about the summit that he has now in the most petulant manner resorted to petty politics. P. Chidambaram and the other Naras, angry foofas of the Congress party had blatantly poo-pooed the 18th BRICS summit, and now it has very badly boomeranged and backfired on the Congress party.
10: इसका सम्मेलन का एक हर एक निश्चित अवधि के बाद किसी न किसी देश में जो मेंबर है उसके सम्मेलन होता है। देखिए इसका रिजल्ट तो कुछ अभी खास आया नहीं। अगर ये ब्रिक्स वाले आपस में मिलके यूक्रेन और रूस के युद्ध को ही बंद कराने की कोशिश करते थे, ईरान और उस पर झमेला है उसको भी ईरान की राष्ट्रपति थे या इसी तरह समझाते, क्योंकि सारी दुनिया में इस युद्ध का लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इतना असर पड़ रहा है सारी दुनिया में, कोई बिना प्रभावित हुए हो ही नहीं रहा है।
0: Right, breaking news coming in at this moment. Disha Salian case, the CBI has registered an FIR. The persons whose roles require investigation in connection with the commission of the principal offence, criminal conspiracy, subsequent creation and propagation of false suicide theory and suppression and destruction of fabrication of evidence. This includes Aditya Thackeray.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर बोल्डर मोर रेस्टलेस इट डजंट स्टॉप Neither do we. NDTV, when it really matters. मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
1: We have breaking news coming out of Gurugram. Rash driving and then hitting a biker incident has taken place on the golf course road in Gurugram. That was captured on camera. Speeding car driver hitting a woman riding a racing bike and fled from the scene. The accused driver sped off and fled the scene. According to reporters, the woman riding the bike has been now admitted to a hospital where her condition is reportedly critical. Based on the video, the Gurugram Traffic Police has launched an investigation into the matter and they've registered a case of hit and run.
2: Watch this video till end. Please watch this video till end. Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था वो कुछ एक्शन करता है मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है जब उसने मुझे मारा मेरा मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है
1: Well, Tejshri, my colleague are joining us in order to get us, you know, the entire details as far as the case is concerned. The Gurugram, you know, police has now registered a case. We've just heard the account of that biker who has been injured seriously in this particular clip. We can see how the car comes really close and, you know, on purpose has hit the bike.
3: Well, absolutely. You see in the picture, in the visuals, actually, it's very much clear that he was trying to overtake from a wrong side. And rather than apologizing for this entire incident, he was also in an argument. And then we also saw that how he fled the scene after hitting the, you know, after hitting the driver. But then later on, now needs to be seen that what happens because the girl right now is admitted to the hospital is what we are given to understand. And now the Gurugram police has also launched an investigation into this matter so as to who the driver was and where was he

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
6: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: हेलो एंड वेलकम टू एप्पल पार्क। आई एम सो थ्रिल्ड टू बी हियर टुडे। एवरीडे पीपल अराउंड द वर्ल्ड रिलाई ऑन आवर प्रोडक्ट।
11: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
12: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War-struck country.
0: Hard questions.
2: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
1: In France. In Italy.
2: At Srinagar.
1: I am Mr.
2: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: If a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
5: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: Welcome to India's biggest grassroots innovation movement, Vande Bharatam. From ideas to impact, from teams to nation building, let the journey begin. हमारे इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के मेंटोर्स को. तो प्लीज वेलकम ब्यूटी और ग्रूमिंग इंडस्ट्रीज के किंग माने जाने वाले, विजन को बिजनेस में बदलने वाले रेने कॉस्मेटिक्स के फाउंडर आशुतोष बलानी. हाय आशुतोष.
1: हेलो, हाउ आर यू?
0: वेलकम टू वंदे मातरम.
1: थैंक यू सो मच.
0: 26 साल के बैंकिंग के तजुर्बे से इन्होंने सिखाया कि असली वैल्यूएशन हाइप में नहीं, हिसाब में होती है. प्लीज वेलकम कैक्टस पार्टनर्स के मास्टरमाइंड और स्टार्टअप इकोसिस्टम के वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन इन्वेस्टर, ऑल्सो नोन एज द एंटी पावर लॉ इन्वेस्टर, मिस्टर राजीव खालम्बी. हाय राजीव, वंदे भारतम की इस मंच पर आपका स्वागत.
1: थैंक यू. थैंक यू.
0: प्लीज हैव अ सीट. एक वक्त था जब 10 लाख का लोन मिलना भी इनके लिए स्ट्रगल था, और आज इन्होंने नियरली 1700 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है. हमारे इनोवेटर्स के लिए इनसे बड़ी इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकती. शी इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज. प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट मेंटोर, उज्वा की को फाउंडर आरती गिल. हाय आरती, वेलकम टू वंदे भारत.
2: थैंक यू सो मच.
0: प्लीज हैव अ सीट. हर बिजनेस को एक फाउंडर मिल जाता है, लेकिन हर बिजनेस को उसे नए शिखर तक ले जाने वाला लीडर नहीं मिलता. 500 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स और लाखों सेलर्स के ग्रोथ पार्टनर, प्लीज वेलकम फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति. हाय कल्याण, सो गुड टू हैव यू ऑन वंदे भारतम.
3: इट्स अ प्लेजर राजू. थैंक यू.
0: प्लीज हैव अ सीट.
3: थैंक यू.
0: इन्होंने 22 साल की उम्र में एक मैनेजमेंट ट्रेनी से अपना सफर शुरू किया, और आज इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी को लीड कर रहे हैं. जैसे इन्होंने अपने पिताजी गौतम अदानी जी की विरासत और पोर्ट बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ठीक वैसे ही आज इस नए मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं द सेकेंड जनरेशन विजनरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मिस्टर करण अदानी. Hi Karan, thank you for your time and thank you for coming to Vande Bharat. Please have it. Welcome to Vande Bharatam. Karan, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे.
1: One advice I would give is के keep working hard, be grounded and never give up learning, because every day there is something new to learn from everybody who you work with.
0: And that's got to be a motto of your family, na? Be grounded. And that's one thing that comes across loud and clear. Be grounded. And that's how you should be living, I think. You know, be grounded. I think that's one thing that they should learn. Unko ye samajh mein aana chahiye, kyunki yahan se jaane ke baad mein jab wo udaan bharenge, to ye advice bahut kaam aayegi ki please always be grounded. So welcome to Vande Bharatam. Shuru karte hain. Bulaye hamare jo innovators hain. To hamare jo pehle innovator hain, wo mere shares hain, Jaipur se hain. बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें बिजनेस करना आता है और मुझे एक्टिंग, लेकिन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज ये इतना इंक्लूसिव है कि हम दोनों साथ में इस मंच पर खड़े होंगे. प्लीज वेलकम फ्रंटियर मार्केट की इनोवेटर अजयता शाह, जयपुर राजस्थान से. So nice to have you here.
4: Thank you so much for having me.
0: मेरी छाती ना ऐसे इस समय सीना जो है वो चौड़ा हो रखा है मेरा, क्योंकि आप जयपुर से हैं, आप मारवाड़ी हैं, और उससे ज्यादा इसलिए कि आप उन लोगों को सशक्त बना रही हैं जिन्हें बहुत पहले सशक्त हो जाना चाहिए था. आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन. यू नो, टू मेक अ वुमन स्पेशली फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, फ्रॉम अ विलेज, टू मेक अ फील फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज अ ह्यूज थिंग, बिकॉज आई हैव फिगर्ड दिस एंड आई हैव रियलाइज दिस दैट सब कुछ करती हैं वो, बस उन्हें एक मलाल रहता है उनकी जिंदगी में कि उन्हें ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महसूस नहीं होता है. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. I think your pitch is ready. I'm very, very sure.
4: Yeah.
0: You look very confident.
4: I'm happy to be here.
0: So. Yes, and we're happy to have you here.
4: Yep.
0: और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब.
4: So hello mentors. I am Ajayta Shah, founder of Frontier Markets. भारत इंडिया के tier 4, 5, 6 गांवों को villages अगर अपन देखें तो आज भी 80 करोड़ ऐसे जने हैं जिनके पास उनके जो products और services की जरूरत होती है वो पहुंचते नहीं है उनके पास. और ऐसा नहीं है कि solutions नहीं है, innovators नहीं है. But to reach 7 lakh rural villages in India, you need infrastructure, You need deep rural customer understanding, and most importantly, you need a trusted distribution network. So what is the solution? It's women. Why? Because mahila jo hai, unke paas bahut badi poonji hai bharosa ki, aur wo literally kundli nikal sakti hai sab log ki. So welcome her into our Frontier Markets platform. Frontier Markets has become the rural distribution infrastructure, layering an operating level with women and a scale level with technology. Using our AI-enabled Meri Saheli app, Saheli's become entrepreneurs, but they become digital dukans. And that was the vision, but she's also using technology to gather customer insights, do demand generation, build credit history, facilitate assisted commerce, and then do delivery and services. We've done about 800 crores worth of sales on products and services. We have about 210 plus partners on our platform that help us deliver the services to the last mile. And we are in 5,000 villages across 4 states of the country. Hum yahan par kyun hain? Hum chahte hain ki 10 lakh saheli hone chahiye. And we should be able to service every single rural family in last mile delivery. But also, we're looking for product partners and brands and innovation. So join us in getting involved. I'd love to understand ki aapke level pe hum kaise jud sakte hain aapke saath to scale this. Aaj 4 states mein hain. And har state mein government ka partnership hai, but wo government ke partnerships aur banane. Secondly, aaj hum log jo bhi products or services leke aa rahe hain wo kam hai. We need more in terms of procurement. And third, of course, strategic capital allows us to build our technical capabilities. So these are probably the 3 major asks from my side.
2: That's great work, Ajayda. First of all, let me congratulate you. बहुत कम लोग हैं जो इंडिया को नहीं भारत को कैटर करते हैं और ये उनमें से एक है तो सबसे पहले बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एम्पावरिंग वुमेन ऑफ इंडिया एंड डूइंग राइट बाय भारत
5: यू हेल्प द लेडीज सेट अप देयर ओन बिजनेस इज दैट व्हाट यू डू
4: हमारे एसईजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज 15 करोड़ महिलाएं दैट आर पार्ट ऑफ द लाइवलीहुड मिशन उसमें से लगभग 25% आर नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर्स Which means कि कोई ना कोई दुकान या टेलरिंग का काम या ब्यूटी पार्लर या घर से कुछ बना करके वो बेच रहे हैं सो उन्होंने टेक्निकली एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दिया था बिफोर वी इवन एंटर्ड और वो एसईजी के साथ जुड़ी हुई है हम आते हैं सो वी डिजिटाइज हर वी बिल्ड हर कैपेसिटी एंड वी डाइवर्सिफाई हर इनकम अपॉर्चुनिटी
6: कैन यू वॉक ऑल ऑफ अस बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर्स
4: सो आवर जीएमवी लास्ट ईयर वाज 226 करोड़ ईयर बिफोर दैट वाज अबाउट 100 करोड़ this year will be lagbhag around 450 crores. Our ratio in terms of the GMV is split based on FMCG, agriculture, digital banking services, and consumer durables. And like, let's mix that basket.
1: Just out of curiosity, is there a solution is the same for across all the states, or is it? Or you found that certain things work in one state, certain things don't work in another?
4: So I think, sir, consistency is the key to the devil's in the details, right? So SEG ka jo infrastructure hai, it's actually quite nationalized, right? So wo infrastructure, wo reach, National Rural Livelihood Mission, wo sub is the same in every state. Obviously, language is different, but language is an easy insertion. The role of a entrepreneur is exactly the same. These women are eager to earn income. What we also know is they don't want to leave their village. Wo bahar nahi jana chahte hain. Wo 10 gaon ko sambhalna nahi chahte hain. Wo literally unke paas honestly main bata du 5 se 6 ghante ka time hai. Subah bahut sare kaam hai, sham ko bahut sare kaam hai. To wo 5 ghante mein wo kya kar sakti hai jahan wo kamai kar sakti hai, naam bhi bana sakti hai and suvidhaye bhi leke aa sakti hai. To wo standard practice actually agar aap tier 4, tier 5, tier 6 ke gaon mein dekho, it's actually exactly the same. Sab kisan family hai. Right, 80% is kisan family. So, wo standard infrastructure ki wajah se, this has become a very easy model. So, hum log Gujarat mein hain, Andhra mein hain, UP mein hain, Rajasthan mein. We're about to enter Bihar, Jharkhand, and Maharashtra because now we're getting invited.
7: You're raising the money right now towards OPEX.
4: It's more for tech.
7: Okay.
4: It's a tech build, and it's an HR build. We want to bring in more senior folks because there's a bunch of things that we need to bring in that will allow us to strengthen.
7: Yeah, please let us know if we can be helpful in any way. I think it's a noble cause you're pursuing and takes a lot of courage to do what you're doing.
1: I think it would be great if we can connect separately. Our foundation team would love to engage with you.
4: I would love that.
1: We work in almost 323 different
4: Correct.
1: Locations.
4: Yeah.
1: And most of our engagement is in rural. So we would love to see how we can help in terms of increasing your reach over there.
4: That would be amazing.
2: No, so Karan, I think time for a Wings Golden yes. Wing here.
5: I was just thinking the same thing.
1: What did you guys think?
5: Yeah?
1: Yeah?
5: Okay.
4: Thank you.
1: Thank you so much.
4: I'm really looking forward
1: no,
4: to
1: your
4: idea.
1: Forward.
4: Like, thank you really so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody.
8: Guys,
4: thank
8: you're
4: you.
8: Amazing.
4: Thank you.
2: Best of luck.
8: Thank you.
0: How are you feeling?
4: I'm feeling now calm because ab khatam ho gaya. But also quite excited that ab shuruaat ho gayi.
0: So hamare Vande Bharatam parivar ki taraf se ek chota sa tohfa hai aapke liye. Ye dekhiye.
9: Ajita ma'am, main yahi kahungi ki aaj jin महिलाएं जो गांव में घरों में बैठकर अपना सिर्फ पति पर डिपेंड थी उन महिलाओं को घर से निकालकर उनके हस्बैंड के साथ कंधा मिलाकर खड़ा जो कर दिया है इससे उनकी परिस्थितियां तो सुधरी हैं उसके साथ साथ उनकी पहचान भी बनवाई है मैम ने
10: ऑनलाइन के बारे में तो महिला तो बिल्कुल जानती नहीं थी आज हमारी महिला बहुत जागरूक है जिनके साथ दुकान का काम चल रहा है दुकान चला रही है जिन साथ सिलाई का कार्य चला रही है तो हर रोजगार से जुड़ी है ऑनलाइन कार्य के बारे में सीखकर आज मैं जो मेरी जिंदगी है बहुत अच्छी है मेरे पास गाड़ी है प्लॉट है मकान है सब कुछ है
11: मैडम का शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि हमको उन्होंने ये जरिया दिया और आगे ऐसी और योजनाएं लाती रहें जिससे महिलाएं आगे और बढ़ती रहें
0: अजय तो लाइफ में ना पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं आशीर्वाद ब्लेसिंग्स थोड़े कम You are one of them who's actually done both. You've got both. So, well done. So, so proud of you. And I'm hoping to see you in the finale episode. You know that the top five winners will be in the finale episode. And maybe you get an opportunity to meet Mr. Gautam Adani. Yes. Well done.
4: Thank you. Thank you, guys. Thank you so much.
0: Pause, please.
12: और आज वंदे भारतम के मंच पर दिखे कुछ यंग इनोवेटर्स
13: हम सीवीड और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से रीजनरेटिव पैकेजिंग मटेरियल डेवलप कर रहे हैं टू रिप्लेस कन्वेंशनल प्लास्टिक फिल्म्स एंड इको पेपर विद आवर प्रोप्राइटरी इको कोटिंग
12: जिनके यूनिक इनोवेशंस ने मेंटोस को किया इम्प्रेस
14: हमने देखा कि इंडियन स्किन केयर मार्केट इज बूमिंग फिर भी इंडियन कंज्यूमर कहीं ना कहीं फॉरेन फॉर्मुलेशन या फॉरेन R&D को ज्यादा देखते थे बिकॉज दे ट्रस्टेड देयर मोर And that is what we wanted to change.
12: जहां young minds ने दिखाया अपना talent, वहीं कुछ जोड़ियों ने भी मिलकर दिखाया अपने innovation का कमाल.
15: We have developed our 3-in-1 made in India respiratory device, which can measure lung function of a patient's oxygen saturation, temperature and pulse all in one single device.
12: और Tri-Nano की जोड़ी ने साबित किया कि innovation की कोई age limit नहीं होती.
0: मुझे लगता है कि जो एक सपना था जो सोचा था वंदे भारतम के बारे में गौतम अदानी जी ने कि इस मंच पर वो सब आए यू नो जहाँ उम्र कहीं बैरियर ना हो जहाँ तजुर्बा कोई बैरियर ना हो तो ये आपको देखकर मुझे लगता है कि वो जो सोच है वो सार्थक होती है वेलकम टू वंदे भारतम
7: थैंक यू सर थैंक यू
0: आप लोग रेडी हैं अपनी पिच के साथ में
7: बिल्कुल
0: जी तो आपके चमकने का समय शुरू होता है आप
7: नमस्ते मेंटर्स अगर हम देखें तो आपकी गाड़ी के शीशे पे धूल होगी या टीवी के स्क्रीन पे धूल होगी या चश्मे पे धूल होगी तो विजन और क्लैरिटी दोनों कम करती है लेकिन अगर हम सोलर पैनल पे बात करें धूल मिट्टी की तो उससे सोलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है सनलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन का है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसमें वेस्ट हो जाता है तो उन सबसे जुड़ी हुई इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम Tri-Nano टेक्नोलॉजी से मैं हर्ष सेठी
16: मैं डॉक्टर अंशु डांडिया ग्रीन केमिस्ट स्पेशली एंड रिसर्च डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ Tri-Nano टेक्नोलॉजी
7: हमारी जो टेक्नोलॉजी है 3D क्वांटम क्लैडिंग इज नैनो कोटिंग सोलर पैनल पे सबसे टॉप सरफेस ग्लास होता है तो हम ग्लास पे वो करते हैं और एक नैनो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एट सब एटमिक लेवल पे अमेजोन रेन ट्री फॉरेस्ट को मिमिक करता है
16: ये हमारी जो कोटिंग है वो अभी तक कोई दूसरी कोटिंग इसको क्लेम नहीं कर रही है और हमारी ये सब ऑल प्रॉपर्टीज वेल एस्टेब्लिश्ड है in the various laboratories. We are IIT incubated and MNRE supported.
8: हमारी जो कोर टेक्नोलॉजी है वो कोई भी पैनल, कोई भी ब्रांड, कोई भी मेक, कोई भी टाइप, कोई भी एज, कोई भी लोकेशन एग्नोस्टिक है, सब पे लगाई जा सकती है. अगर नए पैनल है तो हम मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे और लगे हुए पैनल है तो हम साइट पे जाके करेंगे. और बाकी हमारा आइडिया यही है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सके. हमारी अपेक्षा अडानी ग्रुप से ये है कि हमने कुछ प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट किए हैं अडानी ग्रुप के साथ में, अडानी ग्रीन के साथ में किए हैं, तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किए वर्टिकल्स में हम कुछ कर सकते हैं. सीमेंट बिजनेस में, ऑयल एंड गैस में, हीट एक्सचेंजर के ऊपर ट्यूब पे कोटिंग कर सकते हैं. तो आइडिया ये है कि अडानी ग्रुप के साथ मिलके हम बाहर एक्सपोर्ट मार्केट भी इसको कैप्चर कर सकें.
16: आपका सपोर्ट और इंस्पिरेशन हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत होगी.
17: डॉक्टर हर्ष एंड डॉक्टर अंशु, क्या एनर्जी आपकी, वेरी इन्फेक्शियस एनर्जी, सो अमेजिंग टू हियर.
8: थैंक यू मैम.
17: और आपका रेवेन्यू की जर्नी बताएंगे थोड़ा सा.
8: मैम 2022 में हमने चालू करी तो फर्स्ट ईयर तो 10,000 करीब ही था. हाँ. फिर उसके बाद में करीब 1,00,000 रहा. 24-25 में करीब 1 करोड़ और लास्ट ईयर 25-26 में 3 करोड़ रेवेन्यू रहा.
17: वेरी नाइस.
1: दिस यू विल बी रिप्लेसिंग द ग्लास or this will be sprayed on top of the glass?
8: Sir, normally right now, whatever glass we are purchasing, whether from China or India, we are doing ARC coating, anti-reflective coating. और अभी नया market में trend आया, that is called high transmission double coating. पहले ARC की refractive index around 1.35-1.4 रहती थी. अभी high transmission में 1.22 करीब 2.4 है. हमारा idea है कि हम इनको replace करें.
1: I can only say since you've requested, we would be happy to, as a group, work with you. I think we can have a more intense engagement between our manufacturing plant, solar manufacturing, as well as Adani Green, and we can do a trial and see where it reaches.
8: Absolutely.
1: We start with solar, and once it is possible, we will then look at other industries as well, other businesses.
8: Absolutely, sir.
0: I think that's what you were looking. यही उम्मीद करके आए थे कुछ ऐसा हो जाएगा आज.
8: बिल्कुल.
0: करिश्मा,
8: उम्मीद यही थी कि आप लोग बैठेंगे तो सुनेंगे.
1: But I must say your energy is something and not giving up. I think in your life you've never given up and you keep coming back to it. It's just commendable.
8: Thank you sir.
16: Thank you sir.
8: My co-founder says
16: page is just a number. Just a number. I have started this work in second inning of the life. Previously I was professor in head chemistry department to University of Rajasthan Jaipur. And I am the pioneer worker for green chemistry in India. Wow. So that was very challenging at that time. So challenge लेने की तो आदत पड़ी हुई थी बचपन से.
17: बहुत ही बढ़िया.
0: मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिनाले में पहुँचे. And I'm sure this is just a beginning, not second inning. This is just a beginning.
16: हमारे को ये मौका दिया आप सबने यहाँ पे आने का, यही हमारे लिए बहुत बड़ा achievement है.
0: Thank you so much, sir. Wish you all the best.
8: Thank you, sir.
16: Thank you so much,
0: sir. So, mentors, please, aap log scores de dijiye. So, mentors, अक्सर हमारी जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि जब माँ बाप होते हैं, they really hope कि उनके बच्चों के सपने पूरे हो जाए. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के सपना पूरा करना चाहते हैं. हमारे जो अगले इनोवेटर आ रहे हैं उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है. प्लीज वेलकम हैदराबाद तेलंगाना से आए हमारे अगले इनोवेटर टाइगर एस्टर और उनके को फाउंडर जितेंद्र देसाई. हाय.
18: हाय.
0: वेलकम टू वंदे भारत. तुम
18: थैंक यू सो मच.
19: थैंक यू सो मच.
0: मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी के पापा की ड्रीम थी. आप में से किसके पापा की ड्रीम थी?
18: Mine.
0: आपके. क्या ड्रीम थी आपके पापा की?
18: So my dad always looked at energy efficiency and the planet's safety as one of the prime things to work on.
0: So while you were growing up, you were always aware that this is what bothers your father?
18: Since I can remember, probably 11 years old onwards.
0: Wow. Super. So are you ready with your pitch?
18: Yes.
0: Your time to shine starts now.
18: Thank you.
20: Hi, good day mentors. My name is Jiten Desai or JD. We started this firm in 2022 to solve a very big decarbonization problem. ACs, while they cool inside, they are throwing very hot air outside and that has a multiplying effect and it just gets worse and worse. This technology is more than 120 years old and we are here to disrupt it with something that is made in India, that is climate appropriate and can be scalable for the global south first and then the world. We started this because heat waves are getting more intense, more long, and this has a direct impact on lives and livelihood. And there's a very urgent need for India to solve it. So we brought something that reduces energy bills by more than 80%. Verified by third party. It works on your single phase 5-amp plug points. And these are systems that use normal tap water like your washing machine, but give AC-like cooling. With our systems, you can keep the doors, windows open. It will not impact the cooling at all. That's excellent indoor air quality. And we make a 5-ton unit, but if you need 10 tons, you add 2 units. One unit cools 750 square feet. It can go all the way to cooling airports at 7.5 lakh square feet or more. The temperature we are exhausting is 25. The temperature we are supplying is 15.5. We cool the atmosphere while cooling the space inside as well. That's the beauty of this technology.
18: So we started one, which was the smallest one that we ever made. It kind of looks like the Minion in the cartoons. That's good enough to cool a bedroom in a PM Avas Yojana kind of a setting. And then we are working on the R&D phases where we can do away with compressors to handle the biggest problem that we have, which is humidity.
20: We are very keen to scale this up. India needs this urgently, and we are raising about 45 crores right now. We would love to have non-dilutive grants to complete our R&D for the platform that solves for hot, dry, humid climates. That's about 5 to 8 crores in R&D that we need. And we'd love to cater to heat stress zones, which is more than 460 districts in India itself, and scale this up massively. And we'd love to then support the Global South. That's our ask. Thank you, Rajiv.
5: Fantastic.
18: Thank you, Rajiv.
5: Can you tell us a little bit about the technology? What is it that's different? And, you know, does it always have to be placed at a window? So

0: on the run now. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash, a hit and run, and now a manhunt for the driver at the center of it all.
1: Manish, क्या ये गाड़ी आपकी ही है?
2: जी मैम, मेरी गाड़ी है।
1: ये जो चला रहे थे वो कौन है?
2: ये मैम मेरे साथ का बंदा, मतलब दूसरे गांव का है।
1: आप जानते हैं इसको? मतलब
2: हाँ जानता हूँ मैम।
1: आप इनके बारे में क्या ज्यादा जानकारी दे पाएंगे?
2: मैं इनका मोबाइल नंबर दे सकता हूँ और घर का गांव का नाम बता सकता हूँ मैम। मैम ये साथ का बंदा था, गाड़ी कहीं जाने के लिए मेरे से मांगी थी तो मैंने घर से दिला दी थी मैम।
1: और कितने वक्त पहले आपने गाड़ी दी थी इनको?
2: 2 दिन पहले दी थी मैम मैंने।
1: ये जो घटनाक्रम सामने आया है और इसके बारे में आपको भी जानकारी होगी, इस पर क्या कहेंगे आप?
2: मैम ये तो गलत है, मतलब कि ऐसे टक्कर मारना गलत है। फिर दूसरा विश्वास भी टूटता, हम तो किसी को विश्वास करके गाड़ी दे दिया। मैं तो खुद मैं आर्मी में हूँ, मतलब हम तो ऐसे काम करते नहीं, तो मैं दे दिया भाई बंदी में। और कोई प्रॉब्लम मेरे पे तो काफी कॉल आ रही है, कोई गाली दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, बस ये गाड़ी दी थी।
1: क्योंकि गाड़ी का नंबर जो है अब वो क्योंकि तस्वीरों में सामने आया है और इसे जारी किया गया है, तो लोग यही समझ रहे होंगे कि ये गाड़ी आप ही की है और आप भी शायद चला रहे होंगे या उस वक्त आप भी मौजूद होंगे, इसीलिए उस तस्वीर को हम साफ करना चाहते हैं कि आप उस वक्त मौजूद गाड़ी में नहीं थे। यही आप कह रहे हैं कि आपने इनको गाड़ी दी थी?
2: जी हां मैम, मैं आसाम में ड्यूटी पे ड्यूटी हूं।
1: अच्छा
2: जी मैम।
0: All right, so that was NDTV's conversation with the car owner. He claims that it was being driven by another person. You just heard him there saying that it was his friend Kalyan Besla who was driving it. We also spoke to the car owner's parents. Listen into this conversation.
3: कब लेकर गए थे?
4: ये शनिवार को ले गए थे 10 बजे के आसपास सुबह। मांग के उस लड़के का फोन आया था, मेरा दोस्त आ रहा है, उसको गाड़ी दे देना, तो हमने दे दी थी शनिवार।
3: तो आपको मालूम हुआ कि उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुआ?
4: जी आज सुबह टीवी पे ही देखा है।
3: अच्छा, आपको टीवी से ही केवल जानकारी मिली है?
5: उसने नहीं बताई हमें कैसे होगा गाड़ी।
4: हमें तो टीवी पे देख रहे थे, इनकी गाड़ी तो हमारी है, तब देख के हमें पता चला, फिर मैं लड़के को फोन किया, इनकी बेटा गाड़ी तो हमारी है, ऐसे कर दिए पापा उसको जिसको मैंने गाड़ी दी है वो मेरा दोस्त है, पर मैं अभी उसे फोन करके बात करता हूँ। फिर उनके बाद पुलिस का कॉल भी आया था तो उन्होंने उसका नंबर वगैरह सारा कुछ उनको दे दिया।
3: उनकी मम्मी भी यहाँ पर, मनीष जी की मम्मी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि जब गाड़ी लेकर के गया था कल्याण तब आपने क्या कहा था?
5: हमने ये कहा था भाई हमारा लड़का तो है नहीं, बोले मम्मी कोई बात नहीं यार दोस्ती में, मैं इसे जानता हूँ, हम तो जाने ना तू लेके जा रहा, मैं उसका दोस्त हूँ, फिर बात करिए लड़का ना कि मेरा दोस्त है, मम्मी ये सब गाड़ी चाहिए जरूर इसे दे दो, कोई बीमार हमें उसे गाड़ी दे दी। अब हमें गाड़ी को उसने बताई नहीं है, मेरे
4: तो ये
5: हमें तो टीवी पे पता लगी। हमने फिर लड़का को दोबारा फोन करा कि हम बतवा प्लम्बर भी लो, लड़का ने फिर वहाँ पास करे और जब कह रहा ठीक है मुँह पे तो होगा, मैं आपकी गाड़ी सही करवा के दे दूँ।
0: And now NDTV has also spoken to the owner of the building where Kalyan Besla ran his gym. Listen into what he said.
6: 2-3 साल चला है।
7: अच्छा, 2-3 साल से वो इस जिम में काम कर रहे हैं।
6: चलाता था, रेंट पे ले रखा था।
7: अच्छा।
6: हाँ, यहाँ कोई किसी से उसको कभी कोई तूतू में कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं।
7: अच्छा।
6: ना हमने कभी उसको कोई गुस्से में देखा, हम तो भाई भाई क्या, मेरे तो चाचा ही बोलता है, हमारे साथ कुछ कोई ऐसी बात, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी, हमको ऐसे लगे आदमी वायलेंट हो सकता है कभी हमारे साथ कभी।
7: लेकिन छोटी मोटी रेंट की डिस्प्यूट थी जिसके बाद सेटलमेंट हो गई?
6: कोई डिस्प्यूट नहीं था, वो तो किराएदार से चलता ही रहता है, तो नहीं अब 1 महीने उसने नहीं दिया, हमने बंद कर दिया। नहीं और
7: तो अभी उसके बाद से कभी भी वो या उनके फैमिली वाले यहाँ पर नहीं है?
6: कोई नहीं आया, कोई नहीं। अच्छा। कोई भी क्यों आएगा जब उसका कोई काम ही नहीं है।
7: NDTV has reached outside the KBT gym which was being run by Kalyan Besla just 2 months back. According to the owner of this building, 2 months back there was a small dispute regarding rent, but that got settled since Kalyan had in fact paid the dues of 1 month, and after that this gym has been closed. We are showing you the visuals of the very gym where Kalyan Besla, who is right now the accused in the case of the woman biker Sia, who was hit by the car while she was driving at at Gurugram's Golf Course Road. Now, this is the visual that we are getting you from just outside the gym where Kalyan Bansal was in fact, working at. And this is the gym where he was in fact working for the past 2 years is what the

0: संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से। सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है, वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ एक्शन करता है, मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ, एंड वो बोलता है कि बाइक रोको, एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए। सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है, वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए, पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे। उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है। उसने बोला मेरी गलती नहीं है। वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया। एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ, एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट, एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता। आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें।
1: दिल्ली के गुड़गांव में कल एक मेजर एक्सीडेंट जो है वो होता है। एक बाइकर लड़की जो है गुड़गांव के गोल्फ कोर्स से जब बाइक राइडिंग करती है तो उस वक्त जो है एक बड़ी गाड़ी जो है वो आके हिट करती है। लड़की पहले जो है बाइक जो चला रही थी वो गाड़ी वाले को उसने इशारा किया रोकने की कोशिश की, क्योंकि गाड़ी वाले ने सबसे पहले आकर उस बाइकर को रोकने की कोशिश की, उस लड़की को जिसका नाम शिवानी शर्मा है। और उसके बाद जो है उसने जब नहीं माना तो उसको हिट करके वो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ गई। फिलहाल देखिए मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, ये बाइक जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाइक जो है वो यहाँ पे तैनात है। और यही जो बाइक है इसका इस्तेमाल जो है कल शिवानी शर्मा कल कर रही थी राइडिंग के दौरान, और जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ। हालांकि उनकी फैमिली का कहना है कि मेजर उनको चोट नहीं आई है, लेकिन स्टिल कल गुड़गांव में जिस तरह से गोल्फ कोर्स पर एक्सीडेंट हुआ शिवानी शर्मा का, ये वो बाइक है जो यहाँ पर उनके रेजिडेंस पर खड़ी है जिसको इस्तेमाल करते वक्त जो है उनका एक्सीडेंट हुआ। जब हमने फैमिली से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर तो आने से मना कर दिया, लेकिन उनका कहना है कि मेजर चोट जो है वो शिवानी को नहीं लगी है, थोड़ी बहुत चोटें जो हैं वो उनको लगी हैं। लेकिन फिलहाल ये बाइक जो है उस वक्त शिवानी इसी बाइक को जो है राइड कर रही थी, और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वो फुटेज जो है वो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया, जिसके बाद जो है गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट भी कर रही है।
2: And well, earlier today, I spoke with bikers here in New Delhi on women's safety and the hurdles that they face, not just as bikers, especially as women bikers. And this is what they told us here on NDTV.
3: The road rage that we witness in Gurugram against a woman biker has perhaps put forward various questions and challenges, and also safety of women bikers here in Delhi NCR. And here at NDTV, we have here with us a bunch of bikers. We have male bikers and a woman biker as well, who will talk to us more about the challenges that they face and the hurdles as a woman biker herself. I want to first come to you, Suparna. She's a biker herself. Suparna, what do you make of this incident? You know, because the woman did not have a shield around her and she was chased in morning daylight. Have you ever faced such harassment, some challenges as a woman biker yourself?
4: So I've been riding for the last 20 years. I also run an academy where I teach people how to ride bikes day in, day out. So yes, there is a certain segment of the society which accepts us and which is appreciative of us riding motorcycles. However, there is a certain class and a certain group of people who are yet not ready to accept that women can ride motorcycles, they can handle big bikes, and they can be on their own. So I believe that we are living in a free country. Yeah. We are in a democratic country where we should not be seeking permission or approval of people to step out. Yeah. As a rider, I should not look at my watch before stepping out. Either it is 6 a.m. or 12 in the afternoon or 12 in the night. However, this is a very unfortunate incident. I'd like to highlight here is that we are talking about it because the incident was recorded in a camera. Yeah. But usually when I ride, I do not use a camera or something to record. How do we capture all such instances? And this is not the first. It has been happening. But what happens is that it just fades after a few days or weeks. then what? So there has to be something very concrete to be done about it, so that people fear before they get into such instances, and they are not trying to chase women, but they, you know, kind of encourage them to ride.
5: Because they

0: spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here? They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Trishuli, and it's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not in your side.
1: We are more than 90 people here. So we are trying best.
0: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of the extent of the devastation and what the people of Nepal are going through. Vishnu Shom for NDTV.
2: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
3: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
4: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
5: Marne ke bada kya hoga?
4: As a journalist, I can say you're not alone.
2: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood, weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
6: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
0: So many attacks.
6: The chaos and cries of disaster zones.
7: My colleague Kanika has spoken with the victim's father, the biker CR's father. We will be playing that interview in just moments from now. And that's on your screens right now of that conversation that Kanika has had. Kanika, over to you.
8: देखिए बिल्कुल जिस तरह से कल गुड़गांव में सिया का एक्सीडेंट हुआ है एक्सक्लूसिव बात करने के लिए उनके फादर रोशन चौहान इस वक्त मेरे साथ हैं आप सिया के फादर हैं सिया का पूरा नाम क्या है पहले बताइए
9: शिवानी चौहान
8: कल जिस तरह का पूरा इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ आपको इस बारे में जानकारी कब मिली आपकी बेटी ने आपको क्या बताया
9: मेरी बेटी ने मेरे को नहीं बताया मेरे को भी एक घंटे पहले पता चला जब आप लोग मेरे रेजिडेंस पर आए तब मेरे को पता चला और मेरे को आपने जो वीडियो दिखाई वो मैंने देखा बड़ा असंभव रह गया मैं कि घर पे आके मेरी बेटी ने भी मेरे को नहीं बताया पर जिस तरह की ये एक्सीडेंट हुआ नहीं एक्सीडेंट करने की कोशिश करी है तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है ये किसी भी बेटी बहन के साथ हो सकता है रोड पे फिर क्या सुरक्षा रहेगी महिलाओं की उसको देखते हुए तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए
8: रोशन जी एक सवाल यही है कि आप गुड़गांव पुलिस से क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि लगातार एफआईआर दर्ज तो की गई है लेकिन आपकी तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर
9: हाँ बिल्कुल शिकायत तो बिल्कुल दर्ज कराई जाएगी जी
8: आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बाइकर्स इवन स्पेशली आपकी बेटी जो है वो सुरक्षित नहीं थी जिस तरह से कल उसको हिट किया गया आपको लगता है कि पूरे मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए
9: जिस प्रकार से मैं वीडियो देख रहा था जिस प्रकार से वो उनको गाड़ी वाले को बोल रही थी कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए और रोड के ऊपर इतना कोई ट्रैफिक नहीं आता जाता नजर आ रहा था इसमें तो नॉर्मली बात है कि अगर कोई बाइक चला रहा है और लेडीज है हम तो अगर कार भी चला रहे होते हैं कोई लेडीज चला रही होती है तो हमें पता है कि भाई उससे थोड़ा हम डिस्टेंस बना के चलते हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो
7: कनिका
9: जिस प्रकार से आगे वो हिट कर रहा है तो उसकी तो मानसिकता कोई अपराध वाली मानसिकता दर्शाती है ना
7: कनिका
8: बेटी 2022 में इलेक्शन भी लड़ चुकी है कालका जी से
9: हाँ मेरी बेटी 2022 में कालका जी वार्ड से निगम का चुनाव लड़ी है
8: और आप आम आदमी पार्टी में और आपकी बेटी भी आम आदमी पार्टी
7: कनिका इफ यू कैन हियर मी कैन यू आल्सो आस्क द फादर Can you also ask Sia's father if there's been an FIR which has also been launched? Because Sia, of course, does not want to come out with her identity, but she did say that FIR will be filed against the goon. Has it been filed or not?
8: देखिए रहीशा पूछ रही है आपसे लगातार यही सवाल कि गुड़गांव पुलिस ने अपनी तरफ से तो FIR का एक्शन लिया है, तो क्या आप इस पूरे मामले पे FIR दर्ज करवाएंगे और इस पूरे मामले पे लेकर आप गुड़गांव पुलिस से क्या मांग करते हैं, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि जो कल्प्रिट है क्या उसके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए और उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए?
9: अगर गुड़गांव पुलिस ने FIR दर्ज करी है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बख्शने लायक क्राइम नहीं है। एक तो एक्सीडेंट होता है कि भाई अचानक ही हो गया, किसी ने ब्रेक ज़्यादा मार दी, रेस ज़्यादा मार दी, हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं हो रहा था, ये एक्सीडेंट करने की कोशिश करी जा रही थी। ये बख्शने लायक चीज़ है नहीं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाली चीज़ सामने आ गई ना, कि अगर एक आदमी ने गलती से ब्रेक मारी और किसी को हिट हो गया, वो एक्सीडेंट होता है। जब आपकी बाइक चलाते हुए बात चल रही है, आप बाइक चला रहे हो और आप सामने वाले को बोल रहे हैं कीप डिस्टेंस रखिए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर वो एक मिनट के बाद आके हिट करता है, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, हिट एंड रन है।
8: ओके, एक अंतिम सवाल है मेरा ये कि सिया खुद कब जाएंगी अपना पूरा मामला दर्ज करवाने?
9: बिल्कुल हम जाएंगे अभी, अब मेरी नॉलेज में आया तो बिल्कुल जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे?
8: आपके साथ जाएंगी अभी?
9: हाँ बिल्कुल जाएंगे जी, कोई ऐसी बात थोड़ी, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल ऐसे लोगों को अगर हम बख्शते हैं तो कल किसी और की बेटी के साथ होगा, परसों। ये तो मेरी बेटी को ज्यादा चोट नहीं आई, जिस प्रकार से वो रोड के ऊपर घसीट रही थी उसका मर्डर भी हो सकता था, गाड़ी के नीचे भी आ सकती थी, हाथ पैर भी खराब हो सकते थे, इसका जिम्मेदार उसने मेरे को बताया नहीं। ऑलरेडी उसके ऊपर चोट
8: इंजरी हुई है,
9: चोट तो है उसने, सुबह मैंने देखा था तो मेरे को ऐसा लगा भाई जिम में एक्सरसाइज करके कुछ मांसपेशियां आड़ रही होंगी, पर इसलिए वो अभी
8: चोट लगी है या थोड़ी चोट लगी है, मतलब
9: लगी है। वो अगर आएंगे तो मैं देख के बता पाऊंगा।
8: अभी वो घर पे मौजूद नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं?
9: हाँ मेरी मुलाकात सवेरे हुई थी, जब मॉर्निंग में तो मैं अपना मीटिंग में चला गया था, तो उस टाइम मेरे को लगा था कि शायद बॉडी में कुछ लड़खड़ा रहे हैं, तो मेरे को उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज की वजह से ही हुआ है।
8: देखिए सिया के जो फादर हैं वो इस वक्त बता रहे थे कि इस तरह से उनको चोटें जो हैं वो बहुत कम लगी हैं फिलहाल, लेकिन चोट लगी है, लेकिन फैमिली कॉन्टिन्यूसली यही डिमांड कर रही है कि इस पूरे मामले को लेकर वो FIR दर्ज करवाएंगे। उनके फादर ने खुद बोला है कि हम खुद जाएंगे इस मामले को लेकर, लेकिन जो फैमिली से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसमें यही है कि जो उनके लॉयर हैं अभिषेक, वो फिलहाल अभी गुड़गांव जा रहे हैं FIR को लॉन्च करने के लिए, लेकिन फैमिली कॉन्टिन्यूसली यही डिमांड कर रही है कि इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जैसे जिसने हिट किया है उसको तुरंत गुड़गांव
7: राइट कनिका, बट वॉट वी आर लर्निंग लाइक सिया'स फादर ऑल्सो सेड दैट अ फॉर्मल FIR हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय सिया येट, एंड शी ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू टेल हर फादर दैट वॉट हैपन्ड विद हर, बट वी ऑल्सो लर्निंग दैट द पुलिस हैज फाइल्ड अ सुओ मोटो FIR इन दिस केस, बट वी आर स्टिल अवेटिंग फॉर अ फॉर्मल FIR बाय सिया। द फादर हैज ऑल्सो डिमांडेड अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज। कनिका
8: Well, absolutely right. On the other side, the Gurgaon police have already lodged the FIR, slow moto FIR regarding this case. Now, the family is also trying to register the FIR in Gurgaon police. As per our sources, family also sent their lawyer to Gurgaon Sector 56 police station to lodge the FIR. And continuously now, the family and especially Sia's father is continuously demanding to investigate this matter, and also he is also demanding the same thing that the person should got punished,
7: right,
8: because continuously this thing will be right, now viral on social media,
7: right,
8: so now the whole family is demanding that.
7: Right, we just want to break that news for all our viewers. The Gurugram police has right now filed a suo moto FIR in this case. The Gurugram police goes on to say that the golf course road rage case upon the victim, remember Sia, the biker, has not filed a formal complaint yet. And the Gurugram police has taken a suo moto cognizance. Take a listen to what the police officials have said on filing the suo moto FIR in this road rage case. Take a look.
5: जी 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है।
10: पीड़ित की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि
7: All right, sir. So that's the statement by the police officials saying that they, after this video which came to them, there's been a Suomoto FIR which has been filed against Kalyan Besla. He's at Haryana goon who is still missing. The CR's father has also spoken to NDTV and he says that they have still not filed a formal complaint. CR is not at home right now. But he has said that a Suomoto cognizance FIR has been filed. I want to go back to Kanika for more on this. Kanika, do you have

0: एनी अदर इन्फॉर्मेशन, सिया'स फादर ने आपसे बात की अभी थोड़ी देर पहले, उन्हें कहा ये अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज है जिस तरीके से वो गिरी थी, बट कोई फॉर्मल FIR सिया ने फाइल नहीं किया है अभी तक। एक सुओ मोटो कॉग्निसेंस FIR है जो गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक फाइल की है।
1: बिल्कुल सही बात है, अभी तक FIR जो है वो सिया की तरफ से दर्ज नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर गुड़गांव पुलिस ने स्लो मोटो FIR जो है वो दर्ज की है, लेकिन लगातार फैमिली जो है वो यही कह रही है कि ये डायरेक्टली जो है हिट एंड रन का केस था, इस पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरी फैमिली में कई लोगों से सुबह से लगातार बात हो रही थी ऑफ रिकॉर्ड, जिनका ये कहना था कि हम इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज करवाएंगे, बल्कि अब से कुछ देर पहले ऑफ रिकॉर्ड सिया से मेरी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि वो FIR ज़रूर इस मामले में लॉन्च करवाएंगी। और जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, उन्होंने अपने वकील को भी इस चीज़ के लिए जो है वकील से बोला है कि इस पूरे मामले पे FIR होनी चाहिए। लेकिन देखिए, तमाम जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है बात चल रही है। सिया के ब्रदर इस वक्त मेरे साथ हैं, आप भाई हैं सिया के। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हिट एंड रन किया गया सिया को, हालांकि उनको इतनी चोट नहीं लगी, बहुत मेजर इंजरी नहीं हुई, लेकिन इस पूरे मामले में एज अ ब्रदर के तौर पर आप क्या डिमांड करते हैं?
2: देखिए, जब उसको एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले कॉल उसने मुझे ही करा था।
1: हाँ
2: जी, उसने
1: क्या बताया? उन्होंने आपको कॉल कर,
2: उन्होंने कहा कि पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरे को लगा कि स्लिप वगैरह हो गई होगी बाइक।
1: हाँ।
2: फिर उसने बोला कि किसी ने हिट एंड रन करा है उनके साथ, और उन्होंने फिर वीडियो भेजी, GoPro में वीडियो बना रही थी, और उन्होंने पहले ये दिखाया कि पहले चेज हो रहे थे, और उन्होंने उनको बोला भी था कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। फिर वही है, और फिर कहे थे कि वो चार लोग थे उस गाड़ी में, और वो ड्रंक थे सारे के सारे, और वो थोड़े अब्यूजिव सिग्नल्स भी दे रहे थे उसे। और
1: एक सवाल ये है, जिन्होंने हिट किया है, कल्याण बैसला नाम है उनका, उनका ये कहना है कि गलती मेरी नहीं थी, लड़की की गलती थी। इस तरह का एलिगेशन जो है वो कल्याण बैसला जो है वो आपकी बहन पे लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन जो विजुअल निकल के आया था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से वो लगातार चेस कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: उस पर ये कहना चाहूँगा कि उन्हें लग रहा है कि उनकी गलती है, और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनकी वीडियो भी बन रही थी। वो तो उन्हें लगा कि वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हर टाइम वो रिकॉर्ड हो रहे थे। और उनके जो स्टार्टिंग से वो चेजिंग हो रहा था, एक होता है एक्सीडेंट, अगर आपका गलती से टच हो जाए, अगर चलो एक्सीडेंट भी होता और वो रुकते तो हम उनको सुनते बात पूरी। अब वही है, वो रुके भी नहीं, फिर हमारे और भी बाइकर वो फ्रेंड्स थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको भी वो थोड़ा और डिश करके भाग गए थे। बस ये
1: आपकी जब बहन से पहली बार जब बात हुई इस एक्सीडेंट के बाद, किस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट किया और वो कितने बजे घर पहुंची? क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार वो खुद आई थी, उनके फ्रेंड्स उनको लेके आए थे, कितने बजे वो घर पहुंची थी?
2: एक्सीडेंट के बाद उनके जितने बाइक का फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको उठाया आराम से, पहले उनकी मेडिकल केयर करी पूरी, और फिर उनका ब्रेक फेल हो गई थी बाइक की, हैंडल काम नहीं कर रहा था, तो एक फ्रेंड उनकी बाइक चला के आया, वो किसी के पीछे बैठ कर आए थे यहाँ तक घर,
1: किसी के पीछे बैठ के आई थी। अच्छा, एक और सवाल है कि क्योंकि सिया को इस तरह से हिट किया गया, अब इस पूरे मामले को लेकर सिया अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाने कब जाएंगी, और आप में से क्या उनके फादर या भाई, आप लोग भी उनके साथ जाएंगे, आप लोग कब जाएंगे?
2: स्टेटमेंट अभी हमारा लॉयर गए थे गुड़गांव ही, और उन्होंने वहाँ के SHO वगैरह से बात कर आए हैं वो, और पूरी FIR की डिटेल्स वगैरह निकाल कर लाए हैं। और अभी शिवानी खुद ही पूरा बयान देगी, और हम सारे उनके साथ हैं।
1: एक सवाल मेरा और है कि शिवानी को जिस तरह से हिट किया गया, कितनी चोट आई है? क्या वो ज़्यादा इंजर्ड हुई हैं या उनको कम चोट आई है? अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ को बता सके, कितनी चोट आई है?
2: थैंक गॉड उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, बिकॉज उसने पूरे गियर्स पहन रखे थे, बाइकिंग गियर्स, और गियर्स पहनने के बाद भी उसको थोड़ी नॉर्मल घिसटन टाइप सी चोट आई है, और उसे नॉर्मल बॉडी पेन है और नॉर्मल रिकवरी हो रही है उसकी।
1: आप लोगों की मुलाकात सुबह से हुई है? क्योंकि सुबह से मैं
2: आपके साथ हूँ सुबह से।
1: हाँ, वो घर पे मौजूद है इस वक्त?
2: नहीं, अभी घर पे मौजूद नहीं है, वो भी काम से गई रखी है।
1: अच्छा, ओके, लेकिन आप कंटिन्यूसली उनके संपर्क में हैं सुबह से? ठीक है, तो इस पूरे मामले पे अगेन मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप क्या डिमांड करते हैं इस पूरे मामले में, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए?
2: इन्वेस्टिगेशन इस तरह से होना चाहिए, एक तो हम सबसे पहले अरेस्ट चाहते हैं उनका, और अपोलॉजी चाहते हैं, और हम चाहते हैं गुड़गांव पुलिस से कि उनका एटलीस्ट अच्छे इतना वो अरेस्ट करे कि आगे किसी के साथ भी ऐसे लड़की ना लड़के के साथ ऐसे करे और ड्रंक एंड ड्राइव तो खास कर ना करे, और गलती से भी अगर एक्सीडेंट होता है तो वो रुके, कम से कम हिट एंड रन ना करे, और हम चाहेंगे बस यही चाहेंगे।
1: आप लोग परेशान भी इस मामले?
2: हाँ जी बहुत।
1: ओके, देखिए उनके जो सिया हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस वक्त में, उनके रियल ब्रदर जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ थे। कुछ देर पहले उनके फादर जो हैं उन्होंने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात की थी। तो लगातार जो है पूरी फैमिली यही डिमांड कर रही है कि इस पूरे मामले पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फिलहाल देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी लॉयर को जो है गुड़गांव भेजा गया है इस पूरे मामले पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और लगातार फैमिली जो है वो लॉयर से कॉन्टैक्ट में है, और इस पूरे मामले में जिस तरह से लॉयर गाइड करेंगे उसके बाद ही फैमिली है वो आगे एक्शन लेगी।
0: राइट, सो जस्ट टू रैप अप एंड टेल आवर व्यूअर्स दैट एनडीटीवी हैज स्पोकन विद सिया'स फादर एंड इवन ब्रदर, एंड द फादर हैज आल्सो सेड दैट दे विल बी फाइलिंग अ फॉर्मल कंप्लेंट। द सिया'स ब्रदर इन दैट चैट विद एनडीटीवी हैज सेड दैट देयर वर फोर ड्रंक मेन हु वर इनसाइड दैट कार हु चेज्ड हिज सिस्टर सिया इन दैट अर्ली मॉर्निंग ड्राइव ऑन संडे, एंड दे ट्राइड, दे वर आल्सो पासिंग सम अब्यूसिव लैंग्वेजेस एंड स्लर्स एट सिया। टेक अ लिसन टू व्हाट सिया'स फादर सेड। Exactly.
1: आप सिया के फादर हैं, सिया का पूरा नाम क्या है पहले बताइए?
3: शिवानी चौहान।
1: शिवानी चौहान, कल जिस तरह का पूरा इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आपको इस बारे में जानकारी कब मिली? आपकी बेटी ने आपको क्या बताया?
3: मेरी बेटी ने मेरे को नहीं बताया, मेरे को भी एक घंटे पहले पता चला जब आप लोग मेरे रेजिडेंस पर आए हैं, तब मेरे को पता चला, और मेरे को आपने जो वीडियो दिखाई वो मैंने देखा, बड़ा असंभव रह गया मैं कि घर पे आके मेरी बेटी ने भी मेरे को नहीं बताया। पर जिस तरह की ये एक्सीडेंट हुआ, नहीं एक्सीडेंट करने की कोशिश करी है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये किसी भी बेटी बहन के साथ हो सकता है रोड पे, फिर क्या सुरक्षा रहेगी महिलाओं की? उसको देखते हुए तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए।
1: रोशन जी, एक सवाल यही है कि आप गुड़गांव पुलिस से क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार एफआईआर दर्ज तो की गई है, लेकिन आपकी तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर?
3: हाँ बिल्कुल, शिकायत तो बिल्कुल दर्ज कराई जाएगी जी।
1: मेरा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बाइकर्स, इवन स्पेशली आपकी बेटी जो है वो सुरक्षित नहीं थी, जिस तरह से कल उसको हिट किया गया, आपको लगता है कि पूरे मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए?
3: जिस प्रकार से मैं वीडियो देख रहा था, जिस प्रकार से वो उनको गाड़ी वाले को बोल रही थी कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, और रोड के ऊपर इतना कोई ट्रैफिक नहीं आता जाता नजर आ रहा था, इसमें तो नॉर्मली बात है कि अगर कोई बाइक चला रहा है और लेडीज है, हम तो अगर कार भी चला रहे होते हैं, कोई लेडीज चला रही होती है, तो हमें पता है कि भाई उससे थोड़ा हम डिस्टेंस बना के चलते हैं कि ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, और जिस प्रकार से आगे वो हिट कर रहा है तो उसकी तो मानसिकता कोई अपराध वाली मानसिकता दर्शाती है ना।
1: क्या आपकी बेटी 2022 में इलेक्शन भी लड़ चुकी है कालका जी से?
3: हाँ, मेरी बेटी 2022 में कालका जी वार्ड से निगम का चुनाव लड़ी है।
1: और आम आदमी पार्टी में, और आपकी बेटी भी आम आदमी पार्टी?
3: हाँ हाँ जी, आम आदमी पार्टी से बिटिया है।
0: Alright, Kanika, you still there outside Sia's residence? Is there any update on where is Sia right now? Because she's not publicly come out and spoken about her identity yet. While you did speak with her father and the brother alleges that there were four drunk men inside the car, and the father says that there needs to be a case of attempt to murder charge. Kanika.
1: Well, Sia is not present at his residence, her residence. Even I spoke to her mother and brother and father regarding this issue. They are continuously saying that Sia is not at home. She is with his friend's residence, but right now I'm at her location currently. And even we spoke to the family regarding this issue. Now the family is also demanding the full flash investigation regarding this case, but currently for the update regarding this issue, Shivani Chauhan is not present at her residence.
0: Tracking this very closely, we're waiting for the formal complaint filed by Sia. Like her, Sia's brother also said that they will be filing that complaint in by the end of evening today. On that one, we're slipping into a very short

0: Hello, good evening and welcome to Nationwide at 6 on NDTV. I am Ankit Tyagi. Ladies and gentlemen, since morning we have been tracking a story. And why is this story important? Because it tells you how unsafe not only the streets of Gurgaon are, but also the toxic misogyny that a man, fragile ego, could not take a woman rider overtaking him, resulted in him almost attempting to crush her down. This is what happened in the daylight on Sunday morning in Gurugram. She was chased, harassed, and then later hit by this vehicle. When his friends tried to confront this man, the thug Kalyan Besla, who has now been identified, he's on the run as the Gurugram police have registered a suo motu case against him. We'll get you the latest on this as he chased and harassed that woman biker, resulting to injuries to this young woman. And then we'll also, in fact, get you the other story that we'll be tracking here on Nationwide. India once again refuses to accept the Asia Cup trophy from Pakistan, a redux. The women this time, the women in blue, show Pakistan a complete snub as far as the Asia Cup trophy is concerned. Mr. Mohsin Naqvi, at this moment, owes two trophies to India, which he is holding very dearly with himself. We'll get you those stories as well. But let's begin with the breaking story, the top news at this moment. The biker's family, the woman who was, in fact, riding this bike, also was hit by this car when the car owner, who was trying to, in fact, stop this woman, chase her, harass her, and when she overtook him, after telling him to keep his distance, this is how he responded. Now, the woman's family has spoken to NDTV. They have said, and like we've been speaking about, this is an intentional, in fact, attempt to hurt this woman. And that is why, you know, charges, or serious charges of attempt to murder should be, of trying to cause grievous harm, should be put on this man, Kalyan Besla, who is on the run at this moment. The family has spoken to NDTV. Her father has also demanded attempt to murder charges to be put against this thug. Listen it.
1: आप सिया के फादर हैं, सिया का पूरा नाम क्या है पहले बताइए?
2: शिवानी चौहान।
1: शिवानी चौहान, कल जिस तरह का पूरा इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आपको इस बारे में जानकारी कब मिली? आपकी बेटी ने आपको क्या बताया?
2: मेरी बेटी ने मेरे को नहीं बताया, मेरे को भी एक घंटे पहले पता चला जब आप लोग मेरे रेजिडेंस पर आए हैं, तब मेरे को पता चला और मेरे को आपने जो वीडियो दिखाई वो मैंने देखा, बड़ा असंभव रह गया मैं कि घर पे आके मेरी बेटी ने भी मेरे को नहीं बताया। पर जिस तरह की ये एक्सीडेंट हुआ, नहीं एक्सीडेंट करने की कोशिश करी है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये किसी भी बेटी बहन के साथ हो सकता है रोड पे, फिर क्या सुरक्षा रहेगी महिलाओं की? उसको देखते हुए तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए।
1: रोशन जी, एक सवाल यही है कि आप गुड़गांव पुलिस से क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार FIR दर्ज तो की गई है, लेकिन आपकी तरफ से भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर?
2: हाँ बिल्कुल, शिकायत तो बिल्कुल दर्ज कराई जाएगी जी।
1: आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बाइकर्स, इवन स्पेशली आपकी बेटी जो है वो सुरक्षित नहीं थी, जिस तरह से कल उसको हिट किया गया, आपको लगता है कि पूरे मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए?
2: जिस प्रकार से मैं वीडियो देख रहा था, जिस प्रकार से वो उनको गाड़ी वाले को बोल रही थी कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, और रोड के ऊपर इतना कोई ट्रैफिक नहीं आता जाता नजर आ रहा था, इसमें तो नॉर्मली बात है कि अगर कोई बाइक चला रहा है और लेडीज है, हम तो अगर कार भी चला रहे होते हैं, कोई लेडीज चला रही होती है, तो हमें पता है कि भाई उससे थोड़ा हम डिस्टेंस बना के चलते हैं कि ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। और जिस प्रकार से आगे वो हिट कर रहा है, तो उसकी तो मानसिकता कोई अपराध वाली मानसिकता दर्शाती है ना।
1: क्या आपकी बेटी 2022 में इलेक्शन भी लड़ चुकी है कालका जी से?
2: हाँ, मेरी बेटी 2022 में कालका जी वार्ड से निगम का चुनाव लड़ी है।
1: और आम आदमी पार्टी में, और आपकी बेटी भी आम आदमी पार्टी?
2: हाँ हाँ जी, आम आदमी पार्टी से।
1: कि गुड़गांव पुलिस ने अपनी तरफ से तो FIR का एक्शन लिया है, तो क्या आप इस पूरे मामले पे FIR दर्ज करवाएंगे, और इस पूरे मामले पे लेकर आप गुड़गांव पुलिस से क्या मांग करते हैं, किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि जो कल्प्रिट है क्या उसके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए और उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए?
2: अगर गुड़गांव पुलिस ने FIR दर्ज करी है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। और कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बख्शने लायक क्राइम नहीं है। एक तो एक्सीडेंट होता है कि अचानक ही हो गया, किसी ने ब्रेक ज़्यादा मार दी, रेस ज़्यादा मार दी, हो गया, ये एक्सीडेंट नहीं हो रहा था, ये एक्सीडेंट करने की कोशिश करी जा रही थी। ये बख्शने लायक चीज़ है नहीं। ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाली चीज़ सामने आ गई ना कि अगर एक आदमी ने गलती से ब्रेक मारी और किसी को हिट हो गया, वो एक्सीडेंट होता है। जब आपकी बाइक चलाते हुए बात चल रही है, आप बाइक चला रहे हो और आप सामने वाले को बोल रहे हैं कीप डिस्टेंस रखिए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर वो एक मिनट के बाद आके हिट करता है, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, हिट एंड रन है।
1: ओके, एक अंतिम सवाल है मेरा ये कि सिया खुद कब जाएंगी अपना पूरा मामला दर्ज करवाने?
2: बिल्कुल हम जाएंगे अभी, अब मेरी नॉलेज में आया तो बिल्कुल जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे?
1: आपके साथ जाएंगी अभी?
2: हाँ बिल्कुल जाएंगे जी, कोई ऐसी बात थोड़ी, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल ऐसे लोगों को अगर हम बख्शते हैं तो कल किसी और की बेटी के साथ होगा, परसों। ये तो मेरी बेटी को ज़्यादा चोट नहीं आई, जिस प्रकार से वो रोड के ऊपर घसीट रही थी उसका मर्डर भी हो सकता था, गाड़ी के नीचे भी आ सकती थी, हाथ पैर भी खराब हो सकते थे, इसका जिम्मेदार उसने मेरे को बताया नहीं। ऑलरेडी उसके ऊपर चोट
1: इंजरी हुई है,
2: चोट तो है उसने, सुबह मैंने देखा था तो मेरे को ऐसा लगा भाई जिम में एक्सरसाइज करके कुछ मांसपेशियां आड़ रही होंगी, पर इसलिए वो अभी
1: ज्यादा चोट लगी है या थोड़ी चोट लगी है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन
2: है, वो अगर आएंगे तो मैं देख के बता पाऊंगा जी।
1: वो घर पे मौजूद नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं?
2: हाँ मेरी मुलाकात सवेरे हुई थी, जब मॉर्निंग में तो मैं अपना मीटिंग में चला गया था, तो उस टाइम मेरे को लगा था कि शायद बॉडी में कुछ लड़खड़ा रहे हैं, तो मेरे को उन्होंने बोला कि भाई एक्सरसाइज की वजह से ही हुआ है।
1: एक सवाल ये है, जिन्होंने हिट किया है, कल्याण बैसला नाम है उनका, उनका ये कहना है कि गलती मेरी नहीं थी, लड़की की गलती थी। इस तरह का एलिगेशन जो है वो कल्याण बैसला जो है वो आपकी बहन पे लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन जो विजुअल निकल के आया था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से वो लगातार चेस कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
3: उस पर ये कहना चाहूँगा कि उन्हें लग रहा है कि उनकी गलती है और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनकी वीडियो भी बन रही थी, वो तो उन्हें लगा कि वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हर टाइम वो रिकॉर्ड हो रहे थे, और उनके जो स्टार्टिंग से वो चेजिंग हो रहा था। एक होता है एक्सीडेंट, अगर आपका गलती से टच हो जाए, अगर चलो एक्सीडेंट भी होता और वो रुकते तो हम उनका सुनते बात पूरी, अब वही है वो रुके भी नहीं, फिर हमारे और भी बाइकर वो फ्रेंड्स थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको भी वो थोड़ा और डिश करके भाग गए थे बस ये।
1: आपकी जब बहन से पहली बात जब बात हुई इस एक्सीडेंट के बाद, किस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट किया और वो कितने बजे घर पहुंची? क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार वो खुद आई थी, उनके फ्रेंड्स उनको लेके आए थे, कितने बजे वो घर पहुंची थी?
3: एक्सीडेंट के बाद उनके जितने बाइक के फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको उठाया आराम से, पहले उनकी मेडिकल केयर करी पूरी, और फिर उनका ब्रेक फेल हो गई थी बाइक की, हैंडल काम नहीं कर रहा था, तो एक फ्रेंड उनकी बाइक चला के आया, वो किसी के पीछे बैठ कर आए थे यहाँ तक।
1: शिवानी को जिस तरह से हिट किया गया, कितनी चोट आई है, क्या वो ज़्यादा इंजर्ड हुई हैं या उनको कम चोट आई है? अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को इस चीज़ को बता सके कितनी चोट आई है?
3: थैंक गॉड उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, बिकॉज उसने पूरे गियर्स पहन रखे थे, बाइकिंग गियर्स, और गियर्स पहनने के बाद भी उसको थोड़ी नॉर्मल घिसरन टाइप सी चोट आई है, और उसे नॉर्मल बॉडी पेन है और नॉर्मल रिकवरी हो रही है उसकी।
0: That's the family demanding strictest of the punishment. Thankfully, that she has not suffered serious injuries. She is going to, in fact, her lawyers are in touch with the Gurugram police. But breaking news coming in at this moment, FIR has been registered in the Gurugram hit and run case, deliberate hit and run case. Now the Gurugram police has registered an FIR. This is what the details which are coming in at this moment. It has been registered. NDTV has accessed the FIR copy in this case. In fact, the FIR mentions that the car involved is a white Sias bearing registration number HR30Y4949. The incident took place between Rapid Metro stations 55 and 56 and the petrol pump at the location shown in the video. The driver of the said vehicle was allegedly driving at a very high speed and in a negligent manner and hit the motorcycle rider. Appropriate legal action should be taken against the driver of the vehicle under sections 125, Act of Endangering Life or Personal Safety, and 281, rash and negligent driving of the BNS. So the sections that they have put are 125 and of course 281 of the Bharatiya Nyaya Sahita BNS. This is what the details of the FIR suggest. Let me go across quickly to my colleague Anushka, who is joining me on the phone line for more details on this. Anushka, the police has registered the FIR. Have they also named the accused, and where is the investigation at this moment?
4: Well, that's right, Ankit. We are seeing that the Gurugram police have now registered an FIR in this case following a viral video on social media depicting a hit-and-run incident involving the female motorcyclist Sia. The incident took place on September 13, 2026, around 7:30 a.m. between sector 55 to 56 Rapid Metro Station and the powerhouse, is what the FIR mentions, according to the FIR lodged at the sector 56 police station. We have seen that the police have in fact taken suo moto notice of the video posted by Instagram user Rebel Wheels Sia. The uploaded footage have also in fact showed the car that was being driven rashly and negligently at high speed, and the vehicle collided with a female motorcyclist before speeding away from the scene. Now the Gurugram police have registered a case against the unknown driver of the Sias. Now remember, the name has in fact not been mentioned so far, and the FIR are registered under section 125, that is Act of Endangering Life or Public Personal Safety of Others, and section 281, that is Rash Driving on a Public Way of the BNS. We have also seen that in this matter, three teams have been substituted by the Gurugram police, and right now they are in fact also trying to identify what were the circumstances that led to this incident. Over to you.
0: So the police has begun their investigation. Sia's Shivani Chauhan's family is also in touch with the police. Their lawyer is getting in touch with the Gurugram police. She will be recording a statement as well. But ladies and gentlemen, I want to at this moment turn our attention to what happened on Sunday. A Sunday morning ride with a group of friends, a group of bikers, which turned into an horrifying, terrifying ordeal for this young woman on Gurugram's golf course road, after a car followed this group of bikers and then saw a woman riding a bike on high speed, then decided to block the woman rider. He was trying to chase, harass and block this woman rider. Then the woman,

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia, movement that inspires.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: Hindustan mile, Hindustan se.
3: Desh ka tire, JK tire.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: If a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
1: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: मिशन मूवमेंट वंदे भारत। हमारे इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के मेंटोर्स को। प्लीज वेलकम आशुतोष बलानी, मिस्टर राजीव पालमी, आरती गिल, मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति, द सेकेंड जनरेशन विजनरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मिस्टर करण अदानी। तो वेलकम टू वंदे भारतम। शुरू करते हैं। घर बनाना हम सबका सपना होता है। कुछ लोग ये सपना बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग काफी देर के बाद, काफी समय बीतने के बाद पूरा करते हैं। टेक्नोलॉजी हर जगह पे, हर क्षेत्र में आजकल, घर के कंस्ट्रक्शन की दुनिया में क्यों नहीं है, ये सवाल हमारे इनोवेटर के दिमाग में आया। तो जोरदार तालियां माई कॉप की इनोवेटर अंकिता सिन्हा, शशांक शेखर और ऋषभ मात्र के लिए। वेलकम वंदे भारतम के मंच पर। पिच का टाइम आपके पास में जो है वो 3 मिनट का है और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
1: हेलो एवरीवन, हमारे और आपके लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है घर, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड व्हाट नॉट। 20,000 फीट की हाइट पर सीमा पर तैनात एक सैनिक के लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है देश की प्रोटेक्शन एंड नेशनल सिक्योरिटी। इमेजिन दिस, हाई ऑल्टीट्यूड, सब जीरो टेम्परेचर, वेरी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पर आपको करना है कंस्ट्रक्शन। ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्लो नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है। हमने इस प्रॉब्लम को काफ़ी बारीकी से समझा, सॉल्व किया और देश को दिया उसका पहला 3D प्रिंटेड इम्पैक्ट एंड ब्लास्ट रेजिस्टेंट बंकर। यह बंकर सुपीरियर क्वालिटी के हैं, प्लस कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस को 45 डेज से कम करके 7 डेज पर लेकर आ गए हैं। आज हमारी सीमा पर 500 से ज़्यादा की संख्या में ऐसे बंकर्स डिप्लॉयड हैं जो देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे लिए टेक्नोलॉजी का ट्रू पर्पस यही है। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सिन्हा।
2: मेरा नाम है शशांक शेखर। मेरा नाम है ऋषभ माथुर एंड वी आर द टीम माइकॉप। माइकॉप इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 3D प्रिंटिंग कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इज बेसिकली रोबोटिक सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी भी डिजिटल डिजाइन को लेयर बाय लेयर, स्पेशल मिक्स जो कि हमारे केस के अंदर कॉन्क्रीट है, उसको डिपॉजिट करके कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं। दिस इज बेसिकली 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। हमने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है हियर इन अहमदाबाद, विच हैज 3 की कॉम्पोनेंट्स। वन इज अ रोबोटिक सिस्टम, सेकेंड इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज 3D प्रिंटेबल मिक्स। सो दीज 3 ऑल टूगेदर अचीव ऑलमोस्ट 100% ऑटोमेशन। एंड विद दिस टेक्नोलॉजी वी हैव डिलीवर्ड क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइमलाइंस 60% तक भी रिड्यूस किया है एंड मटेरियल वेस्टेज अराउंड 30% तक भी हमने रिड्यूस किया है।
3: एंड नाउ वी आर ऑन अ मिशन टू डेमोक्रेटाइज दिस टेक्नोलॉजी फॉर द लार्जर गुड फॉर द पब्लिक, वेयर इन दिस कैन बी यूज फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आंगनवाड़ी, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो फॉर इंडस्ट्रियल यूज केसेज एज वेल। लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, 3 बेसिक चीज़ें हैं। तो मकान इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर द मासेज। अगर कोई घर बनाना चाहता है या कोई इंडस्ट्री अपनी बिल्डिंग बनाना चाहती है, तो उसको हमेशा एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, एक डिजिटल डिज़ाइन को एक फिजिकल मॉडल में ट्रांसफॉर्म करना होता है, जो काफ़ी कम्बरसम होता है। तो हमारा पर्पस यही है कि इसको हमें एकदम हैसल फ्री बनाना है। द मोमेंट यू नो कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट एंड वी एंश्योर द सेम थिंग कैन बी प्रिंटेड राइट अवे, सो दैट्स वॉट वी आर ऑन अ मिशन टू। एंड इस सपने को सच करने के लिए आज हमारी आस्क है 30 करोड़ रुपए फॉर 20% स्टेक इन अवर कंपनी। एंड विद दिस लेट्स प्रिंट द फ्यूचर। वंदे भारतम।
4: हाउ बिग आर यू गाइस इन रेवेन्यूज?
3: सो लास्ट ईयर वी डिड 11.65 करोड़। इन द पास्ट 3 इयर्स वी हैव नेट रेवेन्यू डन ऑफ अराउंड 35 करोड़ एंड द ओवरऑल प्रोजेक्ट वैल्यू दैट वी हैव डिलीवर्ड वाज अराउंड 115 करोड़। So we did like 30% of the overall project work.
4: So the 650 structures, if in 2 years time this has to be 3x of this, are you able to do that? Do you have the capacities?
3: In the last year we actually expanded ourselves from a 20,000 square foot facility to a 70,000 square foot facility. We have one more plant in Sonipat. So now we are in a position wherein if the overall project value is, let's say, is in the tune of 300 to 500 crore, we can deliver that, and this fundraise definitely would help us to have that growth in the next 2 years.
5: amazing concept, and trust me, from a

0: personal experience, anybody who can solve construction, they would be real angels for any home buyer. Two, three things from my side. Once you construct it in your factory, how do you move them?
1: So it's like a prefabricated 3D printed structure. So what we do is we break the entire building into Lego type panels, right from the foundation element, in some cases the roofing also. And then they are like transported using trucks. So what our vision is to have like decentralized facilities across India, like the ready-mix concrete business, so that we can cater very easily within 50 to 100 kilometer radius, and the logistics costs are also low, and that does not impact environmentally also. And then at site, we can erect using the available machineries like tower cranes, like hydra cranes and other available resources.
0: Per machine, what is the minimum throughput required?
1: You can say like if you want to build a 1,000 square foot house, so using one robot in one shift, we can do that printing in like 4.5 days typically. And right now we have like 6 robots, so actually we can do one house in less than a day as on today.
0: I can offer support in the sense sports business. We are developing almost 20 million square feet of warehousing. So, you know, we would be happy to support and work on your technology and
2: Thank
0: to see
2: so
0: how much.
2: Much
0: we can work together.
2: Thank you so much.
0: Because we also have the same problem of we need to deliver for clients like Flipkart ahead of time. So we would be happy to work on
2: Thank
0: support
2: you so
0: on.
2: Thank you so much.
3: That's fantastic. Congratulations, guys.
4: देखो आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट है करण जी के नाम पे और आपको मैं दे सकता हूँ थोड़े से पैसे एज टर्म ऑफ कैपिटल सो आई वुड एक्चुअली लाइक टू ऑफर यू सम मनी हियर ऑन दिस स्टेज पर्सनली मी एंड माय ग्रुप कैन ऑफर यू 30 करोड़ फॉर 33% ऑफ द कंपनी गिवन दैट योर रेवेन्यू इज 24 करोड़ आई वुड लाइक टू वैल्यू एट 90 करोड़ एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक आई कैन पर्सनली रेज फॉर यू अलॉन्ग विद माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट And given that we have support from my favorite panelist, I would definitely like to make this offer to you.
2: If you could just, क्योंकि हमारा last round जो हुआ था 100 CR पे हुआ था around 2 years back.
4: Okay.
2: So if you could just उससे थोड़ा ज़्यादा, maybe if you could go up to 110, that's it.
4: ठीक है, at 110 deal done.
2: Thank you so much. Oh my God.
5: What is happening here?
4: Yeah. Thank you so much.
6: Yeah, I just wanted
4: Sorry,
6: to share
4: Kalyan
6: something.
4: Kalyan has something to add.
6: What I'm going to do is, Ashutosh is a friend. I'm not going to compete with him, but I'm going to request that I join him in some small way. It's good for you to have a diversified cap table rather than one person owning 30%+. Maybe we partner together and split. I'll let Ashutosh have this discussion with you, and I'll just partner with him.
4: No, Kalyan, why don't you join me? Let's do it together. I think more the merrier, right? Amazing job. Amazing
2: Thank you
4: job.
2: So much. Thank you Super. So much.
4: So awesome.
2: Thank you so much.
6: Congratulations to you.
7: आप तीनों जानते हो मैं यहाँ खड़े होकर क्या करता हूँ मैं सपनों को पूरा होते हुए देखता हूँ विच इज सच अ नाइस फीलिंग हाउ आर यू फीलिंग कैसा लग रहा है आप लोगों को
2: सर रियल है बिल्कुल लाइक हमारा जो फर्स्ट प्लांट था वो यहाँ से अगर मैं लोकेशन की बात करूँ शांतिग्राम के जस्ट पीछे है तो वो डिस्टेंस कवर करना इफ आई से मे बी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दे तो 600 मीटर की दूरी होगी बट फॉर अस वो डिस्टेंस कवर करना बहुत बड़ी बात थी वो दूरी हम इस तरीके से पूरी कर पाएंगे और यहाँ पे खड़े होके कुछ लेके जाएंगे इतना बड़ा कंपनी के लिए आई थिंक व्हेन आई अप्लाइड आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट शायद सपने ऐसे ही सच होते हैं
7: बिल्कुल ऐसे ही सच होते हैं और इस मंच पर तो बहुत ही खूबसूरती सच होते हैं अगर आइडिया में है दम कहो
1: वंदे भारत
7: वंदे भारतम थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स दैट आई वेट फॉर प्लीज आप लोग स्कोर दे दीजिए दिस इज वेरी नाइस नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट नॉर्थ ईस्ट यू बीन देयर
4: Yes,
7: yeah, it's such a beautiful part and हमारे जो अगले innovators आ रहे हैं वो northeastern खूबसूरत northeastern belt से आ रहे हैं Please welcome Imphal East से Kumshunk Private Limited के innovators Dr. Wankhe Rakpam Sujata and Wankhe Rakpam Krishna Nanda

0: Hi, nice to meet you.
1: Yeah, pleasure to have you here on Vande Bharatam and Dr. Sujata. Right, welcome on Vande Bharatam. Aap dono ka rishta kya hai?
2: He's my son, Krishna Ananda.
1: Oh, son and mom.
0: Yeah.
2: He's the mechanical engineer behind all the devices and apparatus I developed.
1: आप लोग अपने पिच के साथ तैयार हैं?
2: हाँ.
1: Ready हैं?
0: Yes.
1: Dr. Sujata, आपके पास में 3 मिनट हैं. And this is your moment to shine.
2: Yes, sir. Namaste, mentors. मैं मणिपुर से आई हूँ और मैंने PhD नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में किया है एंड पोस्ट डॉक भी किया है उस पर. उसी दौरान मैंने एंटी कैंसर कंपाउंड्स के बारे में रिसर्च किया है. भारत सबसे हल्दी और चिली के प्रोड्यूसर्स है, पर हम लोग हाई प्योरिटी बायो एक्टिव्स एंटी कैंसर जैसे कि कुकुरमिन, इंडिरुबिन, कैप्साइसिन और एस्ट्राजेंसिन जो हल्दी और चिली और सम प्लांट से निकलते हैं वो बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ के फैक्ट्री 98% वाला बायो एक्टिव वाला प्रोड्यूस नहीं कर सकते. और इससे ये प्रॉब्लम होता है कि बायो रिसोर्सेज अनटैप हो जाते हैं और इम्पोर्ट बढ़ते हैं. और हमारे जैसे मणिपुर के स्टेट में जो लोग हैं और बायो रिसोर्स के साथ है वो भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं. तो हमने इसके लिए सॉल्यूशन निकाले हैं एंड हमने सुजाता एप्रेटस एंड ASU26 डिवाइस निकाले हैं जिससे भारत की जो हाई वैल्यू बायो रिसोर्सेज है वो भारत में ही अनलॉक करेंगे. हम लोग को 2 फायदे मिलते हैं कि प्रोसेसिंग एंड डिवाइस कॉस्ट को 100-fold कम कर देते हैं, पर हमें यील्ड में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलते, यील्ड भी बढ़ गया है. और दूसरी बात है कि वो पेटेंटेड है तो वो हम लोगों का USP है. आई एम एक्सपेक्टिंग फंडिंग एज वेल एज मेंटोरशिप, बिकॉज आई नो दैट वो मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है बिजनेस में.
0: यहाँ आपने क्या क्या बनाया है कुंगशुंग के अंदर? आई कैन सी सम प्रोडक्ट्स, कैन यू प्लीज शो अस सम?
2: सर, व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी देयर वाज अ क्राइसिस, सो आई हैड टू अर्न रेवेन्यू, सो वी मेड सम बेसिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स. दिस आर फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम हिदाक्लोन, व्हिच इज स्पेसिफिक इन माय स्टेट, सो वी हैव द USP.
3: तो आप मतलब टेक्नोलॉजी उस डिवाइस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं?
2: एक्सट्रैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं.
3: ग्रेट. उसके ऊपर आई थिंक द ओनली थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू क्लिनिकल्स. अभी आपने कुछ क्लिनिकल्स किया है इन विट्रो या इन सिलिको या इन वीवो कुछ अभी किया है?
2: दिस इज लाइक फसाई अप्रूव्ड एंड सो आई एम स्टार्टिंग विद द वंस व्हिच हैज टू बी यूज्ड इन द क्लिनिक ओनली, सो दैट डजंट रिक्वायर एनी हार्ड सर्टिफिकेशन.
3: आपने मेंटरशिप के बारे में बोला था, सो That's something that I can offer you.
2: Yeah, please, thank you so much.
3: But I do have a request for Karan. Like, I think this is a great, great thing that they are doing, right? And so if we can present them the Bande Wings, I think that would be very kind.
4: Yeah, I agree with you.
3: Okay.
4: It's a great, great opportunity.
1: Congratulations. Aap yahan se Bande Wings dekar ja rahi hain, which means at least 10 din ki mentorship with Adani Group.
4: We feel that this will be a great opportunity for India and a big contribution and actually put Manipur in the map and for people to actually see that, you know, this is what the state can contribute. And very touching story, being from academics and coming, taking a brave step into business, it's not easy.
1: Absolutely.
4: So very touching story.
1: That's a huge encouragement. That's a huge encouragement for them. Many, many congratulations.
4: And most importantly, family working together. This is a family business.
1: Absolutely.
4: So great. Congratulations.
0: Thank you. Yeah, and I had one more request from the panel. Our company is really lacking in engineers. I'm the only mechanical engineer present in the company. I drew the designs for the machine and I faced so many difficulties while manufacturing. And my mother, while testing, there were so many leaks in the machine, so many leaks. One leg came off. So handling everything alone was a big storm.
4: What kind of engineers?
0: Mechanical, preferably. Yeah. Someone who knows material sciences.
4: So we, as a group, we would be happy to support you in that journey.
0: Yes, sir. Thank you very much.
1: You ask for it and you get it.
0: Yes.
1: Yes.
0: That easy.
1: It's that easy. They make it look that easy. Because you know what? This show is not about competition. It's about encouragement. It's about pushing someone. It's about inspiring others and helping them. Wishing you all the best and hope to see you in the finale episode.
0: Okay. Thank you.
1: Thank you so much. Thank you. Done with this course? तो आगे बढ़ते हैं एनीवे हमारे अगले इनोवेटर को बुलाते हैं वो एर्नाकुलम केरला से आ रहे हैं ये ना अपनी जड़ों से बहुत करीब हैं हम सब अपनी जड़ों से बहुत करीब हैं लेकिन ये अपनी जड़ों से इतना करीब हैं कि अपनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं प्लीज वेलकम कोची से नवा डिजाइन के इनोवेटर चार्ल्स विजय वर्गीज थैंक यू
5: Thank you very much.
1: Thank you.
6: Thank you so much.
7: Thank you so much.
1: Thank you.
8: All are feeling refreshed?
9: Yes, thank
10: yes,
9: you.
10: Thank you.
8: Let me ask you one thing. Coconut looks hard and strong from outside, but from inside, it feels like very sweet and refreshing, isn't it? So, the same thing there is one industry that is global Nira product industry which is $8 billion industry and growing at a pace of 10% every year and now the world is shifting from sugar to diabetic friendly low glycemic coconut sugar and the Nira coconut aminos then coconut vinegar and many such products
11: yes sari jo premium products hai It all comes from one single raw material, fresh coconut sap. Or this fresh coconut sap tapping abhi bhi 3000 saal purana tarika mein hai. Every day, tapper has to climb 3 times to 40, 50 feet high tall trees and they need to continue to another 45 days. Globally, every day, 8 tappers falling and die. And for this reason, no young generations want to come to this job. And this workforce is aging and disappearing. This is a big issue for the whole Nira industry. So we thought, if surgery can do with robots, why can't we have a robot for tapping? From that thought, we made Saper, the world's first coconut sap tapping robot. This Saper, once it's installed, for next 45 days, it will do the precision tapping and we will get the sap at the ground level. And moreover, one sapper will eliminate 10,000 tree climbs. And that is a huge number. And that dangerous part we are removing. And for making this technology, we took 11 years. Now we piloted in multiple countries with the biggest global players in this industry and successfully done with our piloting. And now we are in the commercial production phase. And with this technology, we can have 8,000 crores of revenue by giving this solution to the existing tapping trees. That is only just 0.2% of 2 billion coconut trees around the world. So that's a huge opportunity we have ahead. And most important thing, we are a deep tech certified company having 11 granted patents across the major all palm tapping countries. We build the technology and I'm looking for fund and support to scale it globally. We are looking for 15 crores of funding for doing the commercial production. Specifically, we want to connect with the best OEM manufacturers and vendors to reduce the cost.
0: Great, Charles. Congratulations, by the way. Great achievement. I think this is the kind of story that India wants and needs on a daily basis. So how much time does it take to create one machine?
8: Okay. Now it's all 3D printed. It takes a lot of time to do the 3D printing. Luckily, if everything goes well, then it would take a week to complete one print for one machine. But if it's going into mass production, we can make into lakhs also.
0: Great.
3: इस मशीन का अभी वेट कितना है एंड थोड़ा सा मुझे कॉस्टिंग और किस

0: ला आरती और आशुतोष से शुभ आरंभ का ऑफर।
1: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
2: आज वंदे भारतम के इस कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR ऑन योर स्क्रीन। आप ये सारे एपिसोड्स देख सकते हैं NDTV 24/7, NDTV India, NDTV Profit और NDTV Digital प्लेटफॉर्म्स पर।
3: Using robotics and AI to empower people from fever to pace. Every 5 days, one person is dying in India due to this particular problem statement.
4: Really happy to collaborate on connecting to all ecosystem.
5: Thank you.
6: मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मेरा बच्चा 4 महीने का था, तो कोविड था, डेथ हो रही थी बहुत ज्यादा। आप जब बताओ फैमिली को, उनको होता है कि इतना छोटा बच्चा है, यू आर ओवर एम्बिशियस। मेरे हस्बैंड सपोर्टिंग थे, उन्होंने कहा एक बच्चे के लिए सोल्यूशन नहीं बना रहे हो, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। आई विल सपोर्ट यू।
7: आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर पैशन। गुड लक।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।

0: खरीदा, काला सफेद हो गया, सफेद चकना हो गया. व्हेन अमित शाह स्टॉप्स दिस, इंडियन पॉलिटिक्स विल सर्ज वंस अगेन. अमित शाह जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट केओस एंड मैडनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स टुडे. यू विन ऑन वन टिकट, यू ज्वाइन अनदर पार्टी, एंड
1: आनंद
0: देन आफ्टर दैट यू ज्वाइन अ थर्ड. दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया.
1: आनंद आनंद
0: आनंद, विल यू यूज योर गुड पावर विद द बीजेपी टू चेंज मिस्टर अमित शाह?
1: संजय इज कंप्लीटली रॉन्ग. इट इज नॉट अ वॉशिंग मशीन, इट इज अ धोबी घाट नाउ.
0: ओके, आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, आई लीव इट एट दैट. लुक, अल्टीमेटली पीपल आर गोइंग टू चूज हु दे वॉन्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अ पार्टी टेल्स यू दैट सच पार्टी इज अनटचेबल, दे आर ओनली वोट कटर्स. दे विल चूज द पर्सन हु थिंक्स, हु दे थिंक डिजर्व्स देयर वोट. दे आर द बेस्ट जज. फॉर द टाइम बींग, थैंक यू वेरी मच ऑल जेंटलमैन फॉर हैविंग जॉइन मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. रिमेंबर, ऑन एवरी स्टोरी दैट मैटर्स, द बक स्टॉप्स हियर.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: द वर्ल्ड इज बिटवीन व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, a world between orders.

0: Good evening and welcome. We are on India Matters this Monday night with me, Shiv Arur. We've got a huge, huge exclusive coming up on the show tonight. But as always, let's start with the headlines at 9 p.m. Gurugram road rage on the outskirts of Delhi caught on camera becomes a national talking point. Scolded by a woman biker, Thug Kalyan Baisla rams his car into her bike and flees. He's been in hiding for over 24 hours, brazens it out by blaming the victim. This muscle-bound meathead is still on the run. Kargil veteran group captain Amit Kumar Gupta, made famous by the recent Operation Safed Sagar series, attacked by an iron rod by a parking attendant in Gurugram once again. Veteran suffers serious head and elbow injuries. Accused parking attendant has finally been arrested after NDTV spotlighted the story. Opposition hits out at Tamil Nadu Chief Minister Vijay's UK visit and attendance at Ajit's race event. DMK says, don't waste people's taxes. Vijay releases highlights of his Silverstone visit. Trophy Chor Nakvi chants go viral after Indian women's team snubbed the PCB chief Mohsin Nakvi in Dubai at the Asia Cup. BCCI says call by team was institutional. After Elon Musk and Sam Altman, Microsoft CEO Satya Nadella joins the AI slowdown debate. Says if the AI we build is not helping humanity, then it is not worth pursuing. Trump downplays the AI slowdown calls. And coming up on the show tonight, all this lady biker did was warn him to drive carefully, and what followed has shocked all of India. Where is this coward, Kalyan Baisla, who spends all his time clearly in a gymnasium? He's hiding now because he simply doesn't have the spine. All muscle, no spine. Where is this man hiding? Also coming up, an NDTV nuclear super exclusive that I do not want you to miss. This is National Security Television for the first time ever. You're going to hear from someone from one of India's most secretive defense projects speaking out on television for the first time ever. Let's begin with our big story tonight. Watch this video from Gurugram tonight, Delhi's biggest suburb that everyone is talking about today. Watch it really carefully, viewer, because there's a good chance you've already seen it, but I want you to watch it again. A woman biker, Shivani, riding on the posh upscale golf course road in Gurugram, tells a car driver to keep his distance and drive carefully. And that apparently wounded his pride. He follows her, and then he deliberately rams her motorcycle at high speed and then takes off in his car. She is flung onto the road violently, all of it captured on the dash cam of her motorcycle. Miraculously, Shivani survives. She's injured, her family is traumatized, and they want attempt to murder charges. The man police are looking for is this cowardly, muscle-bound meathead named Kalyan Baisla. A quintessential gym-obsessed bouncer-like thug that has become a common sight on Delhi's outskirts. An over-proteined tough guy who poses in music videos, pretends to be a divine devotee while flexing biceps for the camera. But where is he now? He's in hiding. Kalyan Baisla, for all that muscle-bound power and posturing, is hiding like the typical coward that most such thugs are. Because apparently all that muscle is useful for posing, but not for finding the spine to face the consequences of what you allegedly did. Ram a lone woman biker because she scolded you on the road. Now, the car wasn't even Baisla's, by the way. It was borrowed from an army soldier friend who's posted somewhere in Assam. But this man's ego, Kalyan Baisla's ego, was apparently so fragile on the road, his masculine pride so catastrophically wounded by being schooled by a woman biker, that this car basically became his lathi. And then he ran off, hiding in his village, switching off his phone. What kind of tough guy does that? Ram a woman off her motorcycle and then disappear? Muscles of steel, courage of wet tissue. And what shocks me most is that women in the Delhi National Capital Region, viewer, are not shocked at all by this. Ask women who drive or ride in Gurugram, the taunts, the threats, the intimidation and road aggression are everyday routine matters. Some women bikers cover themselves from head to toe, not just against pollution and sun, but to conceal that they're women and simply get through the ride. Gurugram sells itself as a gleaming global city. But this is Gurugram too: road rage, entitlement, casual violence, and the pathetic fragility of the male ego every single day on the road. Kalyan Bensla, if you're the tough guy you like pretending to be, stop hiding, come out, and face the law. And while Kalyan's friends and family try and hide him and try and come up with useless excuses that it was not a hit and run, NDTV has accessed a new video, a fourth video of this murderous hit and run, where you can clearly see, perhaps in the clearest way of all, that this thug Kalyan Bensla deliberately swerved his car into Shivani's bike. This new video completely lays to waste any excuses, any attempt to divert and falsify what actually happened, which is what Kalyan Bensla's family, friends and lawyer are attempting to do at this point of time. Just take a look at this video very carefully. The car simply swerves into the bike and Shivani is violently thrown off the bike and she doesn't stand a chance, because the narrative being peddled right now by the family and friends of Kalyan Bensla, who by the way is still in hiding like the coward that he is that this is an edited video, that didn't really happen, there was actually a U-turn, he was trying to take a turn and it happened, she was the one driving rashly. Take a look at this video and decide for yourself what has actually happened. Let's go across to NDTV's Anushka Garg, live with us from Palwal in Haryana, in fact, right outside Kalyan Bensla's residence. Anushka, you've been chasing Kalyan all day today in Palwal in Haryana. It looks like he has switched off his phone. He doesn't want to face NDTV's cameras, NDTV's questions. This muscle-bound criminal is apparently in hiding. What is his family telling you? Where is he right now?
1: Well, that's right, Shiv. We're outside the
2: found, according to the CIA officials. We're showing you the visuals from outside his residence right now. What we are in fact seeing here is that the Palwal CIA team were right now just outside the very house of the this accused that we're in fact showing you the visuals from. We're clearly showing you what kind of a gathering that can be seen here, and also how these people were in fact gathered here to see what the CIA was in fact, you know, doing here, and how in fact they are trying to track him down at the moment. This was the last found location of Kalyan Bensla, and we have also in fact gone to the gym where he was working for the past 2 years. He was working there for the past two months.
1: He was in fact thrown out and was in fact also told to evacuate the very premises where he was in fact working as a gym operator. We are still showing you the visuals of his house, his residence where he was last found. This is the location, and we have also seen how the CIA, Palwal CIA, is in fact right now trying to track him down. An FIR has been registered as the Gurugram police has taken suo motu cognizance of this video. The video that went viral on social media and have in fact also registered bailable cases against Kalyan Bensla. We are showing you how the villagers here have in fact also gathered, and the CIA, Palwal CIA officials, who are right now trying to question them as to where he was last found, and also if they know anything about his whereabouts and where he's in fact right now in hiding. This is the village where he was last found, and we have seen the video of how Sia was in fact trying to stop him from overtake her, but he did not heed to any of her appeals. We have seen multiple times that she was trying to indicate to her that he should not come this close to the bike that she was driving, but he did not heed to the pleads of Sia. After that, he tried to overtake her, and then we saw how this whole incident panned out, how she was violently thrown off her bike, and now he's right now in hiding, and we are in fact also trying to show the visuals of how this whole incident has panned out. The residents of Kalyan Bensla in this whole case that we're in fact tracking down, we have seen multiple times that the police have in fact tried to track down his whereabouts, but this is where he was last found, and we have in fact
0: NDTV is outside his house, the police is outside his house, and they want us to believe that they don't know where Kalyan Besla is. He probably has good connections with the powers that be also, and therefore he may be receiving some kind of protection also. It's not too far-fetched to imagine that that could also be a possibility. Anushka, I want you to stay safe. I want you to take care of yourself as you report this story tonight from Palwal, and I will keep in touch with you and I will get back to you. Good job reporting from there. We will find Kalyan Besla, even if the police claims not to be able to trace him right now. I had a word, in fact, with Kalyan Besla's relative or friend and someone who claims to be his lawyer, Naveen Besla, who is representing him. And here's what he had to say. Take a look at this.
3: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Besla kahan?
4: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai, sir.
3: Haan, toh kahan chhipa hua hai?
4: Ek hi kaam se belong karte hain, sir.
3: क्यों इतना भाग रहे हैं?
4: नहीं सर, भाग सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर. एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को. वो नादा नहीं कर रहा, कुछ मिला उससे गलती हुई है, ठीक है जी सर, ठीक है. उसकी जो गलती, छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है.
3: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है. वो लड़की जो है
4: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ सर,
3: घटना में मर सकती है वो, आपको भी
4: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए ये सर बहुत गलत.
3: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है, वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
4: सर सर सर सर सर सर सर
3: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
4: सर एक्चुअली सर
3: आंसर नहीं भी कर रहे हैं.
4: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
3: इतना जो जाते हैं, इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते ये?
4: नहीं सर, बिल्कुल आ जाएंगे सर, सर बिल्कुल आ जाएंगे. जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर.
3: कौन सा
4: और
3: संपर्क?
4: एक सीधी सी, नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर. मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर, कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता. लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर. हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द.
3: इसमें आपकी बात हुई है, आपकी कल्याण से
4: मेरी मेरी मेरी बात. मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था. सुनो सर मैं
3: इतना जो
4: सर मेरी सुन दो एक सेकंड. मेरा क्या उसका 10 मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है. एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था. मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे. 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया? उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया. उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ.
3: नहीं अरे ठीक है नवीन जी, एक बात बताइए. आप बोल रहे हैं
4: उसके गांव में गया हूँ. गांव में जाने के बाद आज तक वाले न्यूज वाले आए हैं, न्यूज वालों को उसने पूरी प्रॉपर अपना साइड रखा है, अपना पक्ष रखा है.
3: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है. मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादा.
4: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ, ये रोडों पे राइडर निकल रही है, ठीक निकल रहे हैं?
3: नहीं नहीं जो भी होता है
4: नहीं सर, जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ. वो तो सुनो सर 140 सर, आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ. मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ, और मैं कुछ आपकी जो वीडियो, जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर. दो बात करूँ सर, कोई बात नहीं कर रहा. जो लड़की ने वीडियो डाली, मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है, बिल्कुल जूम करके देखी है. उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, आप देखो वहां पे यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया और वो एकदम हिट हो गई है, ठीक है. उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है. एक ये आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते.
3: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है. आप
4: सर मान ली सर, मैंने मान ली.
3: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है. एक
4: उसके बाद सुनो उसमें उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ.
3: नवीन जी, क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर? 4 अलग वीडियो है सामने.
4: मैंने वो सारी वीडियो देखी है. वो लड़की सर सुन, मैं तो उसी के
3: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी?
4: नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, इनका क्या बस, खाली वो बार बार इसको पिंच कर रहे थे, इनसे आग निकल जाते थे बार बार, ये सारे ये 28 लड़के 28-30 जने थे टोटल राइडर सर। सर ये तो आपने एक क्लिप देख ली सर, सर ये आपने सर सर सर सर प्लीज सर ये आपने
3: ये आप बोल रहे कि ये डॉक्टर है गलत है,
4: ये सर ये सर ये क्लिप ये सर आपने क्लिप देख ली है, उसने बस खाली एक गलती करी कि गाड़ी स्पीड में चलाई, जो ये राइटर सारे गलती कर रहे थे स्पीड में चला के।
3: आप अब देश को झूठ बोलना चाहते हैं कि ये अनइंटेंशनल था, ये इंटेंशनल नहीं था।
4: मैं तो सर न्यूज़
3: कैमरे पे है,
4: मैं सर वीडियो देख के ही आपको बता रहा हूँ।
3: लड़की के जो माँ बाप हैं वो अब अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगाना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
4: लड़की के साथ सर, लड़की के साथ पूरी सिंपैथी है मेरी, है मैं कहूँ भगवान उसको जल्दी ठीक करे, कोई सुनी है
3: सर, वो
4: ठीक है, पर ये
3: बात निकल चुकी है, अब तो कल्याण को सामने आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा।
4: ये तो मैं तो पुलिस की कमी बताता हूँ, जो राइडरों को रोड पे निकालते हैं
3: सर, एक स्ट्रेट बात बताइए, ये जो कल्याण जो आपके भाई हैं या कजन हैं जो भी हैं, आपके क्लाइंट भी
4: हैं, जो भी है सर, काम के नाते साथ,
3: ये तो सोशल मीडिया पे इतने बड़े हैं, ये तो जिम ओन कर चुके हैं, भक्ति करते हैं, सोशल मीडिया पर म्यूजिकल
4: कबड्डी का सर इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्लेयर का सर,
3: वो तो सब करते हैं, वो कुछ भी नहीं है उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब करने के बाद वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो तो कायर है फिर
4: सर। सर सर सर कायर तो सर,
3: क्या बात है, क्या फायदा है कबड्डी खेलना इंटरनेशनल लेवल पर, कबड्डी
4: भक्ति
3: करना यूट्यूब पर,
4: जब तक सर सर क्या फायदा है, उसकी बात
3: नहीं आ सकते हो तो।
4: आपने सर एक पक्ष सुन लिया, आपने एक प्लांटेड वीडियो देख ली, दूसरा सब तो आपने सुना ही नहीं है,
3: प्लांटेड
4: सर, प्लांटेड
3: वीडियो है, आपने चारों वीडियो देखी आप
4: सर, सुनो किसी वीडियो में 28 बंदे हैं सारे राइडर, किसी भी वीडियो में जो रेस लगा रहे हैं गाड़ियों से, जो टॉन्ट कर रहे हैं वो है सर, प्रॉपर वीडियो, पूरी वीडियो इनके पास, राइडरों के पास प्रॉपर पूरी वीडियो होती है, ये कैप्चर क्यों कुछ काट काट कर दे रहे हैं वीडियो, प्रॉपर एक वीडियो दे रहे सारे
3: सर। ये जो माइंडसेट है ना आपका, ये जो माइंडसेट है वो मैच होता है कल्याण से, क्योंकि आपका कहना है कि जो जो लड़की बाइक से
4: गिरी है, मेरा माइंडसेट,
3: जो आपका दोस्त उसको जाकर मारा है गाड़ी से,
4: गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग माइंडसेट मेरा सेट
3: लड़की गलत है,
4: मेरा गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग कोई मैच नहीं होता किसी से मैच,
3: सारे लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं, आपको देखते हैं, देख रहे हैं अभी, सबने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है सर, और आप मतलब खुले से आप झूठ बोल रहे हो, ठीक कुछ नहीं हुआ है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये लड़की झूठ झूठ
4: कानून की पालना करने वाला लड़का हूँ, कानून की पालना करता हूँ, मेरे तो एक ही है कि जो इन्होंने गाड़ी
3: कल्याण कब आएगा, कल्याण कब आएगा
4: इसके सामने, जैसे ही हमारा संपर्क होता है हम अपना आप उसको पेश करेंगे,
3: मतलब वो हाइड में गया है, वो हाइड कर रहा है,
4: खुद बुला के सर, हम खुद बुला के पेश करेंगे, हम तो बल्कि ईमानदारी से बता रहे सर,
3: तो उन्होंने कल्याण ने फोन भी ऑफ कर दिया, अब फोन भी ऑफ कर दिया, अब
4: सर अब मैं उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता ना सर, फोन ऑफ क्यों किया, क्या बैटरी बंद है, क्या है, मैं नहीं कह सकता इस रिगार्डिंग
3: सर। कल्याण का जो असलियत है ना वो सामने आ गया है, जो वो करते हैं जिम जाते हैं बॉडी बनाते हैं
4: सबके अपने अपने अपने अपने व्यू होते हैं अपने अपने माइंडसेट होते हैं सर,
3: सबके सामने दोस्तों के सामने परिवार के सामने
4: सर सबके सबके सर सबके अपने व्यू अपने माइंडसेट होते हैं
3: सर। आप किस कल्याण बैसला के घर के बाहर पुलिस की टीम है, एनडीटीवी की टीम है,
4: बिल्कुल सर,
3: सारे मीडिया हैं उसके
4: घर के बाहर,
3: वो घर पे नहीं है, हम बोल रहे कि वो घर के घर से निकल गए हैं, घर से भाग गए हैं,
4: हम कोशिश कर रहे हैं सर, जैसे ही हमें कोई संपर्क होगा आपको भी और क्या नाम है सीआईए को बता के प्रॉपर पेश किया जाएगा, ठीक है, उसने जो अपराध किया है कोई भी उसको भी हम देखेंगे, इससे कोई बड़ी वो नहीं
3: है। चलो मुझे लगता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चलो मानते हैं कि आप उनके संपर्क में नहीं है, अगर वो एनडीटीवी देख रहे हैं आज रात को, आप क्यों क्या बोलना चाहेंगे कल्याण को, डायरेक्टली कल्याण से बात कीजिए और बोलो उनको।
4: मैं कल्याण को क्या, मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कानून के खिलाफ कोई भी कार्रवाई है ठीक है, उसमें आपको कानून से दूर नहीं जाना चाहिए, कानून के साथ रह के कानून की पालना करके आप कानून के सहयोग के बाद बन सकते हो।
0: ओके नवीन बैंसला, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी, थैंक यू। And we've got more breaking news coming in. The Gurugram hit and run incident. An eyewitness has now stepped forward to speak to NDTV. The biker who confronted the accused, Kalyan Baisla, has spoken out for the first time. He says the car was tailgating Shivani. You've heard what the lawyer has said. Complete rubbish. The car was chasing her, tailgating her. The witness says three guys in the car, all were drunk. Baisla tried to stop her twice with the car and then rammed her while overtaking her. Take a look at this.
5: I was on the road उस time पे और सिया ने just मेरे को cross करा और मैंने देखा कि एक car उसको बहुत बुरी तरह chase कर रही है road के ऊपर और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और road लगा कि वो car ऐसे मतलब उसको chase कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसने वो जो car वाला था ना उसने बहुत ज्यादा closeness मतलब बहुत ज्यादा close में था, वो बहुत ज्यादा एकदम tailgating कर रहा था bike की और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है और फिर वो गाड़ी वाले के पास, मैं जब उसकी विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोला।

0: इशारा करा एंड उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
1: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को।
0: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में। देयर वर थ्री गाइस इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
1: ओके,
0: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के। और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा फोर वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी। एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है, तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे।
2: Joining me live now tonight on India Matters is Veena Gupta. She's a social activist from Gurugram. She also happens to be India's first female bodyguard. She's a woman professional who lives and works in Gurugram. She drives there, she rides there, and she lives in that city. Veena ji, aapka swagat hai. Is incident ko dekhkar, kya aap surprised the ki aisa reaction tha road par? Kyunki hum bhi Delhi mein rehte hain. और हम तो लगातार देखते हैं कि लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, ज़्यादातर लेडी ड्राइवर्स या लेडी बाइकर्स के खिलाफ ऐसा होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या आप सरप्राइज थे इस वीडियो को देखकर?
3: देखिए, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी। पहली बात तो ये कि ये बहुत पुराने किस्से हैं, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि वुमेन आर नोन एज अ बैड ड्राइवर, तो जब भी कोई बेस्ट ड्राइवर गाड़ी चलाती है, वेदर इज अ कार या फिर बाइक, तो ये एक पेट्रियार्की माइंडसेट है कि क्यों चला रही है। कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग को ईगो हर्ट होती है और खासकर वो रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में ऐसे हादसे हर रोज होते रहते हैं, बिकॉज वी हैव अ वुमेन बाइकर, वी हैव अ मेल बाइकर। नॉट नेसेसरी कि फीमेल बाइकर के साथ ऐसा हुआ है, पीछे किस्सा हुआ था जहाँ पे मेल बाइकर के साथ भी ऐसा हुआ था एक्सप्रेस हाईवे पे। सो पॉइंट ये है कि ये ईगो गेम, जैसे अभी ये वकील जो इनके बोल रहे थे, बहुत ही बदतमीजी से, मतलब यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था कि देखिए अभी भी उन्होंने ब्लेम किया है कि क्यों लड़कियां या क्यों राइडर ऐसे गाड़ी चलाते हैं। अरे भाई, आप कौन होते हैं पूछने वाले? पुलिस है, पुलिस ने उनको रजामंदी दी है, परमिशन दी है, वो उनकी हेड है कि आप कौन होते हैं, आप क्यों हिट करते हैं, आप क्यों फॉलो करते हैं, आप क्यों कम्पीट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन माइंडसेट है लोगों का कि जब भी वो ऐसी कोई एक्टिविटीज देखते हैं, एक तो आई थिंक कम्पीट करने की भावना, एक ईगो इशू है, मेल ईगो आई वुड से, सॉरी टू से, बट ये है हमारे समाज में, कुछ गड़बड़ी है जिसको हम नहीं ठीक कर सकते। तो मेरे कुछ सवाल वुमेन राइडर से भी हैं और इन राइडर से भी हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एक कुछ पर्टिकुलर डूज एंड डोज यू नो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इनका कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एफआईआर नहीं होगी, वकील उनकी साइड लेंगे, पुलिस एक्शन करेगी नहीं करेगी, विटनेस देखेगी, तो ये लंबी गेम है। हमें क्या करना है, जब हम सड़क पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है, आई शुड नो माई डूज एंड डोंट। पहला रूल, नेवर कन्फ्रंट दीज काइंड ऑफ पीपल, स्टॉप, पॉज एंड टेक एक्शन। तो यहाँ पे ये जो गेम होती है ना, ये गेम जो होती है एग्रीवेट करती है सिचुएशन को। तो मेरा मानना है कि जब आप फ्लाइट वर्सेस फ्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रोज के हादसे हैं, तो हमें सिचुएशन को हाथ में उसी समय लेना है ताकि ये आगे एग्रीवेट ना हो। क्योंकि अब देखिए, हम सब लोग चर्चा करेंगे, लंबा केस चलेगा, क्या होगा क्या नहीं, बट एंड ऑफ द डे किसको चोट लगी? राइडर को। मुसीबत में कौन है? राइडर। उसकी डेथ हो सकती थी, तो इसका कोई मतलब हल नहीं है। हल मेरे पास ही है, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो सबसे पहला नियम, आप कन्फ्रंट ना करें। अगर आपको लगता है कोई आपको चेस कर रहा है, पॉज, गाड़ी को आगे जाने दे। सबके गाड़ियों में हेलमेट में कैमरा होता है, उस कैमरे से उस एक्टिविटीज को, रजिस्टर नंबर जो कार का है, उसको रिकॉर्ड करने दें। और अगर लगे कि कुछ सिचुएशन ऐसी है, जैसे उन्होंने बोला कि उसकी गाड़ी के काले शीशे थे, वी कैन मेक आउट कि काले शीशे पहली बात तो क्यों नहीं है, जो रूल है हमारे रोड सेफ्टी का, क्यों है काले शीशे? तो वो एक्शन लेना जरूरी है पुलिस वालों को। अगर मुझे लगता है काले शीशे हैं, लोग ड्रंक हैं, तो आप पॉज करके दो मिनट के लिए रुक जाइए, उस गाड़ी का रजिस्टर नंबर नोट कीजिए, आपके पास कैमरा है हेलमेट में, ऑटोमेटिकली स्लो डाउन, और कोशिश करें 112 को फोन भी कर दें। तो ये कुछ आप अगर डूज एंड डोंट्स करेंगे,

0: आई थिंक हम सिचुएशन को अपने हाथ में लेंगे और ये जो दुर्घटना हुई है वो नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है दुर्घटना, दुर्घटना घटी तो
1: दीना जी, मेरा
0: कुछ भी नहीं
1: एक
0: हो
1: सेकंड
0: सकता।
1: सवाल ये है कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि रोड रेज एक प्रॉब्लम है, मेन एंड वुमेन के खिलाफ, दोनों के खिलाफ होता है।

0: की ड्राइवर हूँ, अगर मेरी गाड़ी रैली भी नहीं करी है, नॉर्मल मैं एसयूवी चला रही हूँ, तो आई हैव नोटिस की चार गाड़ियां मेरे को फॉलो करेंगी, मुझे ओवरटेक करेंगी, और मैंने गलती से ओवरटेक कर लिया। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे गाली भी सुननी पड़ी, मुझे ऐसे नॉक करके बोला कि शीशा नीचा करो, तुम क्यों ओवरटेक कर रही हो। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये मेल ईगो है, जेंडर इशू है कि एक तो वुमेन प्लस बाइक पे राइड कर रही है, बहुत बड़ा ये मेल ईगो हर्ट होता है कि क्यों। फिर वो लेसन देंगे आपको रोड पे, ऐसे शीशे मतलब हैंड से एक्शन करेंगे, शीशा नीचा करो, पॉज करो, रोको। तो यू आर राइट कि वो एक लेसन, एक ये ना सिक माइंडसेट है।
1: Absolutely.
0: और ये जो ऐसे कुछ लोग जो वकील सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हाँ वो तो इनोसेंट है, उसको पर्दा कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि हाँ अभी मैं उसको पेश करूंगा। तो आई थिंक ये स्टार्ट होता है मेरे घर से। अगर घर वाले अपने लड़कों को
1: बिल्कुल
0: सही अपब्रिंगिंग देंगे कि मेल ईगो कुछ नहीं है, एवरीबॉडी इज इक्वल, तो आई थिंक इसका समाधान।
1: आई कंप्लीटली अग्री विद यू वीना, एंड आई थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी टुनाइट ऑन एनडीटीवी। आई होप कि कल्याण बैसला जो अभी 36 आवर्स के ऊपर ही इज रनिंग, ही इज अब्सकॉन्डिंग, ही इज वांटेड, अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस आल्सो हैव बीन अप्लाइड ऑन हिम, बट ही इज स्टिल रनिंग, एंड दैट शोज यू कि इतना जिम जाके इतना बॉडी बना के फिर दीस पीपल डोंट हैव एनी स्पाइन टू फेस द एक्चुअल लॉ। वीना गुप्ता, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: Well, this is Gurugram, and I'm going to go ahead and say it may be one of the most dangerous cities to live in this country. In 1999, this man flew sorties over the Batalik and Dras sectors during Operation Safed Sagar, the Kargil War, facing Pakistani surface-to-air missiles to defend this country. 27 years later, he was left bleeding in the parking lot of a corporate park in the same Gurugram on the outskirts of Delhi, struck repeatedly with an iron rod over a minor parking dispute with a parking attendant. This is Group Captain Amit Kumar Gupta. You would know him better as Goofy if you've watched the new Netflix series Operation Safed Sagar on the valor of the Indian Air Force during the Kargil War. This officer had dropped off his family at the entrance of a restaurant and gone to look for a spot to park. He was trying to get to a valet to park his car. There was some kind of a confusion over that. When he protested, a parking attendant hit his windshield, an iron rod was pulled out, and he was clobbered. Right there, he was clobbered. After the FIR was registered, the Gurugram police, a whole day later, nabbed the parking attendant. A 24-year-old attendant named Deepak Navi was nabbed only after NDTV had reported the story. This retired war hero from the Indian Air Force is also alleged that the accused threatened to kill him. He claims the police failed to provide adequate assistance and that the hospital submitted a false medico-legal report. This is a Kargil war hero who faced this.
2: 1999 Kargil war mein Pakistan ke khilaf Bharatiya Vayu Sena ki taraf se Operation Safed Sagar jo hai wo chalaya gaya tha aur usme Group Captain Amit Gupta ne ahem bhumika nibhai thi. Isi ko lekar Netflix ki taraf se ek series bhi aayi hai. Lekin Group Captain Amit Gupta ke upar Gurugram mein bite roz hamla hota hai aur jiske baad filhal unka ilaaj jo hai wo aspatal mein chal raha hai.
3: 10 September ki raat ko hum log restaurant mein khane gaye the mall mein. तो वहां पे जब फैमिली को छोड़ के मैं गाड़ी पार्क करने गया था तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो पार्क ही नहीं करने दे रहे हैं गाड़ी को, और तीन चार जगह गया ऑथराइज पार्किंग लॉट में, पार्क नहीं करने दे रहे हैं और बदतमीज से बात कर रहे हैं। तो फिर मैं जब वापस कर रहा था गाड़ी, तो एक अटेंडेंट गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा, जोर जोर की मारने लगा, और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने गाड़ी रोक के मैं बाहर निकला कि भाई तुम गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ रहे हो, उसने सडनली गाड़ी के सामने आया, एक हैवी रॉड लेके आया और दो बार मेरे, एक बार पहली बार मारा मेरा पूरा हड्डी तोड़ दी, और दूसरी बार मेरे सिर पे मारा, ये जो चोट है और ये हाथ पे राइट हैंड पे है।
1: Two incidents, both from the same Delhi suburb. A woman thrown off her bike by a man who had his ego pricked. A Kargil hero thrashed in a parking lot over a minor dispute. I'm going to go ahead and say Gurugram is hell, but it's a 360-degree urban nightmare. This city that I live very close to, it's Delhi's biggest suburb. Daily violent road rage, I've just shown you. Broken road infrastructure, you all remember that huge hole in the road just a few days ago. Annual flood chaos becomes a national headline. The urban civic mess is almost a defining feature of Gurugram. Crippling traffic jams every single day in that city. Air pollution is one of the worst in the country in Gurugram, and that season is arriving, by the way. Water and power.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Kargil veteran group captain Amit Kumar Gupta attacked with an iron rod by a parking attendant in Gurugram. Veteran suffers serious elbow and head injuries. Accused has now been arrested. The opposition has hit out over Tamil Nadu Chief Minister Vijay's UK visit and attendance at Ajit's race event. DMK has says that the TVK Chief Minister should not be wasting the people's money and taxes. Vijay has released highlights of his Silverstone visit. Trophy chore Naqvi chants go viral after Indian women team snub PCB Chief Mohsin Naqvi in Dubai at Asia Cup. BCCI says that call taken by the team was institutional. After Musk and Altman, Microsoft CEO Satya Nadella joins the AI showdown debate, says if AI we build is not helping humanity, then it's not worth pursuing. Trump downplays the AI slowdown calls. All right, we're starting this edition with the breaking news that's just coming in. We learned that there has been progress as far as the HDFC Bank's new CEO is concerned. There have been two names for the HDFC Bank CEO that have been sent to the RBI. Sources have told NDTV that the HDFC Deputy MD Kazid Bharucha is in race and that ICICI Prudential Life MD and CEO is also one of the front runners. Sources have also said that RBI will be taking a final call in next 7 to 10 days. Shrimi is joining me live. I beg your pardon, Shrimi is joining me on the phone line. She's our NDTV Profit correspondent. Shrimi, what more details are you picking up as far as the front runners of the HDFC Bank CEO race is concerned?
1: Yeah, that's right. After a lot of suspense over who will succeed, the incumbent CEO, Sashi Jagdishan, has indicated that he will not seek reappointment after his tenure is ending in October. The bank has now moved the process forward. The bank has sent two names, Anup Bagchi, MD and CEO of ICICI Pru Life Insurance, and Kaisar Bharucha, Deputy MD of HDFC Bank. Now, of course, the RBI has come up with a final call because the discussion at the RBI to sort of take a call on between these two candidates, but both are very, very important and strong candidates. If you see, the Bharucha is a long-time HDFC hand. He joined the group in 1995 and has built a career across, you know, retail, corporate banking, etc.
0: Yeah.
1: Even Bagchi as well, he has a solid profile and being a ICICI group veteran. So, of course, this is very much important in terms of how the events have unfolded over the past few months as far as HDFC Bank is concerned.
0: Absolutely, keeping a very close watch on that story. Shrimi, for the moment, thank you very much for getting us those details. Moving on to another big story that we're tracking here on NDTV. Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. CR says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
2: Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. And aaj Sunday ride tha to main apne friends ke saath biker gangs ja rahi thi golf course road se. सो वही उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है, वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए, पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है। जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे। उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है। उसने बोला मेरी गलती नहीं है। वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया। एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम इन सपोर्ट एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता। आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखे और हम बाइकर्स भी सेफ रहें।
3: जी 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है।
4: संडे मॉर्निंग सर एज यूजुअल मैं हर बार की तरह राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी, और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो, एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए। और मेरे को MES मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज, मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में, तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे। तो वहाँ से हम सब ने, मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने कहना कि ठीक है ओके हम बाइकर बान तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं, चलो चलते हैं राइड पे।
0: ठीक है।
4: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर, और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और ओड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की। और मेरे को लगा, पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई, या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा, लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर, तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी।
0: अच्छा, आपने गाड़ी के, गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को,
4: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है, वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है।
0: ठीक है।
4: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है, और फिर वो गाड़ी वाले के पास, मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
0: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को।
4: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में, और बिजी हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम।
0: करेक्ट।
4: हाँ, और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना तो देर वर थ्री गाइस इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
0: ओके।
4: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के, और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा फोर वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी, एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है, तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए, मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा।
0: वेल, द अक्यूज्ड कल्याण बेसला'स लॉयर spoke to EDTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
5: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Besla kahan?
6: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
5: Haan, to kahan chhipa hua hai?
6: Ek hum ek hi kaam se belong karte hain sir.
5: क्यों इतना भाग रहे हैं?
6: सर भाग सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर। एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को, वो नादानी कर रहे हैं, उससे गलती हुई है। ठीक है जी सर, ठीक है, उसकी जो गलती छोटी गलती है ना वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है।
7: नहीं कोई छोटी गलती नहीं है, वो लड़की जो है
6: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर मैं एक चीज बताता हूँ,
7: घटना में मर सकती थी वो, आपको भी
6: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत,
7: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
6: सर सर सर सर सर सर सर
7: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
6: सर एक्चुअली सर
7: आंसर नहीं भी कर रहे हैं
6: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
7: इतना जो इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते?
6: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर सर बिल्कुल आ जाएंगे, जैसे ही संपर्क होता वो आएगा 100% आएगा सर।
7: कौन सा संपर्क?
6: और
7: संपर्क नहीं,
6: एक सीधी सी नहीं अब नहीं है, कोई संपर्क नहीं है सर मेरा। एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर, हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हूँ इसमें।
7: आपकी कल्याण
6: मेरी मेरी बात, मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था।
7: इतना जो
6: सुनो सर मैं
7: इतना जो
6: मैं सर सुनो सर मेरी सुन दो एक सर, मेरा क्या उसका दस मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है। एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था, मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे, 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया, उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया, उसके बाद ये गांव में था, मैं इसे गांव में गया हूँ।
7: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप
6: सर, सर,
7: की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान
6: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ ये रोडों पे राइडर निकलने ये ठीक निकल रहे हैं?
7: नहीं नहीं जो भी होता है
6: नहीं सर जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ वो तो सुनो सर, वो तो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ और मैं कुछ आपकी जो वीडियो जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर, दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा। जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है, बिल्कुल जूम करके देखी है, उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो वहां पे यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया, वो एकदम हिट हो गई है, ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है एक ये, आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता सर, ना आप कर सकते,
7: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है, आप
6: सर मान ली सर, मैंने मान ली,
7: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है एक
6: उसके बाद सुनो उसने उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आपको पता आप सेफ्टी से चलाओ।
7: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, 4 अलग वीडियो है सामने,
6: मैंने वो सारी वीडियो देखी है, वो लड़की सर सुन मैं तो उसी के
7: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
6: नहीं सर
0: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Baisla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Baisla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics over flute. What was served at the BRICS gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition, where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back, saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than two decades ago.
8: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना। वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना। वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी। अब ये एक कदम और आगे बढ़ गया। अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर। अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है। मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को। तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए। जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित कर।
9: दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन दैट दे वांट, बट व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर अ इंटरनेशनल डेलीगेशन, पीपल एक्सपेक्ट यू टू हैव कंफर्ट फूड्स फॉर दैट पर्टिकुलर for those particular delegates. Okay, you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
10: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
11: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते। छोटी सोच है ये, बहुत ही मैं ऐसा मानता हूँ, गलत सोच है।
0: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you these visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: Indian women team snub PCB chief Mohsin Naqvi in Dubai at Asia Cup. BCCI says that call taken by the team was institutional. After Musk and Altman, Microsoft CEO Satya Nadella joins the AI showdown debate, says if AI we build is not helping humanity, then it's not worth pursuing. Trump downplays the AI slowdown calls. All right, we're starting this edition with the breaking news that's just coming in. We learned that there has been progress as far as the HDFC Bank's new CEO is concerned. There have been two names for the HDFC Bank CEO that have been sent to the RBI. Sources have told NDTV that the HDFC Deputy MD Kazid Barucha is in race, and that ICICI Prudential Life MD and CEO is also one of the front runners. Sources have also said that RBI will be taking a final call in next 7 to 10 days. Shrimi is joining me live. I beg your pardon, Shrimi is joining me on the phone line. She's our NDTV Profit Correspondent. Shrimi, what more details are you picking up as far as the front runners of the HDFC Bank CEO race is concerned?
1: Yeah, that's right. After a lot of suspense over who will succeed, the incumbent CEO, Sashi Jagdishan, has indicated that he will not seek reappointment after his tenure is ending in October. The bank has now moved the process forward. The bank has sent two names, Anup Bagchi, MD and CEO of ICICI Pru Life Insurance, and Kaizad Bharutra, Deputy MD of HDFC Bank. Now, of course, the RBI has come up with a final call because the discussion at the RBI to sort of take a call on between these two candidates, but both are very, very important and strong candidates. If you see, the Bharucha is a long-time HDFC hand. He joined the group in 1995 and has built a career across, you know, retail, corporate banking, etc.
0: Yeah.
1: Even Bagchi as well, he has a solid profile and being a ICICI group veteran. So, of course, this is very much important in terms of how the events have unfolded over the past few months as far as HDFC Bank is concerned.
0: Absolutely, keeping a very close watch on that story. Shrimi, for the moment, thank you very much for getting us those details. Moving on to another big story that we're tracking here on NDTV. Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. CR says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
2: Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. And aaj Sunday ride tha to main apne friends ke saath biker once jaati thi golf course road se. सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे. उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता। आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखे और हम बाइकर्स भी सेफ रहें।
3: जी 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है।
4: संडे मॉर्निंग सर एज यूजुअल मैं हर बागी तरह राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट ऑफ पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो, एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए और मेरे को MES मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे तो वहाँ से हम सब ने मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि ठीक है ओके हम बाइकर बांध तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं, चलो चलते हैं राइड पे।
0: ठीक है।
4: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और ओड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की और मेरे को लगा, पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी।
0: अच्छा, आपने गाड़ी के गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को,
4: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है, वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है।
0: ठीक है।
4: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
0: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को।
4: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में और बिजी हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम।
0: करेक्ट।
4: हाँ, और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना तो देर वर थ्री गाइस इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेट ब्लैक थे उस टाइम पे।
0: ओके।
4: बिल्कुल जेट ब्लैक शीशे थे कार के और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है जो हमारा फोर वे है जो चौक है वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए, मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा।
0: वेल, द अक्यूज्ड कल्याण बैसला'स लॉयर spoke to NDTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
5: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Baisla kahan?
6: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
5: Ha, to kahan chhipa hua hai?
6: Hum ek hi kaam se belong karte hain sir.
5: क्यों इतना भाग रहे हैं?
6: सर भाग, सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर, एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को, वो नादानी कर रहा है, उससे गलती हुई है, ठीक है जी सर, ठीक है, उसकी जो गलती छोटी गलती है ना वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है।
5: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है, वो लड़की जो है
6: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर मैं एक चीज बताता हूँ,
5: घटना में मर सकती है, आपको भी
6: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत,
5: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
6: सर सर सर सर सर सर सर
5: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
6: सर एक्चुअली सर
5: आंसर नहीं भी कर रहा है
6: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर
5: इतना जो जाते हैं इतना जो मोटिव बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते
6: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर सर बिल्कुल आ जाएंगे जैसे ही संपर्क होता वो आएगा 100% आएगा सर।
5: कौन सा संपर्क? और
6: एक, एक,
5: एक संपर्क नहीं
6: एक सीधी सी नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर। मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर, हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हो इसमें।
5: आपकी कल्याण
6: मेरी मेरी बात मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में
5: इतना जो
6: सुनो सर तो सही सर मैं
5: इतना जो
6: मैं सर सुनो सर मेरी सुन तो एक सर मेरा क्या उसका दस मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है। एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था, मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे, 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया, उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया, उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ।
5: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप
6: सर, सर।
5: की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान
6: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ ये रोडों पे राइडर निकल रहे ठीक निकल रहे हैं?
5: नहीं नहीं जो भी होता है
6: नहीं सर जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ वो तो एक वो तो सुनो सर वो तो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ और मैं कुछ आपकी जो वीडियो जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर, दो बात करूँ सर कोई बात नहीं कर रहा। जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी, बिल्कुल जूम करके देखिए, उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो वहां पे यू टर्न है, वहां पे देखो यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया और वो एकदम हिट हो गई है, ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है एक ये, आप देखोगे सर मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता सर, ना आप कर सकते,
5: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है, आप
6: सर मान ली सर मैंने मान ली,
5: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है एक
6: उसके बाद सुनो उसमें उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ।
5: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, 4 अलग वीडियो है सामने,
6: मैंने वो सर मैंने वो सारी वीडियो देखी है, वो लड़की सर सुन मैं तो उसी के
5: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
6: नहीं सर
0: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Besla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Besla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics over food. What was served at the BRICS Gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition, where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back, saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than two decades ago.
7: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना। वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना। वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी। अब ये एक कदम और आगे बढ़ गया। अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर। अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है। मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को। तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए। जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित कर।
8: दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन दैट दे वांट, बट व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर अ इंटरनेशनल डेलीगेशन, पीपल एक्सपेक्ट यू टू हैव कंफर्ट फूड्स फॉर दैट पर्टिकुलर for those particular delegates. Okay, you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
9: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
10: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते। छोटी सोच है ये, बहुत ही मैं ऐसा मानता हूँ गलत सोच है।
0: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you these visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: क्लाइंट नहीं, मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है सर।
1: हाँ तो कहाँ छिपा हुआ है?
0: हम एक ही काम से बिलोंग करते हैं सर।
1: क्यों इतना भाग रहे हैं?
0: सर भाग, सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर। एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को। वो नादा नहीं कर रहा कछुला, उससे गलती हुई है, ठीक है जी सर, ठीक है। उसकी जो गलती, छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है।
1: नहीं कोई छोटी गलती नहीं है, वो लड़की जो है
0: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर मैं एक चीज बताता हूँ सर,
1: घटना में मर सकती थी वो, आपको भी
0: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत।
1: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है, वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाइड।
0: सर सर सर सर सर सर सर
1: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
0: सर एक्चुअली सर
1: आंसर नहीं भी कर रहे।
0: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
1: इतना जो जाते हैं, इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते?
0: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर, सर बिल्कुल आ जाएंगे, जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर।
1: कौन सा
0: और एक, एक,
1: एक, संपर्क नहीं
0: एक है सीधी सी, नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर। मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर, कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर। हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हूं इसमें।
1: आपकी बात हुई है, आपकी कल्याण
0: मेरी मेरी बात, मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था। सुनो सर मैं
1: इतना जो
0: मैं सर सुनो सर मेरी सुन दो एक सर, मेरा क्या उसका मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है। एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था, मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे, 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया, उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया। उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ।
1: नवीन जी एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं
0: उसके गांव में गया हूँ, गांव में जाने के बाद आज तक वाले न्यूज वाले आए हैं, न्यूज वालों को उसने पूरी प्रॉपर अपना साइड रखा है, अपना पक्ष रखा है।
1: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान।
0: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ, ये रोडों पे ये राइडर निकल रहे हैं, ठीक निकल रहे हैं?
1: नहीं नहीं जो भी होता है
0: नहीं सर, जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ, वो तो सुनो सर, वो तो सर 140 सर, आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ, और मैं कुछ आपकी जो वीडियो, जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर, दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा। जो लड़की ने वीडियो डाली, मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है, बिल्कुल जूम करके देखी है। उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट है, आप देखो वहां पे यू टर्न है, वहां पे देखो यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया, वो एकदम हिट हो गई है, ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है। एक ये आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते,
1: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है। आप
0: सर मान ली सर, मैंने मान ली,
1: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, एक
0: उसके बाद सुनो उसने, उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ।
1: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, 4 अलग वीडियो है सामने।
0: मैंने वो सारी वीडियो देखी है, वो लड़की सर सुन, मैं तो उसी के
1: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
0: नहीं सर इनका क्या बस, खाली वो बार बार इसको पिंच कर रहे थे, इनसे आग निकल जाते थे बार बार, ये सारे ये 28-30 जने थे टोटल राइडर सर। ये तो आपने एक क्लिप देख ली सर, सर ये आपने सर सर सर सर प्लीज सर ये आपने आपने क्लिप देख ली है, उसने बस खाली एक गलती करी कि गाड़ी स्पीड में चलाई, जो ये राइटर सारे गलती कर रहे थे स्पीड में चला के।
1: आप देश को झूठ बोलना चाहते हैं कि ये अनइंटेंशनल था, ये इंटेंशनल नहीं था।
0: मैं तो सर न्यूज़
1: कैमरे पे हूं,
0: मैं सर वीडियो देख के ही आपको बता रहा हूँ।
1: लड़की के जो माँ बाप हैं वो अब अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगाना चाहते हैं,
2: जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
0: लड़की के साथ सर, लड़की के साथ पूरी सिंपैथी है मेरी है, मैं अगर भगवान उसको जल्दी ठीक करे, कोई इशू नहीं है ठीक है, पर ये राइडर है ना सर, मेरी
2: बात निकल चुकी है, अब तो कल्याण को सामने आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा।
0: ये तो मैं तो पुलिस की कमी बताता हूँ, जो राइडरों को रोड पे निकालते हैं
2: सर, कमी है। एक स्ट्रेट बात बताइए, ये जो कल्याण जो आपके भाई हैं या कजन हैं, जो भी हैं, आपके क्लाइंट भी
0: सर, जो भी है सर, काम के नाते साथ,
2: ये तो सोशल मीडिया पे इतने बड़े हैं, ये तो जिम ओन कर चुके हैं,
0: इतना सर, सर,
2: भक्ति करते हैं,
0: सोशल मीडिया पर
2: म्यूजिकल
0: कबड्डी का सर इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्लेयर का सर,
2: वो तो सब करते हैं, वो कुछ भी नहीं है उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब करने के बाद वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो तो कायर है फिर
0: सर। सर सर सर कायर तो सर,
2: क्या बात है, क्या फायदा है कबड्डी खेलना इंटरनेशनल लेवल पर, कबड्डी खेलना
0: सब बात
2: करना यूट्यूब पर,
0: जब तक
2: इसका सब क्या फायदा है,
0: उसकी बात
2: नहीं आ सकते हो तो।
0: आपने सर एक पक्ष सुन लिया, आपने एक प्लांटेड वीडियो देख ली, दूसरा शब्द तो आपने सुना ही नहीं है कहीं,
2: प्लांटेड
0: सर, प्लांटेड
2: वीडियो है, आपने चारों वीडियो देखी आप
0: सर, सुनो किसी वीडियो में 28 बंदे हैं सारे राइडर, किसी भी वीडियो में जो रेस लगा रहे हैं गाड़ियों से, जो काउंट कर रहे हैं वो है सर, प्रॉपर वीडियो, पूरी वीडियो इनके पास, राइडरों के पास प्रॉपर पूरी वीडियो होती है, ये कैप्चर क्यों कुछ काट काट क्यों दे रहे हैं वीडियो, प्रॉपर पूरी एक वीडियो दे रहे सारे
2: सर। ये जो माइंड सेट है ना आपका, ये जो माइंड सेट है वो मैच होता है कल्याण से, क्योंकि आपका कहना है कि जो जो लड़की बाइक से
0: भाई मेरा माइंडसेट,
2: जो आपका दोस्त उसको जाकर मारा है गाड़ी से,
0: गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग माइंडसेट मेरा सेट
2: लड़की गलत है,
0: मेरा गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग कोई मैच नहीं होता किसी से,
2: मैच सारे लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं, आपको देखते हैं, देख रहे हैं अभी, सबने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है सर, और आप मतलब खुले से आप झूठ बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये लड़की झूठ झूठ बोल रही है।
0: कानून की पालना करने वाला लड़का हूँ, कानून की पालना करता हूँ, मेरे तो एक ये है कि जो इन्होंने गाड़ी चलाई, जो
2: कल्याण कब आएगा, कल्याण कब आएगा
0: सर, इसके सामने जैसे जैसे जैसे ही हमारा संपर्क होता है हम अपना आप उसको पेश करेंगे,
2: मतलब वो हाइड में गया है, वो हाइड कर रहा है,
0: खुद बुला के सर, हम खुद बुला के पेश करेंगे हम तो, बल्कि ईमानदारी से बता रहे सर,
2: तो उन्होंने तो कल्याण ने फोन भी ऑफ कर दिया, अब फोन भी ऑफ कर दिया,
0: अब सर अब मैं उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता ना सर, फोन ऑफ क्यों किया, क्या बैटरी बंद है, क्या है, मैं नहीं कह सकता इस रिगार्डिंग
2: सर। कल्याण का जो असलियत है ना वो सामने आ गया है, जो वो करते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, सबके सामने, दोस्तों के सामने, परिवार
0: के सामने, सर सबके अपने व्यू अपने माइंडसेट होते हैं
2: सर। कल्याण बैसला के घर के बाहर पुलिस की टीम है, एनडीटीवी की टीम है,
0: बिल्कुल सर,
2: सारे मीडिया है उसके
0: घर के बाहर,
2: वो घर पे नहीं है,
0: हम
2: बोल रहे कि वो घर के घर से निकल गए हैं, घर से भाग गए हैं,
0: हम कोशिश कर रहे हैं सर, जैसे ही हमें कोई संपर्क होगा आपको भी और क्या नाम है सीआईए को बता के प्रॉपर पेश किया जाएगा, ठीक है, उसने जो अपराध किया है कोई भी उसको भी हम देखेंगे, इससे कोई बड़ी वो नहीं है।
2: चलो मुझे लगता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चलो मानते हैं कि आप उनके संपर्क में नहीं है, अगर वो एनडीटीवी देख रहे हैं आज रात को, आप क्यों क्या बोलना चाहेंगे कल्याण को, डायरेक्टली कल्याण से बात कीजिए और बोलो उनको।
0: मैं कल्याण को क्या, मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कानून के खिलाफ कोई भी कार्रवाई है ठीक है, उसमें आपको कानून से दूर नहीं जाना चाहिए, कानून के साथ रह के कानून की पालना करके आप कानून के सहयोग के बाद बन सकते हो।
2: Okay, Naveen Baisla, thank you for speaking to NDTV. Thank you. And we've got more breaking news coming in. The Gurugram hit and run incident. An eyewitness has now stepped forward to speak to NDTV. The biker who confronted the accused, Kalyan Baisla, has spoken out for the first time. He says the car was tailgating Shivani. You've heard what the lawyer has said, complete rubbish. The car was chasing her, tailgating her. The witness says three guys in the car, all were drunk.
3: Besla tried to stop her twice with the car and then rammed her while overtaking her. Take a look at this.
4: I was on the road us time pe aur Sia ne just mere ko cross kara aur maine dekha ki ek car usko bahut buri tarah chase kar rahi hai road ke upar aur mere ko matlab thoda matlab wo ajeeb laga aur odd laga ki wo car aise matlab usko chase kar rahi hai uska peecha kar rahi hai kyunki usne wo jo car wala tha na usne bahut zyada closeness matlab bahut zyada close mein tha wo bahut zyada ekdam tailgating kar raha tha bike ki और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला सिया को कुछ इशारा करा देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन
5: अच्छा वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को
4: हाँ मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में देयर वर थ्री गाइस इन द कार तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे
5: ओके
4: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है जो हमारा फोर वे है जो चौक है वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई मेरे सामने एक कार आ गई उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया हड़बड़ा के कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे
3: Joining me live now tonight on India Matters is Veena Gupta. She's a social activist from Gurugram. She also happens to be India's first female bodyguard. She's a woman professional who lives and works in Gurugram. She drives there, she rides there, and she lives in that city. Veena ji, aapka swagat hai. Is incident ko dekhkar, kya aap surprised the ki aisa reaction tha road par? Kyunki hum bhi Delhi mein rehte hain. और हम तो लगातार देखते हैं कि लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं ज़्यादातर लेडी ड्राइवर्स या लेडी बाइकर्स के खिलाफ ऐसा होता है आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या आप सरप्राइज थे इस वीडियो को देखकर
6: देखिए मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी पहली बात तो ये कि ये बहुत पुराने किस्से हैं मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि वुमेन आर नोन एज अ बैड ड्राइवर तो जब भी कोई बेस्ट ड्राइवर गाड़ी चलाती है वेदर इज अ कार या फिर बाइक तो ये एक पेट्रियार्की माइंडसेट है कि क्यों चला रही है कुछ लोग गुस्सा करते हैं कुछ लोग को ईगो हर्ट होती है और खासकर वो रेसिंग स्टार्ट हो जाती है तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं है क्योंकि गुड़गांव में ऐसे हादसे हर रोज होते रहते हैं बिकॉज वी हैव अ वुमेन बाइकर वी हैव अ मेल बाइकर नॉट नेसेसरी कि फीमेल बाइकर के साथ ऐसा हुआ है पीछे किस्सा हुआ था जहां पे मेल बाइकर के साथ भी ऐसा हुआ था एक्सप्रेस हाईवे पे सो पॉइंट ये है कि ये ईगो गेम जैसे अभी ये वकील जो इनके बोल रहे थे बहुत ही बदतमीजी से मतलब यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था कि देखिए अभी भी उन्होंने ब्लेम किया है कि क्यों लड़कियां या क्यों राइडर ऐसे गाड़ी चलाते हैं अरे भाई आप कौन होते हैं पूछने वाले पुलिस है पुलिस ने उनको रजामंदी दी है परमिशन दी है वो उनकी हेड है कि आप कौन होते हैं आप क्यों हिट करते हैं आप क्यों फॉलो करते हैं आप क्यों कम्पीट करते हैं तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन माइंडसेट है लोगों का कि जब भी वो ऐसी कोई एक्टिविटीज देखते हैं एक तो आई थिंक कम्पीट करने की भावना एक ईगो इशू है मेल ईगो आई वुड से सॉरी टू से बट ये है हमारे समाज में कुछ गड़बड़ी है जिसको हम नहीं ठीक कर सकते तो मेरे कुछ सवाल वुमेन राइडर से भी हैं और इन राइडर से भी हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एक कुछ पर्टिकुलर डूज एंड डोज यू नो फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि हम इनका कुछ नहीं कर सकते जैसे आप देख रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे एफआईआर नहीं होगी वकील उनकी साइड लेंगे पुलिस एक्शन करेगी नहीं करेगी विटनेस देखेगी तो ये लंबी गेम है हमें क्या करना है जब हम सड़क पे होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है आई शुड नो माई डूज एंड डोंट पहला रूल नेवर कन्फ्रंट दीज काइंड ऑफ पीपल स्टॉप पॉज एंड टेक एक्शन तो यहाँ पे ये जो गेम होती है ना ये गेम जो होती है एग्रीवेट करती है सिचुएशन को तो मेरा मानना है कि जब आप फ्लाइट वर्सेस फ्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये रोज के हादसे हैं तो हमें सिचुएशन को हाथ में उसी समय लेना है ताकि ये आगे एग्रीवेट ना हो क्योंकि अब देखिए हम सब लोग चर्चा करेंगे लंबा केस चलेगा क्या होगा क्या नहीं बट एंड ऑफ द डे किसको चोट लगी राइडर को मुसीबत में कौन है राइडर उसकी डेथ हो सकती थी तो इसका कोई मतलब हल नहीं है, हल मेरे पास ही है, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो सबसे पहला नियम, आप कन्फ्रंट ना करें, अगर आपको लगता है कोई आपको चेस कर रहा है, पॉज, गाड़ी को आगे जाने दें। सबके गाड़ियों में हेलमेट में कैमरा होता है, उस कैमरे से उस एक्टिविटीज को, रजिस्टर नंबर जो कार का है उसको रिकॉर्ड करने दें। और अगर लगे कि कुछ सिचुएशन ऐसी है, जैसे उन्होंने बोला कि उसकी गाड़ी के काले शीशे थे, वी कैन मेक आउट कि काले शीशे पहली बात तो क्यों नहीं है, जो रूल है हमारे रोड सेफ्टी का, क्यों है काले शीशे।

0: सेकेंड सवाल ये है कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि रोड रेज एक प्रॉब्लम है, मेन एंड वुमेन के खिलाफ, दोनों के खिलाफ होता है, लेकिन इसमें मुझे मुझे नज़र आता है एक जेंडर इशू भी है। एक लेडी बाइकर है और उसमें ज़्यादा मेल ईगो सामने आता है, स्पेशली इस इंसिडेंट में साफ साफ नज़र आता है कि मेल ईगो प्रिक हुआ है, रेस कर रहे हैं, उसने उसको स्कोल्ड किया है, धमकी दिया है कि ऐसे मत चलाओ ऐसे, और he is basically taking revenge, he is teaching her a lesson.
1: बिल्कुल सही आपने बोला, मैंने पहले क्या बोला, पेट्रियार्की मेल माइंडसेट है कि इवन अगर जैसे मैं यू नो कार रैली ड्राइवर हूं, अगर मेरी गाड़ी रैली भी नहीं कर रही है, नॉर्मल मैं एसयूवी चला रही हूं, तो आई हैव नोटिस की चार गाड़ियां मेरे को फॉलो करेंगी, मुझे ओवरटेक करेंगी, और मैंने गलती से ओवरटेक कर लिया, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे गाली भी सुननी पड़ी, मुझे ऐसे नॉक करके बोला कि शीशा नीचे करो, तुम क्यों ओवरटेक कर रही हो. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये मेल ईगो है, जेंडर इशू है कि एक तो वुमेन प्लस बाइक पे राइड कर रही है, बहुत बड़ा ये मेल ईगो हर्ट होता है कि क्यों. फिर वो लेसन देंगे आपको रोड पे, ऐसे शीशे मतलब हैंड से एक्शन करेंगे, शीशा नीचा करो, पॉज करो, रोको. तो यू आर राइट कि वो एक लेसन, एक ये ना सिक माइंडसेट है.
0: Absolutely.
1: और ये जो ऐसे कुछ लोग जो वकील सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हाँ वो तो इनोसेंट है, उसको पर्दा कर रहे हैं, ये नहीं पूछे कि हाँ अभी मैं उसको पेश करूंगा, तो आई थिंक ये स्टार्ट होता है मेरे घर से. अगर घर वाले अपने लड़कों को
0: बिल्कुल
1: सही अपब्रिंगिंग देंगे कि मेल ईगो कुछ नहीं है, एवरीबॉडी इज इक्वल, तो आई थिंक इसका समाधान.
0: आई कंप्लीटली एग्री विद यू वीना, एंड आई थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी टुनाइट ऑन एनडीटीवी. आई होप कि कल्याण बैसला जो अभी 36 आवर्स के ऊपर ही इज रनिंग, ही इज अब्सकॉन्डिंग, ही इज वांटेड, अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस आल्सो हैव बीन अप्लाइड ऑन हिम, बट ही इज स्टिल रनिंग, एंड दैट शोज यू कि इतना जिम जाके इतना बॉडी बना के फिर दीज पीपल डोंट हैव एनी स्पाइन टू फेस द एक्चुअल लॉ. वीना गुप्ता, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच.
1: थैंक यू वेरी मच.
0: वेल, दिस इज गुरुग्राम एंड आई एम गोना गो अहेड एंड से इट मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज टू लिव इन दिस कंट्री. इन 1999 दिस मैन फ्लू सॉर्टीज ओवर द बटालिक एंड द्रास सेक्टर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सफेद सागर, द कारगिल वॉर, फेसिंग पाकिस्तानी सर्फेस टू एयर मिसाइल्स टू डिफेंड दिस कंट्री. 27 ईयर्स लेटर ही वॉज लेफ्ट ब्लीडिंग इन द पार्किंग लॉट ऑफ अ कॉर्पोरेट पार्क इन द सेम गुरुग्राम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, स्ट्रक रिपीटेडली विद एन आयरन रॉड ओवर अ माइनर parking dispute with a parking attendant. This is Group Captain Amit Kumar Gupta. You would know him better as Goofy if you've watched the new Netflix series Operation Safed Sagar on the valor of the Indian Air Force during the Kargil War. This officer had dropped off his family at the entrance of a restaurant and gone to look for a spot to park. He was trying to get to a valet to park his car. There was some kind of a confusion over that. When he protested, a parking attendant hit his windshield, an iron rod was pulled out, and he was clobbered. Right there, he was clobbered. After the FIR was registered, the Gurugram police, a whole day later, nabbed the parking attendant. A 24-year-old attendant named Deepak Navi was nabbed only after NDTV had reported the story. This retired war hero from the Indian Air Force has also alleged that the accused threatened to kill him. He claims the police failed to provide adequate assistance and that the hospital submitted a false medico-legal report. This is a Kargil war hero who faced this.
2: 1999 Kargil war mein Pakistan ke khilaf Bharatiya Vayu Sena ki taraf se Operation Safed Sagar jo hai wo chalaya gaya tha aur usme Group Captain Amit Gupta ne ahem bhumika nibhai thi. इसी को लेकर नेटफ्लिक्स की तरफ से एक सीरीज भी आई है, लेकिन ग्रुप कैप्टन अमित गुप्ता के ऊपर गुरुग्राम में बीते रोज हमला होता है और जिसके बाद फिलहाल उनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है.
3: 10 सितंबर की रात को हम लोग रेस्टोरेंट में खाने गए थे मॉल में. सो वहां पे जब फैमिली को छोड़ के मैं गाड़ी पार्क करने गया था, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो पार्क ही नहीं करने दे रहे हैं गाड़ी को, और 3-4 जगह गया ऑथराइज पार्किंग लॉट में, पार्क नहीं करने दे रहे हैं और बदतमीजी से बात कर रहे हैं. तो फिर मैं जब वापस कर रहा था गाड़ी, तो एक अटेंडेंट गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जोर जोर की मारने लगा, और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने गाड़ी रोक के मैं बाहर निकला कि भाई तुम गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ रहे हो, उसने सडनली गाड़ी के सामने आया, एक हैवी रॉड लेके आया और दो बार मेरे, एक बार पहली बार मारा, मेरा पूरा हड्डी तोड़ दी, और दूसरी बार मेरे सिर पे मारा, ये जो चोट है और ये हाथ पे राइट हैंड पे है.
0: टू इंसिडेंट्स बोथ फ्रॉम द सेम दिल्ली सबर्ब, अ वुमन थ्रोन ऑफ अ बाइक बाय अ मैन

0: names for the HDFC Bank CEO that have been sent to the RBI. Sources have told NDTV that the HDFC Deputy MD Kazid Bharucha is in race, and that ICICI Prudential Life MD and CEO is also one of the front runners. Sources have also said that RBI will be taking a final call in next 7 to 10 days. Shrimi is joining me live. I beg your pardon, Shrimi is joining me on the phone line. She's our NDTV Profit correspondent. Shrimi, what more details are you picking up as far as the front runners of the HDFC Bank CEO race is concerned?
1: Yeah, that's right. After a lot of suspense over who will succeed the incumbent CEO, Sashi Jagdishan, who has indicated that he will not seek reappointment after his tenure is ending in October. The bank has now moved the process forward. The bank has sent two names, Anup Bakshi, MD and CEO of ICICI Pru Life Insurance, and Kaisar Bharucha, Deputy MD of HDFC Bank. Now, of course, the RBI has come up with a final call because the discussion at the RBI to sort of take a call on between these two candidates. But both are very, very important and strong candidates. If you see, the Bharucha is a long-time HDFC hand. He joined the group in 1995 and has built a career across, you know, retail, corporate banking, etc.
0: Yeah.
1: Even Bakshi as well, he has a solid profile and being a ICICI group veteran. So, of course, this is very much important in terms of how the events have unfolded over the past few months as far as HDFC Bank is concerned.
0: Absolutely, keeping a very close watch on that story. Shrimi, for the moment, thank you very much for getting us those details. Moving on to another big story that we're tracking here on NDTV. Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. CR says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
2: Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. And aaj Sunday ride tha to main apne friends ke saath biker once shaadi thi golf course road se. सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे. उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट. एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
3: जी, 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है.
4: सर, संडे मॉर्निंग जरा एज यूजुअल मैं हर बार की तरह राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो, एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए और मेरे को एमएस मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे तो वहाँ से हम सब ने मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि ठीक है ओके हम बाइकर बांध तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं चलो चलते हैं राइड पे
0: ठीक है।
4: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और ओड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है उसका पीछा कर रही है क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की और मेरे को लगा पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी।
0: अच्छा आपने गाड़ी के गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को
4: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है
0: ठीक है।
4: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला सिया को कुछ इशारा करा देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
0: अच्छा वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को।
4: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में और बिजी हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम।
0: करेक्ट।
4: हाँ और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना तो देर वर थ्री गाइस इन द कार तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
0: ओके
4: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है जो हमारा फोर वे है जो चौक है वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई मेरे सामने एक कार आ गई उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा।
0: वेल द अक्यूज्ड कल्याण बेसला'स लॉयर spoke to EDTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
5: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Besla kahan?
6: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai, sir.
5: Haan, toh kahan chhipa hua hai?
6: Hum ek hi gaon se belong karte hain, sir.
5: क्यों इतना भाग रहे हैं?
6: सर भाग सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर। एक्चुअली पता क्या होता है ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं एक्चुअली वो तो समझते नहीं मैं समझता हूँ उस बात को वो नादानी कर रहा है उससे गलती हुई है ठीक है जी सर ठीक है उसकी जो गलती छोटी गलती है ना वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है।
5: नहीं कोई छोटी गलती नहीं है वो लड़की जो है
6: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर मैं एक चीज बताता हूँ सर
5: घटना में मर सकती है आपको भी
6: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत
5: आपका जो नादान दोस्त है आपका जो बेकसूर दोस्त है आपका क्लाइंट जो है वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
6: सर सर सर सर सर सर सर
5: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है पुलिस का
6: सर एक्चुअली सर
5: आंसर नहीं भी कर रहा है
6: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर
5: इतना जो
6: जाते
5: हैं इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते
6: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर बिल्कुल आ जाएंगे जैसे ही संपर्क होता वो आएगा 100% आएगा सर।
5: कौन सा संपर्क?
6: और एक, एक,
5: एक संपर्क नहीं
6: एक सीधी सी नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता ना कायर ना कोई मर्द हो इसमें
5: आपकी बात हुई है आपकी कल्याण से
6: मेरी बात मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था। इतना जो सुनो सर तो सही सर सर मेरी सुन दो एक सर मेरा क्या उसका दस मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गांव कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है। एक्चुअली मेरा आज मंडे था काम ज्यादा था मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया उसके बाद ये गांव में था मैं इसे गांव में गया हूँ।
5: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है मैं बताता हूँ आपको क्योंकि आप सर, सर। की एक छोटी बात है छोटी सी गलती है ये नादा
6: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर या एक एक सही बताओ ये रोडों पे राइडर निकल रहे ठीक निकल रहे हैं
5: नहीं नहीं जो भी होता है
6: नहीं सर जो भी नहीं होता ये वो एक चीज बताओ सर एक चीज बताओ वो तो सुनो सर वो तो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर मैं बता रहा हूँ मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ और मैं कुछ आपकी जो वीडियो जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर दो बात कर रहा हूँ सर कोई बात नहीं कर रहा जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है बिल्कुल जूम करके देखी है उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो वहां पे देखो यू टर्न है एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी उसको साइड में लिया वो एकदम हिट हो गई है ठीक है उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है एक ये आप देखोगे सर मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता सर, ना आप कर सकते
5: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है आप
6: सर मान ली सर मैंने मान ली
5: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है एक
6: उसके बाद सुनो उसमें उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ।
5: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर 4 अलग वीडियो है सामने
6: मैंने वो सारी वीडियो देखी है वो लड़की सर मैं तो उसी के
5: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी
6: नहीं सर
0: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Besla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Besla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics over food. What was served at the BRICS Gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than 2 decades ago.
7: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना, वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना। वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी। अब ये एक कदम और आगे बढ़ गए, अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर। अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है। मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई मेरे साथी कई हैं आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को, तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए। जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित करता है।
8: दे आर फ्री टू

0: to take any decision that they want. But when you are calling for an international delegation, people expect you to have comfort foods for that particular, for those particular delegates. Okay, you have you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
1: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
2: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते। छोटी सोच है ये, बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ, गलत सोच है।
3: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you these visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: my very, very important and strong candidate. If you see, the Bharucha is a long time HDFC hand. We joined the group in 1995 and have built a career across, you know, retail, corporate banking, etc.
1: Yeah.
0: Even Bhakti as well, we have a solid profile and being a ICICI group veteran. So, of course, this is very much important in terms of how the events have unfolded over past few months as far as HDFC Bank is concerned.
1: Absolutely, keeping a very close watch on that story. Srimeet, for the moment, thank you very much for getting us those details. Moving on to another big story that we're tracking here on HDTV. Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. CR says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
2: Aaj ek gaadi wale ne mujhe hit karke wo aaj wahan se bhag gaya. And aaj Sunday ride tha to main apne friends ke saath biker once jaati thi golf course road se. सो वही उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है. रेड लाइट पे उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट. एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
3: जी, 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है.
4: संडे मॉर्निंग सर एज यूजुअल मैं हर बार की तरह राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी. और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो. एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए. और मेरे को MES मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज, मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में. तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे. तो वहां से हम सबने, मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि ठीक है ओके, हम बाइकर बांध तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं, चलो चलते हैं राइड पे.
1: ठीक है.
4: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर. और मेरे को मतलब थोड़ा, मतलब वो अजीब लगा और ओड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है. क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना, उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था वो, बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की. और मेरे को लगा, पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई, या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा. लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर. तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी.
1: अच्छा.

0: आपने गाड़ी के गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को, ओके,
1: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है। वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है,
0: ठीक है।
1: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो, कुछ हो सकता है। और फिर वो गाड़ी वाले के पास, मैं जब उसकी विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
0: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, मतलब सिया को।
1: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में, और बिजी हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम।
0: करेक्ट।
1: हाँ, और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना तो देर वर थ्री गाइज इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर, और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
0: ओके,
1: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के। और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा फोर वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी। एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है, तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए, मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा।
2: वेल, द अक्यूज्ड कल्याण बैसला'स लॉयर spoke to EDTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
3: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Baisla kahan?
4: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
3: Haan, to kahan chhipa hua hai?
4: Hum ek hi kaam se belong karte hain sir.
3: क्यों इतना भाग रहे हैं?
4: सर भाग, सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर। एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को, वो नादानी कर रहे हैं कछुले, उससे गलती हुई है, ठीक है जी सर, ठीक है, उसकी जो गलती छोटी गलती है ना वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है।
3: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है, वो लड़की जो है
4: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर मैं एक चीज बताता हूँ,
3: घटना में मर सकती है आपको भी
4: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत,
3: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
4: सर सर सर सर सर सर सर
3: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
4: सर एक्चुअली सर
3: आंसर नहीं भी कर रहे।
4: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
3: इतना जो
4: जाते
3: हैं, इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते?
4: नहीं सर, बिल्कुल आ जाएंगे सर, सर बिल्कुल आ जाएंगे, जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर।
3: कौन सा संपर्क?
4: और
3: संपर्क नहीं,
4: एक सीधी सी, नहीं अब नहीं है, कोई संपर्क नहीं है सर मेरा। एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर, हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हो इसमें।
3: आपकी कल्याण
4: मेरी मेरी बात, मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था,
3: इतना जो
4: सुनो सर मैं
3: इतना जो
4: सर मेरी सुन दो एक सर, मेरा क्या उसका दस, मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है। एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था, मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे, 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया, उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया, उसके बाद ये गांव में था, मैं इसे गांव में गया हूँ।
3: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप
4: सर, सर।
3: की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादा
4: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ, ये रोडों पे राइडर निकलने ये ठीक निकल रहे हैं?
3: नहीं नहीं, जो भी होता है
4: नहीं सर, जो भी नहीं होता, ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ, वो तो सुनो सर 140 सर, आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ, और मैं कुछ आपकी जो वीडियो, जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर, दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा। जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर चार बार देखी, बिल्कुल जूम करके देखिए, उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो वहां पे यू टर्न है, वहां पे देखो यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया, वो एकदम हिट हो गई है, ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है, एक ये आप देखो, आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते,
3: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है,
4: आप सर मान ली, सर मैंने मान ली,
3: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, एक
4: उसके बाद सुनो उसमें उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ।
3: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, चार अलग वीडियो है सामने,
4: मैंने वो सारी वीडियो देखी है, वो लड़की सर सुन, मैं तो उसी के
3: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी,
4: नहीं सर।
2: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Besla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Besla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics over food. What was served at the BRICS Gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition, where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back, saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than two decades ago.
5: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है, वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना, वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना, वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी, अब ये एक कदम और आगे बढ़ गए, अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर। अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है, मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को, तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए। जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित कर,
6: दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन दैट दे वांट, बट व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर अ इंटरनेशनल डेलीगेशन, पीपल एक्सपेक्ट यू टू हैव कंफर्ट फूड्स फॉर दैट पर्टिकुलर for those particular delegates. Okay, you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
7: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले रूप हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद

0: करके थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
1: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते। छोटी सोच है ये, बहुत ही मैं ऐसा मानता हूँ गलत सोच है।
2: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you these visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: of course, this is very much important in terms of how the events have unfolded over the past few months as far as HDFC Bank is concerned.
1: Absolutely. Keeping a very close watch on that story. Srimeet, for the moment, thank you very much for getting us those details. Moving on to another big story that we're tracking here on HDTV. Well, a Sunday ride turned into a terrifying chase on Gurugram's Golf Course Road after a car allegedly followed a group of bikers and tried to block a woman rider. CR says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
2: आज एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया. एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से. सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको. एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट दी एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे टोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे. उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट. एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
3: जी 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है.
4: संडे मॉर्निंग सर एज यूजुअल मैं हर बार की तरह राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी. और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो. एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए. और मेरे को MES मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में. तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे. तो वहाँ से हम सब ने मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि ठीक है ओके हम बाइकर बांध तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं, चलो चलते हैं राइड पे.
1: ठीक है.
4: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर. और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और ओड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है. क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था. वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की. और मेरे को लगा पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा. लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर. तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी.
1: अच्छा आपने गाड़ी के गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को.
4: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है. वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है.
1: ठीक है.
4: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो, कुछ हो सकता है। और फिर वो गाड़ी वाले के पास, मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
5: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, मतलब सिया को?
4: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था, और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में, और बिजी हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम।
5: करेक्ट।
4: हाँ, और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना, तो देर वर थ्री गाइस इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर, और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
5: ओके,
4: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के। और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा फोर वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी। एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है, तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए, मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा।
1: वेल, द अक्यूज्ड कल्याण बेसला'स लॉयर spoke to EDTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
6: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Besla kahan?
7: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
6: Ha, to kahan chhipa hua hai?
7: Hum ek hi kaam se belong karte hain sir.
6: क्यों इतना भाग रहे हैं?
7: सर भाग, सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर। एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को, वो नादानी कर रहे हैं कछ, उससे गलती हुई है, ठीक है जी सर, ठीक है, उसकी जो गलती छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है।
6: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है, वो लड़की जो है
7: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ,
6: घटना में मर सकती है आपको भी
7: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत,
6: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है, वो एक कायर की तरह भागा हुआ है, और वो हाई
7: सर सर सर सर सर सर सर
6: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
7: सर एक्चुअली सर
6: आंसर नहीं भी कर रहे हैं
7: सर सर, मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
6: इतना जो
7: जाते
6: हैं, इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते?
7: नहीं सर, बिल्कुल आ जाएंगे सर, सर बिल्कुल आ जाएंगे, जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर।
6: कौन सा संपर्क?
7: और
6: संपर्क नहीं,
7: एक सीधी सी, नहीं अब नहीं है, कोई संपर्क नहीं है सर मेरा, एक सीधी सी बात और बता दूं सर, कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर, हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हो इसमें,
6: आपकी कल्याण
7: मेरी बात, मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था,
6: इतना जो
7: सुनो सर तो सही सर, मैं
6: इतना जो
7: सुनो सर, मेरी सुन दो एक सेकंड, मेरा क्या उसका दस, मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं, और क्या नाम है, पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है, एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था, मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे, 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया, उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया, उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ।
6: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप
7: सर, सर,
6: की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादा
7: नहीं नहीं सर सर सर एक्चुअली सर सर ये राइडर ठीक है सर, ये सर सर सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक एक सही बताओ, ये रोडों पे राइडर निकलने ये ठीक निकल रहे हैं?
6: नहीं नहीं, जो भी होता है
7: नहीं सर, जो भी नहीं होता, ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ, वो तो सुनो सर, वो तो सर 140 सर, आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ, और मैं कुछ आपकी जो वीडियो, जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर, दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा, जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है, बिल्कुल जूम करके देखी है, उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो, वहां पे देखो यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया, वो एकदम हिट हो गई है, ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है,

0: एक ये आप देखो, आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता सर, ना आप कर सकते।
1: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है।
0: आप सर मान ली सर, मैंने मान ली।
1: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है। एक
0: उसके बाद पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ।
1: नवीन जी, क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, चार अलग वीडियो है सामने।
0: मैंने वो सारी वीडियो देखी है। वो लड़की सर मैं तो उसी के
1: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
0: नहीं सर।
2: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Besla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Besla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics over food. What was served at the BRICS Gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition, where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back, saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than two decades ago.
3: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना, वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना। वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी। अब ये एक कदम और आगे बढ़ गए, अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर। अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है। मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को। तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए। जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित कर।
4: दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन दैट दे वांट, बट व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर एन इंटरनेशनल डेलीगेशन, पीपल एक्सपेक्ट यू टू हैव कम्फर्ट फूड्स फॉर दैट पर्टिकुलर for those particular delegates. Okay, you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
5: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले रूप हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
6: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है, इसलिए जीत का महत्व कम करने के लिए वे कभी भोजन का मुद्दा लाते हैं, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुद्दा लाते। छोटी सोच है ये, बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ, गलत सोच है।
2: And as the nation celebrated Ganesh Chaturthi today, we get you these visuals of the Prime Minister visiting Union Minister Piyush Goyal's residence on the occasion of Ganesh Chaturthi and offered prayers to Lord Ganesha. The Prime Minister also participated in the festive celebrations and sought Bappa's blessing. We leave you with these visuals before we head to a short break.

0: block a woman rider. Sia says the driver appeared drunk and continued chasing her despite being asked to maintain distance. The car then allegedly cut in, hit her bike and threw her on the road, dragging her several meters. A co-rider chased the car and confronted the driver, but it sped away again. Now, in a major NDTV impact, the Gurugram police has taken cognizance of the case and has registered an FIR. The car owner told NDTV that he was not driving the car and that it was a friend that had borrowed it from him, identified as Kalyan, who had borrowed the vehicle. Meanwhile, the biker Sia has released the latest statement saying that she will be taking strict action against the car driver and that she does not want to reveal her identity at this point in time. We now play out the entire sequence of events that took place while that hit and run happened in Gurugram. Take a look.
1: आज एक गाड़ी वाले ने मुझे हिट करके वो आज वहाँ से भाग गया. एंड आज संडे राइड था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाइकर वंस जा रही थी गोल्फ कोर्स रोड से. सो वहीं उस रोड पे ये गाड़ी वाला आता है. वो मुझे स्टार्टिंग से चेस करने की कोशिश कर रहा था. वो कुछ एक्शन करता है. मैंने उसको बोला कि आप थोड़ा दूर चलाओ एंड वो बोलता है कि बाइक रोको. एंड ट्रस्ट मी दे ऑल वर ड्रंक. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूँ कि वो अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आगे आके ना लगाए. सेम टाइम पे मेरा फ्रेंड मेरे पीछे होता है. वो मुझे कवर करने की कोशिश करता है कि वो गाड़ी वाला फिर से साइड में ना आए. पर कंटिन्यूसली वो चेस करता है एंड एट द एंड वो कट मारने के चक्कर में मुझे ठोकर मार के निकल जाता है. जब उसने मुझे मारा, मेरा दोस्त उसके पीछे जाता है, उसको रोकने के लिए बोलता है रेड लाइट पे. उसने उसको फिर से बोला कि तुम रुक जाओ, तुम्हारी गलती है. उसने बोला मेरी गलती नहीं है. वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भाग गया. एंड मैं उस गाड़ी वाले के डिटेल्स अपने कैप्शन में मेंशन करने वाली हूँ एंड आई होप एवरीवन विल कम एंड सपोर्ट. एंड हम इस गाड़ी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि ऐसे ईजिली वो किसी भी बाइकर को ऐसे हिट करके नहीं भाग सकता. आई होप गुरुग्राम पुलिस विल टेक एक्शन ऑन दिस कि बाइकर्स के अलावा गुड़गांव में ऐसी गाड़ियों पर भी नज़र रखें और हम बाइकर्स भी सेफ रहें.
2: जी 14/9/26 को हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर एक वीडियो जो है आई है, जिसके अंदर एक जो महिला बाइक राइडर है उसके ऊपर किसी एक फोर व्हीलर के द्वारा पीछे से हिट करने का जो वीडियो सामने आया है. इस वीडियो पर गुड़गांव पुलिस द्वारा सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में और FIR जो है वह रजिस्टर की जा रही है.
3: संडे मॉर्निंग सर एज यूजुअल मैं और भागीता राइड पे निकला था सोलो के लिए अपनी. और मतलब अभी लोग ऐसे पॉइंट ऑफ पॉइंट बना रहे हैं कि मतलब ग्रुप वगैरह राइड ये वो. एक्चुअली मैं सोलो ही निकला था अपने घर से राइड के लिए. और मेरे को MES मॉल पे जस्ट रेगुलर डेज मतलब मैं जब जाता हूँ संडेज पे तो राइडर्स मिलते हैं आपस में. तो वहाँ पे मेरे को सिया मिली थी और बाकी मेरे दोस्त वगैरह और जानकार वगैरह खड़े हुए थे. तो वहाँ से हम सबने मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि ठीक है ओके हम बाइकर बांध तक कैफे तक एक राइड प्लान करते हैं, चलो चलते हैं राइड पे.
0: ठीक है.
3: और बस आई वाज ऑन द रोड उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर. और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और ओड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है. क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था. वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की. और मेरे को लगा पहले मेरे को लगा कि शायद मतलब फैन वगैरह होंगे उसके कोई या फिर उसको कोई हेलो वेलो कर रहा होगा और फॉलोअर होगा. लेकिन बट फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी लगी कि यार ये गलत हो सकता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन के अंदर. तो मैंने मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश करी.
0: अच्छा, आपने गाड़ी के गाड़ी और सिया के बीच में आने की कोशिश की ताकि आप बता सके अपने फ्रेंड को.
3: ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे गाड़ी को और मैं कंडक्ट कर सकूं कि ये गाड़ी बहुत तेज आपका पीछा कर रही है. वो मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग सारी है.
0: ठीक है.
3: और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है. और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा. मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन.
0: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को.
3: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में. और बिजी

0: हाईवे के ऊपर कोई मतलब क्यों ही रुकेगा मैम.
1: करेक्ट.
0: हाँ, और उसने ना मतलब जब उसने शीशा खोला ना तो देर वर थ्री गाइस इन द कार. तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेट ब्लैक थे उस टाइम पे.
1: ओके.
0: बिल्कुल जेट ब्लैक शीशे थे कार के. और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है जो हमारा फोर वे है जो चौक है वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई. मेरे सामने एक कार आ गई उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी. एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा. मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं. बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे उसके फेस के लिए. मैंने उसका फेस के लिए उसका पीछा करना शुरू करा.
2: वेल द अक्यूज्ड कल्याण बैसला'स लॉयर spoke to NDTV's managing editor Shivarur. He blamed the biker Sia, saying that she was the one provoking Kalyan. Listen into the full sequence.
3: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Baisla kahan?
4: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
3: Haan, to kahan chhipa hua hai?
4: Hum ek hi kaam se belong karte hain sir.
3: क्यों इतना भाग रहे हैं?
4: सर ये भाग कोई नहीं रहा सर. एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को. वो नादा नहीं कर रहा कछुला, उससे गलती हुई है. ठीक है जी सर, ठीक है. उसकी जो गलती छोटी गलती है ना वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है.
3: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है. वो लड़की जो है
4: सर देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ सर,
3: घटना में मर सकती है आपको भी
4: पता. नहीं सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत.
3: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाई
4: सर
3: के सामने नहीं आ रहा है. एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
4: सर एक्चुअली सर
3: आंसर नहीं भी कर रहा है.
4: सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
3: इतना जो जाते हैं, इतना जो मोटी बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते.
4: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे. सर बिल्कुल आ जाएंगे. जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर.
3: कौन सा संपर्क?
4: और
3: संपर्क नहीं,
4: एक सीधी सी नहीं, अब नहीं है कोई संपर्क नहीं सर. मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता. लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर. हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हो इसमें.
3: आपकी कल्याण
4: मेरी बात. मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में
3: इतना जो
4: सुनो सर तो सही सर. मैं
3: इतना जो
4: सर मेरी सुन दो एक सर. मेरा क्या उसका 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है. एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था. मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे. 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया? उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया. उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ.
3: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है. मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप
4: सर
3: की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान.
4: नहीं सर एक्चुअली सर ये राइडर ठीक है सर. ये सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक सही बताओ, ये रोडों पे राइडर निकल रहे हैं ठीक निकल रहे हैं?
3: नहीं जो भी होता है
4: नहीं सर, जो भी नहीं होता ये वो. एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ, वो तो एक वो तो सुनो सर, वो तो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ. मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ और मैं कुछ आपकी जो वीडियो जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर. दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा. जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर 4 बार देखी है, बिल्कुल जूम करके देखी है. उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको. एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो, वहां पे देखो यू टर्न है एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया और वो एकदम हिट हो गई है. ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है. एक ये आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते.
3: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है. आप
4: सर मान ली सर, मैंने मान ली.
3: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है. एक
4: उसके बाद सुनो उसने उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ.
3: नवीन जी क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की

0: डाला है सोशल मीडिया पर, चार अलग वीडियो है सामने।
1: मैंने वो सारी वीडियो देखी है। वो लड़की सर सुन, मैं तो उसी के
0: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
1: नहीं सर।
2: Let's now tell you how this incident has once again raised questions of male aggression, misogynistic rage and the safety of women. Let's tell you about the accused Kalyan Besla, the alleged goon accused of turning a simple road dispute into a terrifying chase. The woman biker who was riding on a prominent Gurugram road says that she simply asked him to keep his distance. What followed was anything but a normal road rage incident. The car allegedly kept chasing her, cutting her off and finally ramming into her bike, throwing her onto the road and dragging her several meters. And then the driver, Kalyan Besla, is seen fleeing the scene. Even as another rider chased him and asked him to stop, the woman was left on the road while the accused driver is now on the run. So what began with one woman saying, keep your distance, ended with a crash and a hit and run and a manhunt for the driver at the center of this all. Remains to be seen on when will this thug be arrested. But for now, we shift our focus to some other stories that we are tracking on the broadcast. And this is about the politics over food. What was served at the BRICS gala dinner has become a political talking point now. Opposition has questioned the choice of all vegetarian menu. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition, where they call that the opposition is sulking. Rahul Gandhi said that 80% of Indians eat non-vegetarian food. AIMIM says that the Fufa Mamu Kalu will be upset after seeing vegetarian food in a sarcastic jibe. The BJP, meanwhile, has hit back, saying that the opposition had nothing but the menu to criticize and that the success of the BRICS summit was being overlooked. NDTV sources also told us that all the chief ministers had been invited to BRICS dinner, but no opposition chief minister attended it. Meanwhile, adding another perspective to the debate, former Iceland president said that he had also served an all-vegetarian menu when he hosted India's president more than two decades ago.
3: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि अपना खाने की आदत, अपना पहनावा, अपनी भाषा पूरे देश पर थोपना, वो दक्षिण हो, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्ट हो, सब जगह थोपना। वहाँ तक तो चलो हम निंदा करते ही रहते थे इनकी। अब ये एक कदम और आगे बढ़ गए, अब उस मानसिकता को थोप रहे हैं पूरी दुनिया पर। अरे इस देश में मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजनों की कमी है। मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाई मेरे साथी कई हैं, आप भी हैं उनमें से, जो बहुत इंजॉय करते हैं अलग अलग व्यंजन को। तो आप संवेदनशीलता दिखाइए, रखिए वो सब, चॉइस दीजिए। जो चॉइस शब्द है ना, ये एक विचारधारा को प्रदर्शित कर।
4: दे आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन दैट दे वांट, बट व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर अ इंटरनेशनल डेलीगेशन, पीपल एक्सपेक्ट यू टू हैव कम्फर्ट फूड्स फॉर दैट पर्टिकुलर for those particular delegates. Okay, you have a problem with beef, leave beef. It's against your religious belief, it hurts your sentiments, okay, fine. But there are other cuisines that could have been put up, right? There's poultry, there could be seafood. I mean, the international delegates, while you showcase our culture, while you showcase our cuisine, nobody has any problem with it. People want to eat it, they will eat it. You can't force feed them, no?
5: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
6: कोई संकुचित बुद्धि से और अपने देश को मिली सफलता से भी अगर कोई हताहत होता है, आहत होता है, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो करता है। क्योंकि ब्रिक्स की सबसे बड़ी सफलता ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, यूनानिमस हुआ, चाइना ने, रशिया ने, सबने उसके ऊपर स्वाक्षरी की, सिग्नेचर किए। कुछ लोगों को इस जीत से उनके पेट में दुखता है।

0: posturing, is hiding like the typical coward that most such thugs are. Because apparently all that muscle is useful for posing, but not for finding the spine to face the consequences of what you allegedly did. Ram a lone woman biker because she scolded you on the road. Now, the car wasn't even Besla's, by the way. It was borrowed from an army soldier friend who's posted somewhere in Assam. But this man's ego, Kalyan Besla's ego, was apparently so fragile on the road, his masculine pride so catastrophically wounded by being schooled by a woman biker, that this car basically became his lathi. And then he ran off, hiding in his village, switching off his phone. What kind of tough guy does that? Ram a woman off her motorcycle and then disappear? Muscles of steel, courage of wet tissue. And what shocks me most is that women in the Delhi National Capital Region, viewer, are not shocked at all by this. Ask women who drive or ride in Gurugram, the taunts, the threats, the intimidation and road aggression are everyday routine matters. Some women bikers cover themselves from head to toe, not just against pollution and sun, but to conceal that they're women and simply get through the ride. Gurugram sells itself as a gleaming global city. But this is Gurugram too. Road rage, entitlement, casual violence, and the pathetic fragility of the male ego every single day on the road. Kalyan Besla, if you're the tough guy you like pretending to be, stop hiding, come out, and face the law. And while Kalyan's friends and family try and hide him and try and come up with useless excuses that it was not a hit and run, NDTV has accessed a new video, a fourth video of this murderous hit and run, where you can clearly see, perhaps in the clearest way of all, that this thug Kalyan Besla deliberately swerved his car into Shivani's bike. This new video completely lays to waste any excuses, any attempt to divert and falsify what actually happened, which is what Kalyan Besla's family, friends and lawyer are attempting to do at this point of time. Just take a look at this video very carefully. The car simply swerves into the bike and Shivani is violently thrown off the bike and she doesn't stand a chance, because the narrative being peddled right now by the family and friends of Kalyan Besla, who by the way is still in hiding like the coward that he is that this is an edited video that didn't really happen. There was actually a U-turn. He was trying to take a turn and it happened. She was the one driving rashly. Take a look at this video and decide for yourself what has actually happened. Let's go across to NDTV's Anushka Garg, live with us from Palwal in Haryana, in fact, right outside Kalyan Besla's residence. Anushka, you've been chasing Kalyan all day today in Palwal in Haryana. It looks like he has switched off his phone. He doesn't want to face NDTV's cameras, NDTV's questions. This muscle-bound criminal is apparently in hiding. What is his family telling you? Where is he right now?
1: Well, that's right, Shiv. We are outside the
2: found, according to the CIA officials. We're showing you the visuals from outside his residence right now. What we are in fact seeing here is that the Palwal CIA team, who are right now just outside the very house of this accused that we're in fact showing you the visuals from, we're clearly showing you what kind of a gathering that can be seen here, and also how these people were in fact gathered here to see what the CIA was in fact, you know, doing here, and how in fact they are trying to track him down at the moment. This was the last found location of Kalyan Besla, and we have also in fact gone to the gym where he was working for the past 2 years. He was working there for the past two months.
1: He was in fact thrown out and was in fact also told to evacuate the very premises where he was in fact working as a gym operator. We are still showing you the visuals of his house, his residence where he was last found. This is the location, and we have also seen how the CIA, Palwal CIA, is in fact right now trying to track him down. An FIR has been registered as the Gurugram police has taken suo motu cognizance of this video. The video that went viral on social media and have in fact also registered bailable cases against Kalyan Besla. We are showing you how the villagers here have in fact also gathered, and the CIA, Palwal CIA officials who are right now trying to question them as to where he was last found, and also if they know anything about his whereabouts and where he's in fact right now in hiding. This is the village where he was last found, and we have seen the video of how Sia was in fact trying to stop him from overtake her, but he did not heed to any of her appeals. We have seen multiple times that she was trying to indicate to her that he should not come this close to the bike that she was driving, but he did not heed to the pleads of Sia. After that, he tried to overtake her, and then we saw how this whole incident panned out, how she was violently thrown off her bike, and now he's right now in hiding, and we are in fact also trying to show you the visuals of how this whole incident has panned out. The residents of Kalyan Bansal, in this whole case that we're in fact tracking down, we have seen multiple times that the police have in fact tried to track down his whereabouts, but this is where he was last found, and we have in fact
0: so NDTV is outside his house, the police is outside his house, and they want us to believe that they don't know where Kalyan Besla is. He probably has good connections with the powers that be also, and therefore he may be receiving some kind of protection also. It's not too far-fetched to imagine that that could also be a possibility. Anushka, I want you to stay safe. I want you to take care of yourself as you report this story tonight from Palwal, and I will keep in touch with you and I will get back to you. Good job reporting from there. We will find Kalyan Besla, even if the police claims not to be able to trace him right now. I had a word, in fact, with Kalyan Besla's relative or friend and someone who claims to be his lawyer, Naveen Besla, who is representing him, and here's what he had to say. Take a look at this.
3: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Besla kahan?
4: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
3: Haan, toh kahan chhipa hua hai?
4: Ek hi kaam se belong karte hain sir.
3: Kyon itna bhaag rahe hain?
4: Sir, ye bhaag koi nahi raha sir. Actually, pata kya hota hai? ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को. वो नादानी कर रहा है, उससे गलती हुई है, ठीक है जी सर. ठीक है, उसकी जो गलती छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है.
3: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है. वो लड़की जो है
4: सर देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ सर,
3: घटना में मर सकती है आपको भी.
4: नहीं सर देखो सर उसके लिए और ये सर बहुत गलत.
3: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है, वो एक कायर की तरह भागा हुआ है, और वो हाई
4: सर
3: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है. एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
4: सर एक्चुअली सर
3: आंसर नहीं भी कर रहे हैं.
4: सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
3: इतना जो जाते हैं, इतना जो बनाते हैं, और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते.
4: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर बिल्कुल आ जाएंगे. जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर.
3: और एक
4: सीधी सी, नहीं अब नहीं है कोई संपर्क नहीं है सर. मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर, कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता. लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर. हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हूँ इसमें.
3: आपकी कल्याण
4: मेरी बात मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था. सुनो सर मैं मेरी सुन दो एक सर. मेरा क्या उसका मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं, और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है. एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था. मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे. 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया? उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया. उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ.
3: नहीं अरे ठीक है नवीन जी, एक बात बताइए. आप बोल रहे हैं
4: उसके गांव में गया हूँ. गांव में जाने के बाद आज तक वाले न्यूज वाले आए हैं, न्यूज वालों को उसने पूरी प्रॉपर अपना साइड रखा है, अपना पक्ष रखा है.
3: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है. मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है, ये नादान.
4: नहीं सर एक्चुअली सर ये राइडर ठीक है सर. ये सर आपने जो ये वीडियो वायरल हो रही है सर, या एक सही बताओ, ये रोडों पे राइडर निकल रहे हैं, ठीक निकल रहे हैं?
3: नहीं जो भी होता है.
4: नहीं सर जो भी नहीं होता, ये वो एक चीज बताओ सर, एक चीज बताओ. वो तो सुनो सर 140 सर आप थोड़ी सी ना सर, मैं बता रहा हूँ. मैं कुछ सुनी हुई बात कर रहा हूँ, और मैं कुछ आपकी जो वीडियो, जो लड़की ने वीडियो डाली है उसकी बात कर रहा हूँ सर. दो बात करूंगा सर, कोई बात नहीं कर रहा। जो लड़की ने वीडियो डाली मैंने वो वीडियो प्रॉपर चार बार देखी, बिल्कुल जूम करके देखिए। उसमें जो एक्सीडेंट वाला पॉइंट है ये बताता हूँ आपको, एक्सीडेंट वाला पॉइंट आप देखो वहां पे यू टर्न है, वहां पे देखो यू टर्न है, एक गाड़ी आगे जा रही है कोई सी, उसको साइड में लिया, वो एकदम हिट हो गई है, ठीक है, उसने फुटपाथ से बचाने के लिए करी है। एक ये आप देखोगे सर, मैं तो वीडियो को चेंज नहीं कर सकता ना, आप कर सकते,
0: पूरा देश ने वो वीडियो देखा है।
4: आप सर मान ली, सर मैंने मान ली,
0: आप अब बोल रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है। एक
4: उसके बाद सुनो उसमें उस लड़के ने पहले भी उसको बोला कि तुम आप सेफ्टी से चलाओ।
0: नवीन जी, क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो लड़की ने डाला है सोशल मीडिया पर, चार अलग वीडियो है सामने।
4: मैंने वो सारी वीडियो देखी है। वो लड़की सर सुनो, मैं तो उसी की,
0: कल्याण ने स्पीड करके उनको टक्कर मारी।
4: नहीं सर इनका क्या बस, खाली वो बार बार इसको पिंच कर रहे थे, इनसे आग निकल जाते थे बार बार, ये सारे ये 28 लड़के 28-30 जने थे टोटल
0: राइडर।
4: सर ये तो आपने एक क्लिप देख ली सर, सर ये आपने सर प्लीज सर, ये आपने
0: ये आप बोल रहे कि ये डॉक्टर है गलत है,
4: ये सर आपने क्लिप देख ली है। उसने बस खाली एक गलती करी कि गाड़ी स्पीड में चलाई, जो ये रहे थे सारे गलती कर रहे थे स्पीड में चला के।
0: आप अब देश को झूठ बोलना चाहते हैं कि ये अनइंटेंशनल था, ये इंटेंशनल नहीं था।
4: मैं तो सर न्यूज़
0: कैमरे पे हूं,
4: मैं सर वीडियो देख के ही आपको बता रहा हूँ।
0: लड़की के जो माँ बाप हैं वो अब अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगाना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
4: लड़की के साथ पूरी सिंपैथी है मेरी, है मैं कहूँ भगवान उसको जल्दी ठीक करे, कोई सुनी है
0: सर, वो
4: ठीक है, पर ये सर ये जो राइडर है ना सर, मेरी
0: बात निकल चुकी है, अब तो कल्याण को सामने आना पड़ेगा।
4: ये तो मैं तो पुलिस की कमी बताता हूँ, जो राइडरों को रोड पे निकालते हैं
0: सर, एक स्ट्रेट बात बताइए, ये जो कल्याण जो आपके भाई हैं या कजन हैं जो भी हैं, आपके क्लाइंट भी
4: हैं, जो भी है सर, काम के नाते साथ,
0: ये तो सोशल मीडिया पे इतने बड़े हैं, ये तो जिम ओन कर चुके हैं,
4: भक्ति
0: करते हैं,
4: सोशल मीडिया पर
0: म्यूजिकल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब करने के बाद वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो तो कायर है फिर। क्या फायदा है कबड्डी खेलना इंटरनेशनल लेवल पर, कबड्डी भक्ति करना यूट्यूब पर,
4: जब तक इसका
0: सब क्या फायदा है, उसकी बात नहीं आ सकते हो तो।
4: आपने सर एक पक्ष सुन लिया, आपने एक प्लांटेड वीडियो देख ली, दूसरा शब्द आपने सुना ही नहीं है कहीं,
0: प्लांटेड वीडियो है, आपने चारों वीडियो देखी है
4: सर, सुनो किसी वीडियो में 28 बंदे हैं सारे राइडर, किसी भी वीडियो में जो रेस लगा रहे हैं गाड़ियों से, जो टॉन्ट कर रहे हैं वो है सर, प्रॉपर वीडियो, पूरी वीडियो इनके पास, राइडरों के पास प्रॉपर पूरी वीडियो होती है, ये कैप्चर क्यों कुछ काट काट क्यों दे रहे हैं वीडियो, एक वीडियो दे रहे सारे
0: सर। ये जो माइंडसेट है ना आपका, ये जो माइंडसेट है वो मैच होता है कल्याण से, क्योंकि आपका कहना है कि जो जो लड़की बाइक से
4: गिरी है, मेरा माइंडसेट
0: उसको जाकर मारा है गाड़ी से,
4: गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग माइंडसेट मेरा सेट
0: लड़की गलत है,
4: मेरा गाड़ी तेज चलाने के रिगार्डिंग कोई मैच नहीं होता किसी से मैच,
0: सारे लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं, आपको देखते देख रहे हैं, अभी सबने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है सर, और आप मतलब खुले से आप झूठ बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये लड़की झूठ झूठ बोल रही है।
4: कानून की पालना करने वाला लड़का हूँ, कानून की पालना करता हूँ, मेरे तो एक ही है कि जो इन्होंने गाड़ी चलाई, जो
0: कल्याण कब आएगा
4: सर, इसके सामने सर, जैसे ही हमारा संपर्क होता है हम अपना आप उसको पेश करेंगे,
0: मतलब वो हाइडिंग में गया है, वो हाइड कर रहा है,
4: खुद बुला के सर, हम खुद बुला के पेश करेंगे, हम तो बल्कि आज ईमानदारी से बता रहे सर,
0: तो उन्होंने कल्याण ने फोन भी ऑफ कर दिया, अब फोन भी ऑफ कर दिया, अब
4: सर अब मैं उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता ना सर, फोन ऑफ क्यों किया, क्या बैटरी बंद है, क्या है, मैं नहीं कह सकता इस रिगार्डिंग
0: सर। कल्याण का जो असलियत है ना वो सामने आ गया है, जो वो करते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, सबके सामने, दोस्तों के सामने, परिवार के सामने,
4: सबके सर सबके अपने व्यू अपने माइंडसेट होते हैं।
0: सर कल्याण

0: कल्याण बैसला के घर के बाहर पुलिस की टीम है, एनडीटीवी की
1: सर,
0: टीम है,
1: बिल्कुल
0: कुछ
1: सर,
0: सारे
1: बाहर
0: मीडिया
1: भी है
0: टीम है
1: सर,
0: उसके घर
1: सीआईडी
0: के
1: बाहर भी
0: बाहर।
1: है सर।
0: वो घर पे नहीं
1: भाई
0: है, आप
1: हम
0: बोल रहे हैं कि
1: तो
0: वो घर के घर से निकल गए हैं, घर से भाग गए हैं अब।
1: हम कोशिश कर रहे हैं सर, जैसे ही हमें कोई संपर्क होगा आपको भी और क्या नाम है सीआईए को बता के प्रॉपर पेश किया जाएगा। ठीक है, उसने जो अपराध किया है कोई भी उसको भी हम देखेंगे, इससे कोई
0: चलो
1: इतनी बड़ी वो
0: आप,
1: नहीं है सर। हाँ
0: चलो मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चलो मानते हैं कि आप उनके संपर्क में नहीं है। अगर
1: सर
0: वो
1: सर सर
0: एनडीटीवी देख रहे हैं आज रात को, आप क्यों क्या बोलना
1: सर
0: चाहेंगे कल्याण को? डायरेक्टली कल्याण से
1: सर
0: बात कीजिए और बोलो उनको कुछ।
1: मैं कल्याण को क्या, मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, कानून के खिलाफ कोई भी कार्रवाई है ठीक है, उसमें आपको कानून से दूर नहीं जाना चाहिए। कानून के साथ रह के कानून की पालना करके आप कानून
0: ओके
1: के सहयोग के बाद बन सकते हो।
0: ओके नवीन बैंसला, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी, थैंक यू। एंड वी गॉट मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, द गुरुग्राम हिट एंड रन इंसिडेंट, एन आई विटनेस हैज नाउ स्टेप फॉरवर्ड टू स्पीक टू एनडीटीवी। द बाइकर हु कन्फ्रंटेड द अक्यूज्ड, कल्याण बैंसला, हैज स्पोकन आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। ही सेज द कार वॉज टेल गेटिंग शिवानी। You've heard what the lawyer has said, complete rubbish. The car was chasing her, tailgating her. The witness says three guys in the car, all were drunk. Besla tried to stop her twice with the car and then rammed her while overtaking her. Take a look at this.
2: I was on the road उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर, और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और ओड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की। और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो कुछ हो सकता है, और फिर वो गाड़ी वाले के पास मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
3: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था मतलब सिया को।
2: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में। देयर वर थ्री गाइस इन द कार, तीन लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
3: ओके,
2: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के। और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा फोर वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी। एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे।
0: Joining me live now tonight on India Matters is Veena Gupta. She's a social activist from Gurugram. She also happens to be India's first female bodyguard. She's a woman professional who lives and works in Gurugram. She drives there, she rides there, and she lives in that city. Veena ji, aapka swagat hai. Is incident ko dekhkar, kya aap surprised the ki aisa reaction tha road par? Kyunki hum bhi Delhi mein rehte hain. और हम तो लगातार देखते हैं कि लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, ज़्यादातर लेडी ड्राइवर्स या लेडी बाइकर्स के खिलाफ ऐसा होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या आप सरप्राइज थे इस वीडियो को देखकर?
4: देखिए, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी। पहली बात तो ये कि ये बहुत पुराने किस्से हैं, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि वुमेन आर नोन एज अ बैड ड्राइवर, तो जब भी कोई बेस्ट ड्राइवर गाड़ी चलाती है, वेदर इज अ कार या फिर बाइक, तो ये एक पेट्रियार्की माइंडसेट है कि क्यों चला रही है। कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग को ईगो हर्ट होती है और खासकर वो रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में ऐसे हादसे हर रोज होते रहते हैं, बिकॉज वी हैव अ वुमेन बाइकर, वी हैव अ मेल बाइकर। नॉट नेसेसरी कि फीमेल बाइकर के साथ ऐसा हुआ है, पीछे किस्सा हुआ था जहाँ पे मेल बाइकर के साथ भी ऐसा हुआ था एक्सप्रेस हाईवे पे। सो पॉइंट ये है कि ये ईगो गेम, जैसे अभी ये वकील जो इनके बोल रहे थे बहुत ही बदतमीजी से, मतलब यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था कि देखिए अभी भी उन्होंने ब्लेम किया है कि क्यों लड़कियां या क्यों राइडर ऐसे गाड़ी चलाते हैं। अरे भाई, आप कौन होते हैं पूछने वाले, पुलिस है, पुलिस ने उनको रजामंदी दी है, परमिशन दी है, वो उनकी हेडेक है।

0: आप कौन होते हैं, आप क्यों हिट करते हैं, आप क्यों फॉलो करते हैं, आप क्यों कंपीट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही कॉमन माइंडसेट है लोगों का कि जब भी वो ऐसी कोई एक्टिविटीज देखते हैं, एक तो आई थिंक कंपीट करने की भावना, एक ईगो इशू है,
1: जी
0: मेल ईगो आई वुड से, सॉरी टू से, बट ये है हमारे समाज में, कुछ गड़बड़ी है जिसको हम नहीं ठीक कर सकते। तो मेरे कुछ सवाल वुमेन राइटर से भी हैं और इन राइटर से भी है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एक कुछ पर्टिकुलर डूज एंड डोज यू नो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम इनका कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एफआईआर नहीं होगी, वकील उनकी साइड लेंगे, पुलिस एक्शन करेगी नहीं करेगी, विटनेस देखेगी, तो ये लंबी गेम है। हमें क्या करना है, जब हम सड़क पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है, आई शुड नो माई डूज एंड डोंट। पहला रूल, नेवर कन्फ्रंट दीज काइंड ऑफ पीपल, स्टॉप, पॉज एंड टेक एक्शन। तो यहाँ पे ये जो गेम होती है ना, ये गेम जो होती है एग्रीवेट करती है सिचुएशन को। तो मेरा मानना है कि जब आप फ्लाइट वर्सेस फ्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रोज के हादसे हैं, तो हमें सिचुएशन को हाथ में उसी समय लेना है ताकि ये आगे एग्रीवेट ना हो। क्योंकि अब देखिए, हम सब लोग चर्चा करेंगे, लंबा केस चलेगा, क्या होगा क्या नहीं, बट एंड ऑफ द डे किसको चोट लगी, राइटर को।
1: करेक्ट
0: मुसीबत में कौन है, राइटर, उसकी डेथ हो सकती थी। तो इसका कोई मतलब हल नहीं है, हल मेरे पास ही है, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो सबसे पहला नियम, आप कन्फ्रंट ना करें, अगर आपको लगता है कोई आपको चेस कर रहा है, पॉज, गाड़ी को आगे जाने दे। सबके गाड़ियों में हेलमेट में कैमरा होता है, उस कैमरे से उस एक्टिविटीज को, रजिस्टर नंबर जो कार का है उसको रिकॉर्ड करने दें। और अगर लगे कि कुछ सिचुएशन ऐसी है, जैसे उन्होंने बोला कि उसकी गाड़ी के काले शीशे थे, वी कैन मेक आउट कि काले शीशे, पहली बात तो क्यों नहीं है, जो रूल है
1: करेक्ट
0: हमारे रोड सेफ्टी का, क्यों है काले शीशे, तो वो एक्शन लेना जरूरी है पुलिस वालों को। अगर मुझे लगता है काले शीशे हैं, लोग ड्रंक हैं, तो आप पॉज करके 2 मिनट के लिए रुक जाइए, उस गाड़ी का रजिस्टर नंबर नोट कीजिए, आपके के पास कैमरा है हेलमेट में, ऑटोमेटिकली स्लो डाउन, और कोशिश करें 112 को फोन भी कर दें। तो
1: जी
0: ये कुछ आप अगर डूज एंड डोंट्स करेंगे, तो आई थिंक हम सिचुएशन को अपने हाथ में लेंगे, और ये जो दुर्घटना हुई है वो नहीं होगी। क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, दुर्घटना
1: और
0: दुर्घटना घटी
1: वीना
0: तो
1: जी, मेरा
0: कुछ भी
1: एक
0: नहीं हो
1: एक सेकेंड
0: सकता।
1: सवाल ये है कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि रोड रेज एक प्रॉब्लम है, मेन एंड वुमेन के खिलाफ, दोनों के खिलाफ होता है, लेकिन इसमें मुझे मुझे नज़र आता है एक जेंडर इशू भी है। एक एक लेडी
0: हाँ, वही मैंने
1: बाइकर
0: बोला
1: है
0: ना,
1: और उसमें
0: या
1: ज़्यादा मेल ईगो सामने आता है, स्पेशली इस इंसिडेंट में साफ साफ नज़र
0: बिल्कुल,
1: आता है
0: मैंने
1: कि
0: आपको
1: मेल ईगो प्रिक हुआ है, रेस कर रहे हैं, उसने उसको स्कोल्ड किया है, धमकी दिया है कि ऐसे मत चलाओ ऐसे, और ही इज बेसिकली
0: बिल्कुल
1: टेकिंग
0: सही,
1: रिवेंज, ही इज टीचिंग हर अ लेसन।
0: बिल्कुल सही आपने बोला। मैंने पहले क्या बोला, पेट्रियार्की, मेल माइंडसेट है कि इवन अगर, जैसे मैं यू नो कार रैली ड्राइवर हूं, अगर मेरी गाड़ी रैली भी नहीं करी है, नॉर्मल मैं एसयूवी चला रही हूं, तो आई हैव नोटिस कि 4 गाड़ियां मेरे को फॉलो करेंगी, मुझे ओवरटेक करेंगी, और मैंने गलती से ओवरटेक कर लिया। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे गाली भी सुननी पड़ी, मुझे ऐसे नॉक करके बोला कि शीशा नीचा करो, तुम क्यों ओवरटेक कर रही हो। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये मेल ईगो है, जेंडर इशू है, कि एक तो वुमेन प्लस बाइक पे राइड कर रही है, बहुत बड़ा ये मेल ईगो हर्ट होता है कि क्यों। फिर वो लेसन देंगे आपको रोड पे, ऐसे शीशे मतलब हैंड से एक्शन करेंगे, शीशा नीचा करो, पॉज करो, रोको। तो यू आर राइट कि वो एक लेसन, एक माइंड, ये ना सिक माइंडसेट है। और ये
1: एब्सोल्युटली
0: जो ऐसे कुछ लोग जो वकील सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हाँ वो तो इनोसेंट है, उसको पर्दा कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि हाँ अभी मैं उसको पेश करूंगा। तो आई थिंक ये स्टार्ट होता है मेरे घर से।
1: आई
0: अगर
1: होप,
0: घर वाले अपने लड़कों को
1: बिल्कुल
0: सही अपब्रिंगिंग देंगे कि मेल ईगो कुछ नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल, तो आई थिंक
1: आई
0: इसका
1: कंप्लीटली
0: समाधान
1: अग्री
0: सभी
1: विद
0: का।
1: यू वीना, एंड आई थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी टुनाइट ऑन NDTV। आई होप कि कल्याण बैसला, जो अभी 36 आवर्स के ऊपर ही इज रनिंग, ही इज अब्सकॉन्डिंग, ही इज वॉन्टेड, अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस ऑल्सो हैव बीन अप्लाइड ऑन हिम, बट ही इज स्टिल रनिंग, एंड दैट शोज यू कि इतना जिम जाके, इतना बॉडी बना के, फिर दीज पीपल
0: क्या
1: डोंट हैव एनी
0: फायदा।
1: स्पाइन टू फेस द एक्चुअल लॉ। वीना गुप्ता, इट्स बिन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच
0: थैंक यू
1: फॉर
0: वेरी,
1: स्पीकिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच। वेल, दिस इज गुरुग्राम एंड आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड से इट मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज टू लिव इन इन दिस कंट्री। इन 1999 दिस मैन फ्लू सॉर्टीज ओवर द बटालिक एंड ड्रास सेक्टर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सफेद सागर, द कारगिल वॉर, फेसिंग पाकिस्तानी सर्फेस टू एयर मिसाइल्स टू डिफेंड दिस कंट्री। 27 ईयर्स लेटर ही वॉज लेफ्ट ब्लीडिंग in the parking lot of a corporate park in the same Gurugram on the outskirts of Delhi, struck repeatedly with an iron rod.